0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: सुप्रभात श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने जा रहे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

नमस्कार आदाब। आज राज्यसभा के कार्य लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को संबोधित सत्र, 17 सवालों में से एक, सुब्रमण्य कृष्णन की मौत से मुतालिक की जा रही जांच के सिलसिले में होगा। मोंटाइन ब्लांश ग्रैंड रिवियर सुदेश के सांसद चेतन बाबूलाल जानना चाहेंगे कि कत्ल में महारत हासिल विदेशी जांचकर्ताओं की तहकीकात अब तक कहां पहुंची है। याद रहे स्कॉटलैंड यार्ड से बरतानी जांचकर्ता जून 2025 में सीसीआईडी की मदद करने के लिए मॉरिशस आए थे। कृष्णन परिवार के वकील रामा वालाइडेन अफसोस जताते हैं कि कुछ पहलुओं को मद्देनजर नहीं रखा गया है, जिनमें दो एफिडेविट शामिल। संसदीय कार्यों के दौरान दूसरे मुद्दों पर भी बहसें की जाएंगी। त्याकूज में पुराने प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से जुड़े 114 मिलियन रुपए की प्राप्ति, पेंशन सुधार, एम रुष पर क्रोर रिपोर्ट वगैरह पर प्रश्न निर्धारित हैं। एसएमई चैम्बर और छोटे एवं मध्यम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को एक खत भेजेंगे। एसएमई चैम्बर की अध्यक्ष जय विदेशी के मुताबिक एसएमईज की कई सिफारिशों को बजट 2026-2027 में शामिल नहीं किया गया, जैसे कोविड-19 के दौरान डीबीएम से लिए गए कर्जों के सिलसिले में छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय समर्थन देने के लिए एक मैकेनिज्म की स्थापना ताकि वो कर्ज ले सकें, वो एक हल की तलाश कर रहे हैं। विदेश में 59 देशों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाए गए वैश्विक क्रैकडाउन में 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरपोल, ऑपरेशन ग्लोबल चेन और अन्य साझेदारों की मदद से ये कार्रवाई चलाई गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस में आज सुबह 4 बजे से 10 बजे तक, यानी कल 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी है और जोरदार हवाएं भी चलने का अनुमान है। मस्करिंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह बादल घिराएंगे। पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो में हल्की बारिश होगी। दोपहर बाद पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो में हल्की वर्षाएं होती रहेंगी। आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे, ऊंचाइयों पर हल्की बरसातें होंगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के, यानी हवा 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र बहुत ही ख़राब रहेगा, ऊंची लहरें उठेंगी 4 मीटर वाली। इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरख्वास्त की जा रही है और सभी लोगों से सावधानियां बरतने की

0: मांग है तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17 अधिकतम 17 से 20 साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21 अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:43 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब, शुभ दिन आप सभी को।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
3: इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:03 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चले। ये विज्ञप्ति है ग्लेन पार्क और ग्लेन पार्क के आसपास के कुछ इलाके जिनमें है मौसलमो ईडू, कौ टिकफिन नंबर 1, कौ टिकफिन नंबर 2, रॉपा रोड, एवेन्यू दे व्यू और मौसलमो कामताली के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 7 जुलाई को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम जारी रखते हैं।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिलाते चले। इस समय सुबह के ठीक 6:05 हुए हैं और आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। AM2 का ये प्रसारण मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज पर से जारी हो रहा है। आज का दिन बिल्कुल 7 तारीख है, जुलाई का महीना है, 2026 का वर्ष और इसी के साथ मंगलवार का दिन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमय रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस प्रातःकालीन बेला में मैं हूँ रत्ना, आ पहुँची हूँ आपकी सेवा में संतवाणी कार्यक्रम के साथ। हम अभी थोड़ी ही देर में आगे बढ़ेंगे और ये कार्यक्रम कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर आचार्य श्यामदास जी। साथ ही साथ सदाबहार गीतों के साथ सुबह को और भी लाजवाब बनाने का प्रयत्न करेंगे और 6:30 पुनः हम जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ। समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम जारी रखा जाएगा, पुराने गीतों का ये सफर आपके लिए सजाया जाएगा समाचारों के बाद। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम जुड़ते हैं और आज के सुविचार के साथ शुरुआत करते हैं दिन की। श्रोताओं, मन का झुकना बहुत आवश्यक है, केवल सर झुकाने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते। आइए इसी के साथ आचार्य श्यामदास जी का स्वागत करते हैं संतवाणी कार्यक्रम में।
4: ये सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी।
5: कबीर नामम परमम पुनीतम

स्वामी चरणारविंदम सततम नमामि। परम श्रद्धालु हंसजन, यह कार्यक्रम बोनतेर बाक्वा के श्री कबीर मंदिर की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। सद्गुरु कबीर साहब का इस धरा धाम पर आगमन, इस विषय पर आज का वक्तव्य आधारित है। काल पुरुष यह नहीं चाहता था कि उसके घेरे से कोई भी जीव मुक्त होकर सत्य पुरुष परमात्मा के धाम में पहुँचे, किंतु परमात्मा कबीर साहब को सत्य लोक से जीवों के उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आते हुए देखकर काल पुरुष सर्वसमर्थ साहब के चरणों में

0: पढ़कर बंदगी करने लगा और विनम्रता पूर्वक कहने लगा कि हे समर्थ सदगुरु कबीर साहेब, यदि आपने यह निश्चय कर ही लिया है कि आप जीवों के उद्धार अवश्य करेंगे तो आप मुझे आज्ञा दीजिए और ऐसे जीवों के चिन्ह बताइए ताकि मैं उन्हें स्वयं आपके लोक में जाने का मार्ग देकर आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। कबीर मंसूर नामक ग्रंथ में काल पुरुष ने यही कहा है कि दो कर जोर चरण सिर लावा, धन्य भाग हम दर्शन पावा। अब हम साहिब देहु बताई, पाऊँ चिन्ह हंस पहुँचाई। कबीर साहिब ने कहा कि हे काल निरंजन सुनो, जो जीव सत्य पुरुष की शरणागत होंगे और दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने के लिए पान परवाना लेंगे, उन जीवों का तुम खूंट भी नहीं पकड़ पाओगे। वे सब जीव निर्मल चैतन्य सत्य धाम में जाएंगे। कबीर मंसूर में जैसे लिखा है, सुनो काल निरंजन राई, पुरुष नाम बीड़ा है भाई, जो हंसा चित भगति समोई, ताको खूंट पकड़े नहीं कोई। जो जन बीरा पावही, पहुँचे लोक हमार, ताको खूंट न पकड़ हो, सुनो काल बटमार। इतना कहकर कबीर साहेब पृथ्वी की ओर आगे बढ़ते हैं। यद्यपि चारों युग में अलग अलग नामों से कबीर साहेब का अवतार हुआ था, किंतु कलयुग में जो उन्होंने लीला की है उस अवतार लीला का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। अवतार का अर्थ है उतरना। जीव कर्मों के वशीभूत होकर अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए जन्म लेता है, किंतु परमात्मा सत्य का उपदेश देकर जीवों के उद्धार करने के लिए स्वयं उतरते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब ने भी किसी पुरुष चरित शास्त्र को पढ़े बिना ही अपना कविता की स्वतंत्र रचना की। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब की कविता अपौरुषेय है। जैसे अपौरुषेय वेद की रचना करने वाले पुरुष विशेष ईश्वर हैं, वैसे ही अपौरुषेय स्वतंत्र अनुभव वाणी की रचना करने वाले सद्गुरु कबीर साहब परमात्मा हैं। जिस समय भारत की मातृभाषा संस्कृत थी, उस समय सब लोगों को वेदों से आत्मज्ञान प्राप्त होता था। समय के बीतने पर संस्कृत भाषा का प्रचार कम हो गया, भारत की मातृभाषा का स्थान हिंदी को मिला। इसीलिए हिंदी में जनसाधारण को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, इस विचार से परमात्मा ने कबीर रूप में अवतार लेकर हिंदी भाषा में वेद और उपनिषद के समान वाणी वचन कहा, जो आज हमारे सामने ग्रंथ के रूप में विद्यमान है, जिससे साधारण जन समाज को भी धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति आदि विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार चारों वेदों में चार प्रकार के ज्ञान हैं, इसी प्रकार कबीर साहेब की वाणी में भी चार प्रकार के ज्ञान हैं। स्वसंवेद में जो सर्वप्रथम कबीर साहब का कट ज्ञान वाणी कहलाती है, उसका एक भाग ऋग्वेद के समान है। दूसरी कबीर साहब जी के जो टकसार ज्ञान वाणी हैं, वह यजुर्वेद के समान हैं। तीसरी कबीर साहब की जो मूल ज्ञान वाणी हैं, जिसमें राग और गायन का भाग है, वह सामवेद के समान है। और चौथी कबीर साहब की जो बीजक ज्ञानवाणी है, उसका एक अंश अथर्ववेद के समान है। इसीलिए तो आपने यहाँ कबीर पंथ में परंपरा से ही कबीर साहब की वाणी वचनों को वेद मंत्र के समान मानते हैं और उनको देवस्थान गद्दी पर स्थापन न करके भगवान की मूर्ति के समान उनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार वेद मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ आदि होते हैं, इसी प्रकार हमारे सद्गुरु कबीर साहब के इस परंपरा में, इस संप्रदाय में सद्गुरु की वेद तुल्य वाणी वचनों के द्वारा सात्विक यज्ञ, चौका आरती और पाठ पूजा आदि होते हैं। कबीर साहब जब कलयुग में आए थे तब उन्होंने जन समाज के सामने चार वेद के समान चार प्रकार की वाणी वचनों को रखा और उनके प्रचारक के रूप में चार शिष्य बनाकर उन लोगों को एक एक वेद के समान एक एक प्रकार का ज्ञान वाले वाणी वचनों को सौंप कर प्रचार करने के लिए आदेश दे दिया। कबीर साहब के ग्रंथ सुकृत आदि भेद में लिखा है कि कबीर साहब ने सांसारिक जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए अपने चारों शिष्यों को नियुक्त किया। वे पृथ्वी की चारों दिशाओं में स्थापित हुए, प्रत्येक दिशा में एक शिष्य मानव समाज का गुरु नियोजित हुआ। ये चारों गुरु मनुष्य मात्र को काल पुरुष निरंजन के हाथ से छुड़ाने वाले हुए। इन्हीं चारों गुरुओं के आधार से भक्तजन परम धाम को पधारते हैं। प्रथम गुरु धर्मदास जी साहेब उत्तर दिशा बांधवगढ़ में हुए। उनको कबीर साहब ने कट ज्ञान वाणी दी। दूसरा गुरु चतुर्भुज गोसाई कर्नाटक में हुए। उनको कबीर साहब ने टकसार ज्ञान वाणी दी। तीसरा गुरु राय बंकेजी साहब हुए पूर्व दिशा दरभंगा में हुए। उनको कबीर साहब ने मूल ज्ञान वाणी दी। और चौथा गुरु सहतेजी गोसाई पश्चिम दिशा माणिकपुर में हुए। उनको कबीर साहब ने बीजक ज्ञान वाणी दी। उपरोक्त चारों गुरुओं ने सद्गुरु कबीर साहब के द्वारा दी गई ज्ञान वाणियों से अपना अपना पंथ चलाना प्रारंभ किया, जो आज भी स्वदेश एवं विदेशों में अपनी अपनी अनेक शाखा प्रशाखाओं को लेकर चल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम दिया जा रहा है। जय सद्गुरु, सतनाम, बंदगी साहिब।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी।

ऊपर वाले ने हम सभी को एक जैसा बनाया है और ऊंच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब जैसी सीमाएं तो हम इंसानों की बनाई हुई देन है। बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म आरती से लिया हुआ। 1962 के दौर की ये मूवी रही और इस फिल्म में मीना कुमारी जी ने आरती का रोल किया था और इस फिल्म में साथ नजर आए थे अशोक कुमार और प्रदीप कुमार। फणी मजुमदार द्वारा निर्देशित और ताराचंद बरजात्या द्वारा निर्मित फिल्म और इस फिल्म का जो संगीत था वो रोशन साहब का सजाया हुआ। और ये जो फिल्म थी संस्कार लक्ष्मी नामक एक नाटक पर आधारित फिल्म थी जो प्रफुल्ल देसाई द्वारा लिखा गया नाटक था। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल हम आपका साथ दे रहे हैं कुछ ऐसे ही मज़ेदार लाजवाब गीतों के साथ आपकी सुबह को सुरीली बनाने का ये हमारा प्रयास और ये जारी रहेगा प्रयास।

यस बिल्कुल, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे बिल्कुल 9 बजे तक सुबह का नजराना कार्यक्रम, पर अभी थोड़ी ही देर में ये कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। बिल्कुल इस वक्त भोर की बेला, और हमारा मन कहते हैं ना कि बिल्कुल पंछी की भांति आज़ाद रहना चाहता है, विचारों की आज़ादी, इच्छाओं की आज़ादी, और मन को हर पल प्रसन्न रखने की आज़ादी। तो चलिए इसी के साथ ये प्यारा सा गीत फिल्म अनाड़ी से लिया हुआ लता जी की आवाज़ में।

चलिए इसी के साथ समय हो चला है हमारे अगले सेगमेंट के साथ जुड़ने का। बिल्कुल 6:30 बजे हम समाचारों के साथ जुड़ेंगे और पुराने गीतों का ये सफर तो हम बिल्कुल आपको खुश करने के लिए सजाते ही रहेंगे। और इसी के साथ 50s के दौर का एक गाना छोड़े जा रहे हैं आपके लिए। फिल्म है उजाला और जिस प्रकार से सुबह का उजाला हो रहा है, दिन आपके लिए भी यूं ही छम छम छमक करते हुए आए और बहुत ही ऊर्जाजनक रहे आज का दिन। उजाला फिल्म का ये गाना मन्ना डे और लता जी की आवाज में। चलिए मिलते हैं आपसे समाचारों के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक के लिए बिल्कुल हमारा साथ दीजिएगा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: नमस्कार, आदाब। 6:30 है। July 2026 की सुर्खियां सुनिए। आज राष्ट्रसभा के कार्य निर्धारित प्रधानमंत्री को पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक, सुब्रमण्य किसनन की मौत की जांच पर आधारित परिवार के वकील रामा वालाइडन की प्रतिक्रिया इस बुलेटिन में। एसएमई चैंबर और दूसरे संगठन प्रधान एवं वित्त मंत्री को एक खत भेजेंगे। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बजट में कर्ज से जुड़ी सुविधाओं की कमी के चलते वो बातचीत करना चाहते हैं। आलू के खेतीहरों को एक टन बीज पीछे 85,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि बेचे गए बीज अच्छे नहीं थे, जिनसे खेतीहरों का बहुत नुकसान हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाए गए वैश्विक क्रैकडाउन कार्रवाई में 1,000 लोगों को गिरफ्तार। नमस्कार, आदाब। आज राष्ट्रसभा के कार्य लगाए जाएंगे। प्रधान मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को संबोधित 17 सवालों में से एक, सुब्रमण्य किसनन की मौत से मुतालिक की जा रही जांच के सिलसिले में होगा। मोताई ब्लॉन्च ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट के सांसद चेतन बाबूलाल जानना चाहेंगे कि कत्ल में महारत हासिल विदेशी जांचकर्ताओं की तहकीकात अब तक कहां पहुंची हैं। याद रहे, स्कॉटलैंड यार्ड से बरतानी जांचकर्ता June 2025 में सेंट्रल CID की मदद करने के लिए मॉरिशस आए थे। किसनन परिवार के वकील रामा वालाइडन अफसोस जताते हैं कि कुछ पहलुओं को मद्देनजर नहीं रखा गया है, जिनमें 2 एफिडेविट शामिल हैं। लुवीना सूफी ने रामा वालाइडन से बात की।
2: दो अलग अलग लोगों के एफिडेविट हैं, जिनमें बहुत सारी जानकारियां हैं, बावजूद ये कि व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न है। मेरी राय है कि अगर हम इन दो एफिडेविट की तह तक जाएंगे तो हमें और जानकारियां मिलेंगी। ऐसा लग रहा है कि सरकार किसनन की हत्या पर कोई हल पाना ही नहीं चाहती।
1: संसदीय कार्यों के दौरान दूसरे मुद्दों पर भी बहसें की जाएंगी। त्यागूज में पुराने प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ से जुड़े 114 मिलियन रुपए की प्राप्ति, पेंशन सुधार, एमोरशस पर क्रोल रिपोर्ट वगैरह पर प्रश्न निर्धारित हैं। लुवीना सूफी की रिपोर्ट पर यह विवरण। रिविये दे जोंगी सुया के सांसद रोशन जमन प्रधानमंत्री से ये पूछेंगे कि सन 2024 से लेकर आज तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कितनी जांच

कार्रवाइयां चलाई हैं और कितनी पूरी हो गई हैं तथा कितनों को सलाह के लिए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया और उनका क्या हुआ। सांसद रवि राजबिचुक मुर्शन पासपोर्ट के सिलसिले में जानकारियां चाहते हैं। वे जानना चाहेंगे कि गए 5 सालों में मॉरिशस में जाली पासपोर्ट के कितने मामले दर्ज हुए और हर मामले में कौन से मूल के लोग रहे हैं। विपक्ष व्हिप एड्रियन ड्यूवाल पेंशन सुधार के लिए कार्यरत माहिर आयोग पर प्रधानमंत्री से सवाल।

0: वो भी क्यों?
1: ये जाने कि मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल को आज पहली पढ़त पर पेश किया जाएगा। इस विधेयक का मकसद मॉरिशस में एक हाइड्रोग्राफिक सर्विस की स्थापना है जो संरक्षण नियमितता और राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक मालूमात के संचालन के अलावा मॉरिशस के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री मैप बनाने के लिए जिम्मेदार होगी। घरेलू हिंसा करने वालों को रोकना और उन्हें समझाना ये डोमेस्टिक अब्यूज बिल का हिस्सा है। राष्ट्रसभा में इस विधेयक के सभी पहलुओं पर बहसें की जा रही हैं। शिकार लोगों की हिफाजत को बढ़ाना और घरेलू हिंसा को और मायने देना इस बिल के जरिए घरेलू हिंसा करने वालों के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाने का भी मकसद है। इससे उनके बर्ताव के पीछे वजह को गहराई से समझने की कोशिश की जाएगी ताकि बदलाव लाया जा सके। फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधान एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अध्यक्षता में इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक के एक दिन पहले वित्तीय क्षेत्र अपनी उम्मीद जाहिर कर रहा है। मॉरिशस फाइनेंस की अध्यक्षा रुबीना तुजू के मुताबिक सबसे पहले अब तक के सफर को सराहना चाहिए, खासतौर पर एक नियमित ढांचे के आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन, भारत और अफ्रीका के लिए मॉरिशस का बतौर पुल की हैसियत रखना आदि। निवेशक इन सभी पहलुओं को सकारात्मक नजरिए और जायजे से देखते हैं, कहा रुबीना तुजू ने। शालिनी अब ने उनसे बात की, उन्हें सुनते हैं।
2: Dans un espace aussi concurrentiel que celui des centres financiers internationaux, le coût et la facilité de faire des affaires restent.
1: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के बीच बहुत मुकाबले हैं, इसलिए कारोबार को चलाने के दामों और सुविधाओं में निर्णायक चुनौतियां हैं।
2: Progresse de la crédibilité réglementaire et Maurice se rapproche d'un point où le signal prix commence à peser sur son avantage comparatif à des juridictions qui, elles, ajustent leur structure de coût à la baisse pour rester attractive.
1: हालिया दिशा पर गौर करना जरूरी है। मॉरिशस एक नियमित क्रेडिबिलिटी के सिलसिले में तरक्की कर रहा है। असल सवाल ये है कि क्या इन कदमों पर गौर करना चाहिए? छोटी अवधि वाले टैक्स फायदों की क्या कीमत है जो लंबी अवधि वाले मुकाबलों की लागत से ज्यादा है?
0: एसएमई चेंबर और छोटे एवं मध्यम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन प्रधान एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को एक खत भेजेंगे। एसएमई चेंबर के अध्यक्ष अजय बिदेसी के मुताबिक एसएमईज की कई सिफारिशों को राष्ट्रीय बजट में शामिल नहीं किया गया, जैसे कोविड-19 के दौरान डीबीएम से लिए गए कर्जों के सिलसिले में। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय समर्थन देने के वास्ते एक मेकानिज्म की स्थापना करना ताकि वो कर्ज ले सकें। एसएमई चेंबर हल ढूंढने के लिए बातचीत करना चाहता है। शान कुंदुमाल मामले में नया विकास है। उनके कानूनी सलाहकारों ने पुष्टि की है कि दुबई में ऑफिस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नतीजे पर पहुंचा है कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और मामले को बगैर किसी शर्त से खारिज कर दिया। वकीलों ने ये बात भी झुटलाई है कि शान कुंदुमाल को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और कि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। ये भी उल्लेख हुआ कि ऑरेविय वेल्थ लिमिटेड का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आद्रिया वालिया की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: अपने खिलाफ लगाए गए इल्जाम के बाद शान कंदोमाल ने अपने वकीलों के जरिए अपना नजरिया पेश किया। उनके प्रतिनिधियों का कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात में उन पर लगाए गए इल्जाम झूठे, बदनीयती पर मबनी और हकीकत तथा कानून दोनों के लिहाज से बेबुनियाद हैं। उनके मुताबिक शान कंदुमाल ने मुतालिक अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग किया। उनके वकीलों की तरफ से दी गई वजाहत और कानूनी दलीलों का जायजा लेने के बाद दुबई के ऑफिस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये नतीजा निकाला कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता क्योंकि कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ था। उनके वकीलों के मुताबिक शान कंदुमाल को रिहा कर दिया गया और बाद में मामले को बगैर किसी शर्त के खत्म कर दिया गया। उन्होंने विस्तार दिया कि ये बेल पर रिहाई नहीं थी क्योंकि किसी किस्म की बेल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वकीलों ने मीडिया में चलने वाली कई बातों को झुठलाया। उनका कहना है कि शान कुंदुमाल को कभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या किसी और हवाई अड्डे पर गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके अनुसार मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई में ना कोई क्रिमिनल चार्ज है यानी आपराधिक आरोप, ना ही कोई तहकीकात चल रही है जहां वो रहते हैं। वकीलों ने ये भी कहा कि डॉक्टर समीर अल अंसारी ने शान कंदोमाल के खिलाफ ना कोई शिकायत दर्ज करवाई, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने

0: ये भी वाज़े किया कि तरिश्मा कुंदुमा को कभी गिरफ्तार, हिरासत में, पूछताछ के लिए बुलाया या इस मामले में शामिल नहीं किया गया। और रेव्यू वेल्थ लिमिटेड के हवाले से उनका कहना है कि इस मामले की कंपनी मॉरिशस में उनकी नियमित गतिविधियों या मॉरिशस के वित्तीय क्षेत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके अनुसार शान कुंदुमाल अब कंपनी की रोजमर्रा गतिविधियों में शामिल नहीं है, हालांकि अब वो कंपनी के निदेशक हैं। वकीलों ने यह भी कहा कि ना ऑरेविया वर्थ लिमिटेड ना ही उसके कानूनी प्रतिनिधि किसी ऐसी बात से वाकिफ हैं जो ये जाहिर करे कि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का इस मामले से कोई ताल्लुक है। कंपनी ने यह भी कहा कि अगर किसी काबिल अधिकारी की तरफ से दरख्वास्त की गई तो वो पूरा सहयोग करेगी। आखिर में शान कुंदुमाल ने मॉरिशस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपने वकीलों को सलाह दी कि वो उन व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानूनी कार्रवाई पर गौर करेंगे जिन्होंने उनके मुताबिक बदनामी फैलाने वाले इल्जाम आम किए या उन्हें दोबारा शाय यानी प्रकाशित किया। आलू के खेतीहरों को 50,000 रुपए के बजाय 85,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। कृषि उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल लामारी, प्लेन सूफी, लालूगा, रिविया द्रागों वगैरह इलाकों के 64 खेतीहरों को प्रदान बीजों से प्राप्त समस्याओं के बाद ये फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से इन बीजों का आयात किया गया था जो करीब 40 दिनों के बाद सड़ने लगे थे। फागे के निरीक्षण के बाद ये पता चला कि ये बीज अच्छे नहीं थे, इसलिए सरकार ने सभी संबद्ध अधिकारियों को मुआवजा देने का फैसला लिया। उन 17 खेतीहरों को भी जिन्होंने 21 दिनों की अवधि के बाद खेती करनी शुरू की थी। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के निदेशक नवीन जयपाल सिंह को सुनते हैं।
1: Mais avant rembourser, nous devons aussi checker est-ce qu'il va me planter quand je prends la graine, je me plante within 21 days. Ou pas capable de planter après 21 jours parce que vous gardez tellement de conditions pas correctes, la graine a fini à battre.
0: मुआवजा देने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या जब खेतीहरों को बीज मिले थे क्या उन्होंने 21 दिनों के अंदर अंदर इन्हें बोया था। अगर बीजों को 21 दिनों से ज्यादा समय तक रखा जाए तो अच्छा नहीं है। 17 खेतीहरों ने इस मोहलत के बाद बीजों को बोया था। हमने मंत्री को ये बात बताई। मंत्री ने कहा कि अगर ये खेतीहर योग्य नहीं है तब भी उन्हें ये मुआवजा देना चाहिए। अगर इन 17 खेतीहरों को सहारा नहीं देते तो बेशक बाकी योग्य खेतीहरों के लिए बीघा जमीन पीछे एक ज्यादा बड़ी रकम प्रस्तावित की जा सकती थी। उन्होंने 1 टन बीज 20,000 रुपए में खरीदा। जिसने 5 टन बीज खरीदे हैं हमने उसे 1,00,000 रुपए दिए हैं।
1: Planter qui est éligible là. La graine, je n'ai acheté 20 000 roupies d'une, un diminuant c'est 5 tonnes, fait 100 000, nous revenons sur 100 000 roupies. Le ministre nous propose 85 000 par rapport à tout ça, très généreux. Maintenant, on attend les planteurs reviennent vers nous.
0: मुआवजे की इस रकम से खेतीहरों की अलग अलग राय है। लामारी के खेतीहर भारत जीतन के मुताबिक प्रस्तावित मुआवजे की कीमत काफ़ी नहीं है क्योंकि उत्पादन की लागत बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि 1 बीघा ज़मीन में आलू बोने के लिए करीब 2,25,000 रुपये लगते हैं, इसलिए खेतीहर एक हल ढूंढने के लिए अधिकारियों से बातचीत करने का इरादा रखते हैं। उन्हें सुनते हैं, शबनीस उजिया वाहिद आली ने उनसे बात की।
2: Nous allons avoir faux ou pas d'avoir ça. Parce que nous faisons perdre gros l'argent, c'est-à-dire le coût de production que nous mettons.
0: हम इस मुआवजे से खुश नहीं हैं। उत्पादन दाम भी बढ़ गए हैं। 1 बीघा जमीन पर आलू उगाने के लिए 2,25,000 रुपए लगते हैं। इसमें सब्सिडी भी है। अगर मैं 5 बीघा जमीन पर आलू बोऊंगा तो 1 मिलियन रुपए से ज्यादा घाटा है। अब प्रति बीघा जमीन के लिए 85,000 रुपए दे रहे हैं तो खाक है। मंत्रालय बातचीत के लिए तैयार हैं क्योंकि नुकसान बहुत है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने बीजों की खरीद करने वाले खेतीहरों को मुआवजा दे दिए। कुल 161 बीघा जमीनों के लिए 230 टन बीज बेचे गए थे। 1 टन की लागत 20,000 रुपए थी। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बोलेल को सुनते हैं।
3: Nous proposons une sortie de 50,000 rupees par rapport en termes de production. Nous préférons les vins.
0: पहले 50,000 रुपए का प्रस्ताव था, अब 85,000 रुपए दे रहे हैं। याद रखें कि ये पैसे टैक्सपेयरों की जेब से आते हैं। हम यहाँ खेतीहरों की मदद करने और एक साथ काम करने के लिए हैं। मैं पहली प्रतिक्रियाओं को बखूबी समझता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि खेतीहर समझ जाएंगे। उन 60 मुल्कों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाई गई एक वैश्विक क्रैकडाउन कार्रवाई में 1,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार

गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के लिए इंटरपोल, ऑपरेशन ग्लोबल चेन वगैरह का सहयोग मिला। कुल 2070 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बने हैं और ज़्यादातर महिलाएं रही हैं। गिरफ्तार हुए लोगों में 334 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे और 690 लोग अन्य जुर्मों में। फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सफर कल रात खत्म हुआ। स्पेन ने गोल करके पुर्तगाल को खैर से किया बाहर। अभी बेल्जियम और अमेरिका का मैच पूरा हो गया है और बेल्जियम ने 4-1 से अमेरिका को जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी है। राउंड ऑफ 16 में आज रात अर्जेंटीना और इजिप्ट की टीमें 8 बजे मैदान में उतरेंगी।

और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में आज सुबह 4 बजे से कल दिन के 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने और ज़ोरदार हवाएं चलने की चेतावनी है। मस्केरेंस के दक्षिण में एक ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन है जिसकी वजह से काफ़ी ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज सुबह बादल घिराएंगे, पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में हल्की बारिश होगी और आज दोपहर बाद पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू में ये हल्की बरसातें होती रहेंगी। आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे, ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र बहुत ही ख़राब रहेगा, 4 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की दरख्वास्त की जा रही है और सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग है। तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 17 से 20, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:46 पर, सूर्यास्त 5:43 पर।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। आज राष्ट्रसभा के कार्य निर्धारित प्रधान मंत्री को पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक सुभामान्या किसनैन की मौत की जांच पर आधारित। परिवार के वकील रामा वालाइड न्यूज बुलेटिन में अपनी प्रतिक्रिया दी। एसएमई चैंबर और दूसरे संगठन प्रधान एवं वित्त मंत्री को एक खत भेजेंगे। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बजट में कर्ज से जुड़ी सुविधाओं की कमी के चलते वो बातचीत करना चाहते हैं। आलू के खेतीहरों को एक टन बीज पीछे 85,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, क्योंकि बेचे गए बीज अच्छे नहीं थे जिनसे खेतीहरों का बहुत नुकसान हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाए गए वैश्विक क्रैकडाउन कार्रवाई में 59 देशों में 1,000 लोगों को गिरफ्तार। तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी कार्य कुदादिन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। पटोल लेन निमाहियान में 55 साल के 55 years old श्री घनश्याम चिनाबंस जो डोले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दोपहर बाद एक बजे इनकी पत्नी विरमला चिनाबंस के घर पटोल लेन निमाहियान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए निमाहियान की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 1 PM। मार्टिनियर रोड सुरीनाम में 80 साल की 80 years old श्रीमती अहिल्या सुको पैदाशी नाम हरदास जो अहिल्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनके घर मार्टिनियर रोड सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुरीनाम की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड गुडलैंड्स में 72 साल के 72 years old श्री देवानंद ईश्वरलाल बुलोराम जो बोलो के

0: इनाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थिकल आज 12:30 बजे आज दिन के 12:30 बजे इनके घर रॉयल रोड गुडलैन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। इन्फॉर्मेशन टुडे एट 12:30 नून। अले बॉम्बू मोतान्योरी में 100 साल की 100 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कलावती राकातू, श्रीमती कलावती राकातू पैदाइशी नाम सालदों, जो पुप्पू साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11:45 बजे आज 11:45 बजे इनके बेटे देव राकातू के घर अले बॉम्बू मोतान्योरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:15 AM। जूली स्ट्रीट 400 में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मानती राम सुहक, श्रीमती मानती राम सुहक जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 12:45 बजे आज 12:45 बजे इनके भाई पुरन बली के घर जूली स्ट्रीट 400 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:45 PM। महात्मा गांधी रोड त्वा बुटीक त्रियोले में 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड श्री सच्चिदानंद परलाकी, श्री सच्चिदानंद परलाकी जो ऋषि एक्स प्रिजन ऑफिसर के नाम थे से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 2:30 बजे आज 2:30 बजे इनकी माँ परबावती साकोने परलाकी के घर महात्मा गांधी रोड त्वा बुटीक त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामी न्यूज त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। डुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड श्री भवन कुमार द्विवेदी परमानंद, श्री भवन कुमार द्विवेदी परमानंद जो कुशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व पास सुपरवाइजर ऑफ एयरपोर्ट थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे आज 11 बजे के घर डुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोडाल बेया क्रिमेशन ग्राउंड की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड लिस्पेरेंस त्रिबुशे में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड श्री सुरेंद्र रंजाया, श्री सुरेंद्र रंजाया जो सुरेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 10:30 बजे आज दिन के 10:30 बजे इनकी पत्नी सेलू रंजाया के घर रॉयल रोड लिस्पेरेंस त्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:50 AM। शोक में डूबे परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों पर नजर डालते चलें। ये विज्ञप्ति है इजिदोगोज और जी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनमें है एमआर, एमपीआई और जी, सीडब्ल्यूए और जी, इजिदोगोज रो विलाज के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार को सुबह 9:45 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। सूरीनाम और मौसलमा गोबिन सूरीनाम के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 8 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। कौशालो, शेमेग्रेनिये और रिवेदेगाले के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 9 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। और अंत में है रोजिल और गोशभुन के आसपास के इलाके, जिनमें है एनएचडीसी बेगुनिया, एनएचडीसी दालिया, एनएचडीसी फ्लॉम्बायों, एसपास कॉनकोड, कुछ इलाके एवेन्यू आरियन, एवेन्यू रोशब्रुन, मौसलमा न्यू टाउन, विनर्स और साथ ही साथ रोशब्रुन के आसपास के इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 8 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर

0: 10 बजे के बीच और पुनः दिन के 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं और इसी के साथ आइए स्पोर्ट्स न्यूज के साथ जुड़ते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
2: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फुटबॉल मैदान में खेला जाता है, राजनीति के साथ नहीं। फीफा की मेहरबानी, ट्रंप की राजनीति काम न आई, यूएसए वर्ल्ड कप से आउट। इधर नेमार के बाद रोनाल्डो ने भी रोते हुए वर्ल्ड कप को अलविदा कहा। स्पेन ने पोर्टुगल को 1-0 से हराया। इंजरी टाइम में मेरिनो का गोल काफी रहा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिस्टोरिक डिफेंस, स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अभी तक बिना कोई गोल कंसीड किए। अभी तक स्पेन के डिफेंस का कोई भी तोड़ नहीं पाया। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार एक टीम 6 क्लीन शीट रख पाई है। कलेक्टिव वर्क, डिफेंस सॉलिडिटी, ये है कोच डेला फुएंटे का मंत्र। दूसरी ओर फुटबॉल का एक लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप कार्य पूरा हुआ। इस ट्रॉफी को छोड़कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सब कुछ जीता। वर्ल्ड कप एक अधूरी ख्वाहिश रह जाएगी। हार के बाद पोर्टुगल के बॉस रोबर्टो मार्टिनेज ने भी जाने का फैसला लिया। क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा। आज सुबह बेल्जियम ने यूएसए को 4-1 से सुधारा और अपने वर्ल्ड कप से बाहर किया। देख के तिलारी का डबल, वानाकेन और लुकाकू का 1-1 गोल, यूएसए के लिए तिलमान ने स्कोर किया। फीफा की मेहरबानी से बालोगन खेल पाया पर कुछ खास नहीं कर पाया। इस प्रकार क्वार्टर फाइनल तक आते आते सभी मेजबान टीमें मेक्सिको, कनाडा और यूएसए बाहर हो गई। सो अभी तक क्वार्टर फाइनल इस प्रकार है। गुरुवार को थर्सडे मैच मिडनाइट फ्रांस वर्सेस मोरक्को, फिर फ्राइडे मैच शुक्रवार को 11 बजे स्पेन वर्सेस बेल्जियम, शनिवार को सैटरडे मैच 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड और आखिरी क्वार्टर फाइनल संडे सुबह 5 बजे। क्वार्टर फाइनल के आखिरी 2 टिकट किसके नाम होंगे ये आज पता चलेगा, आज और कल सुबह। आज रात 8 बजे अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट और रात्रि के 12 बजे स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया। इन दो मैचों पर आपको प्रीव्यूज देंगे 8:30 बजे RM2 पर जरूर सुनिएगा स्पेशल वर्ल्ड कप मैगजीन। यूएस से तो लंगराते हुए घुटनों पर वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, पर फीफा के प्रेसिडेंट ज्ञानी इन्फांटिनो पर क्रिटिक्स बरस रहे हैं। यूएसए के खिलाड़ी बालोगन के रेड कार्ड को कैंसिल करने का फैसला भारी पड़ रहा है। इस फैसले के पीछे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका रही, इस पर बातें हो रही है। ट्रंप ने तुरंत फीफा को थैंक यू कहा। इससे पहले फीफा ने ट्रंप को फीफा पीस प्राइज भी दिया था। ट्रंप ने खुलकर कहा, आई एम द वन हु गॉट देम टू डू इट, मेरे कहने पर ये फैसला लिया गया। ये बात अलग है कि उसने कहा कि वो पहले नहीं जानता था कि रेड कार्ड क्या है। जो भी हो, ट्रंप इन्फ्लुएंस फीका पर गया, यूएसए आउट हुआ। ट्रांसफर न्यूज, टोटनहम हॉटस्पर ने अपना ट्रांसफर रिकॉर्ड तोड़ा। 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर न्यूकासल यूनाइटेड से टोनाली को साइन किया गया। द स्पर्स तिजोरी खाली कर रहे हैं टीम रिबिल्डिंग में। डिफेंडर बियान पोल वान हेके पर 52 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, माचुस फर्नांडिस पर 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग और टोनाली के लिए 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। एंडी रॉबर्टसन, मार्को सिनेसी और मार्टिन जुब्राव का फ्री ट्रांसफर में आए हैं। अब टारगेट है बोर्नमुथ का एडी जूनियर क्रूपी, उसके लिए 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग तैयार कर रखा है टोटनहम हॉटस्पर ने। आर्सेनल एस्टन विला के मोर्गन रॉजर्स के लिए ब्रिटिश रिकॉर्ड फी देने के लिए तैयार है, पर विला अपने स्टार खिलाड़ी को नहीं बेचना चाहता। टेनिस, विंबलडन ओपन जारी है। कल पाउलिनी, फेरी, कोबोली, नुस्कुरा, फिर फ्रिट्स, कोस्टुक, मेर्टेंस, ये सभी लोग जीत पाए। लेह का वेरेव वाला मैच बीच में सस्पेंड कर दिया गया। आज क्वार्टर फाइनल

0: Pegula versus Coco Gauff, Hugo Aliassime, Djokovic, Yannick Sinner, Struff, Osaka खेलेगी मुचोवा के खिलाफ। क्रिकेट, हरारे में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 25 रनों से हराया। आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इस बीच जिम्बाब्वे के खिलाफ आने वाले T20 सीरीज के लिए संजू सैमसन टीम में नहीं है। पिछले 3 T20 मैचों में सैमसन केवल 5-0 और 1 रन बना पाया था। इसी कारण उसके स्थान पर वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम इंडिया में खेलने का मौका दिया गया। साइकिलिंग, टूर डे फ्रांस के स्टेज 3 में पोगाचार की जीत हुई और येलो जर्सी भी उसके नाम। डिफेंडिंग चैंपियन पैदेज पोगाचार ओवरऑल लीड ले चुका है, अभी वो जोनास विंगेगार्ड के बराबर है। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। स्पेन ने पोर्टुगल को हराया, स्पेन क्वालिफाई। यूएसए की हार हुई, बेल्जियम ने उसे 4-1 से पछाड़ा। क्वार्टर फाइनल स्पेन और यूएसए के बीच, आज क्वार्टर फाइनल के 2 अन्य टिकट दिए जाएंगे, अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, कोलंबिया वर्सेस स्विट्जरलैंड। याद दिला दें, अर्जेंटीना इजिप्ट वाला मैच आज 8 बजे है, देख सकते हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय सुबह के ठीक 7:06 हुए हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का पुनः हम स्वागत करते हैं। जुलाई का महीना, 7 तारीख 2026 का वर्ष, मंगलवार का दिन, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:06। हम हैं आपकी सेवा में बिल्कुल 9 बजे तक। रत्ना का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें और बिल्कुल आपके प्यार भरे साथ के साथ आज के इस सफर को हम बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। तो आइए मंगलवार के दिन की शुरुआत करते हैं चिंतन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन। आइए उनका स्वागत करते हैं और बिल्कुल पुराने गीतों से सजाया हुआ ये सफर आपके लिए हम अभी थोड़ी ही देर में लेकर पुनः उपस्थित होते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जिसके जीवित रहने से विद्वान मित्र और बंधु बांधव जीते हैं, उसी का जीना सार्थक है, वरना अपने लिए तो कौन नहीं जीता।

7:11 और चलिए इसी के साथ झलकियों में आपको बताते चले कि आज दिन भर में कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं बिल्कुल आपके लिए। इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, पुराने गीतों का ये सफ़र। मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दूंगी 9 बजे तक बेशक, और इसी के अंतर्गत 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ। 8:15 पर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे धुरंधर के साथ जिन्होंने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है, और इसी के साथ 8:50 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारी धरोहर कार्यक्रम में किरण जानकी हमें देती है उसको सुनते हुए एक भोजपुरी गीत का आनंद उठाएंगे। 9 बजे के समाचारों के साथ जुड़ेंगे और 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। और इसी कार्यक्रम के साथ बिल्कुल आपको बताते चले आज की चर्चा का कार्यक्रम, आज मंगलवार है और आज के दिन सुमिता सरकार आपका साथ देंगी, और आज की चर्चा का कार्यक्रम जो होगा ग्लोबल फॉरगिवनेस डे पर आधारित, और आज की हमारे मेहमान होंगे श्रीमती रेखा जमन और श्रीमती रमनियाल। तो ज़रूर आप उनका साथ दीजिएगा। रेडियो मॉरिशस पर इसका सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे और MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। इसी कार्यक्रम को पुनः आप रीब्रॉडकास्ट इस कार्यक्रम का सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। 10 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा, 10 बजे के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम जारी रखा जाएगा और जिसमें सुमिता सरकार एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। 11 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। 11 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे विविध भाषाओं के कार्यक्रम, उर्दू भाषा का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी परवीजा द्वारा। दोपहर के 12 बजे वर्षा लेकर आएंगी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 12:30 बजे मराठी गीतों का कार्यक्रम चलेगा सीताबाई दरमिया की ओर से। दोपहर के 1 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगे RSC। 1:45 बजे पुनः मैं आपके साथ जुड़ूंगी गुजराती गीतों के कार्यक्रम रंगारंग में।

दोपहर के 2 बजे मैंडरीन का कार्यक्रम होगा डेविड की ओर प्रस्तुति में। 2:30 बजे दैनिक कार्यक्रम आपकी पसंद, ये कार्यक्रम लेकर आएंगी रोशनी। ये कार्यक्रम चलेगा शाम 4 बजे तक। 4 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा कलाईवानी की ओर से। शाम 5 बजे उषा लेकर आएंगी भूले बिसरे गीत। ये चलेगा 1 घंटे का सफर होगा। शाम 6 बजे तक, 6 बजे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में। 6:30 बजे एक बार फिर आप लोगों के लिए विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का मनोरंजन जारी रखा जाएगा, जिसकी शुरुआत होगी मैंडरीन कार्यक्रम के साथ, जिसे प्रस्तुत करेंगे हॉन्ग हॉन्ग। शाम 7 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी पुवाना। 7:30 बजे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसे प्रस्तुत करेंगी कृतिका। शाम 7:50 पर मराठी कार्यक्रम श्रीश रामा की ओर से। 8:10 पर भक्तिमय यात्रा भजले प्रभु का नाम देविना की ओर से। 8:40 पर महफिल शब, ये कार्यक्रम होगा उर्दू भाषा में, पेशकश रहेगी निसार अख्तर की। रात के 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे के अंतर्गत आप सुन पाएंगे भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे प्रताप। रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच पुराने गीतों का सफर, सुनहरे पल, जिसे सजाया जाएगा नीतूषा की ओर से। रात के 12 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आप सुन पाएंगे ओवरनाइट प्लेलिस्ट, और ये सजाया जाएगा हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। वैसे आज दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर मैं रहूंगी एक बार फिर आपका साथ देने के लिए। और आज की हमारी मेहमान होंगी श्रीमती संगीता सोलिकर, जो स्वास्थ्य की दुनिया से जुड़ी हुई होंगी, और उन्हीं की कहानी आज सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी उड़ान की कहानी के सेगमेंट में, जो होगा रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच। तो भूलिएगा नहीं हमारा साथ देने के लिए। वैसे इस समय 7:16 हो चुके हैं, तो चलिए पुराने गीतों का ये सफर जारी रखते हैं। और अभी जो गाना हमने थोड़ी देर पहले चलाया, हिल स्टेशन से लिया हुआ गीत था, लता जी और हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में रखा हुआ। भाई मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत नहीं हारना है मेरे दोस्त, ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। और चलिए इसी के साथ और भी सुरमई वातावरण को सजाते हुए गूंज उठी शहनाई का ये गाना लाए हैं।

0: सुबह का नजराना रेडियो मोरिशस।
1: भाई हर सुर अपने अंदर एक एहसास लेकर आता है जो हर किसी के दिल में अलग तरह से बस जाता है, और संगीत वही है जो खामोशी में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कह ही जाता है। और ये प्यारा सा गीत गूंज उठी शहनाई से लिया हुआ गीत था, लता जी की प्यारी सी आवाज़, 1958 के दौर का गाना, और ऐसे ही गानों के साथ हमने आज के इस गुलदस्ते को सजाया है। तो बस आप भी हमारा प्यार से साथ दीजिएगा। 4028085 पर आपके फ़ोन कॉल्स आते रहे हैं और 5251700 पर आपके प्यार भरे मैसेजेस का जैसे पिटारा हमेशा खुल जाता है। थैंक यू सो मच, बस हम कह सकते हैं कि इट मीन्स अ लॉट। और चलिए यहाँ पर 7:21 हो चुके हैं और पुराने गीतों का ये सफ़र जारी रखते हैं। वैसे हम आपको बताते चले, कुछ पुराने गीत ऐसे भी हैं जो आज भी दिल की ख्वाहिश को बहुत ही ज़्यादा उजागर रखते हैं, और ऐसे गानों को सुनकर पुराने दिनों की याद, कुछ ऐसी बात याद आ जाती है जो दिल से कनेक्टेड होती है। तो बस आपका ये कनेक्शन हमारी ओर बना रहे, और इसी के साथ तलत महमूद और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ एक और ऐसा नजराना हम लाए हैं, और ये जो गाना है फिल्म आवाज़ से लिया हुआ, बहुत ही मस्त मस्त गाना। भाई मस्त वर्ड ही निकलता है क्योंकि है ही लाजवाब ये बहुत ही प्यारा सा मस्ताना सा गाना।

7:30 बज चुके हैं और बेशक बिल्कुल समय बहुत ही तेजी से रफ्तार पकड़ चुका है। यहाँ पर संग दिल का ये गाना हमने आपके लिए चलाया और 1952 के दौर का ये गीत था लता जी और तलत महमूद की आवाज़ में। सुबह का नजराना कार्यक्रम कुछ ऐसे ही अनसुने गीतों से सजाया हुआ ये कार्यक्रम बिल्कुल इस फिल्म में नजर आए थे। दिलीप कुमार साहब, शायद आपको याद होगा, मधुबाला इस फिल्म में नजर आई थी और इस गीत के जो बोल थे वो राजेंद्र कृष्ण के सजाए हुए, संगीत था सज्जाद हसैन का। और बहुत ही लाजवाब सा ये गाना हमने अभी भी चलाया। हमारे आज के इस प्लेलिस्ट में भी कुछ ऐसे ही गाने रखे गए हैं जो बहुत पुराने हैं, बहुत मज़ेदार है, लाइट एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, भाई कहते हैं ना, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही हमें प्राप्त होती है। इसीलिए हिम्मत करते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है, इस पर ज़्यादा अपना समय व्यर्थ ना करें। माँ या फिल्म का ये गाना अगला गीत है, 1961 के दौर का ये गाना और आवाज़ें हैं लता जी और द्विजेन मुखर्जी की। बहुत ही प्यारा सा गीत, आइए सुनते हैं। ये बहुत ही अनसुना सा गीत है, बहुत ही लाजवाब सा गाना।

मौसम के बदलाव से जो परिवर्तन आता है। चलिए इसी के साथ ये बहुत ही लाजवाब सा गाना है और ये है फिल्म इंसानियत से लिया हुआ गीत। इस गीत के बाद आते हैं आज की छोटी सी बात को लेकर।

0: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का नजराना कार्यक्रम छोटी सी बात, और इस समय बस 7:40 होने जा रहे हैं। और आज के इस छोटी सी बात में एक बार फिर आप सभी का हम स्वागत करते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है। चलिए, आज की छोटी सी बात भी छोटी सी है पर बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाली। दोस्तों, हम हमेशा सुंदरता के पीछे भागते हैं। सुंदर शरीर को सजाने में हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय गंवाते हैं। भाई, जिस शरीर को लोग सुंदर

समझते हैं मृत्यु के बाद यानी मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में ना रख कर जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। जिस शरीर को सुंदर मानते हो, जरा उसकी चमड़ी अगर उतर जाए तो बस हकीकत दिख जाती है, हकीकत बाहर आ जाती है। हकीकत क्या है भीतर की, वो पता चल जाता है। भीतर को तो बस हम कह सकते हैं ना कि रक्त है, रोग है, मल है, कचरा भरा पड़ा है हमारे शरीर में। इस शरीर कैसे सुंदर हुआ? शरीर में कोई सुंदरता है ही नहीं। ये अगर सुंदर होता है तो उसके कर्मों से, उसके विचारों से, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से, उसके संस्कारों से, उसके चरित्र से। और जिसके जीवन में ये सब कुछ है वही इंसान इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और जमाना भी उसी का दीवाना है। पर हम क्या करते हैं, इस शरीर को सुंदर बनाने में ज्यादा से ज्यादा समय खर्च करते हैं और भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें बस कुछ समय के लिए हैं। अगर कुछ अच्छा है, अगर कुछ अच्छा जो सुंदर बना सकता है वो है हमारा ढंग। हम किस तरह से चीज़ें करते हैं, किस तरह से उसे सोचते हैं, किस तरह का हमारा व्यवहार है, किस तरह से हम लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं, और जब बहुत सारी परिस्थितियां एक साथ आ जाती है तो उसमें भी हम किस प्रकार से अपने मन का संयम बना कर रखते हैं। औदा बढ़ जाने से, रुतबा बढ़ जाने से कई बार हम यही सारी चीजें भूल जाते हैं। बस पैसा हाथ में आ जाता है और हम अपने आप को सजने संवरने में लगा देते हैं, अपने स्टेटस को बढ़ाने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। और ऐसे में कहीं कुछ हो जाए तो हमसे जो नीचे लोग हैं, हमसे जो कम औहदे वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है, बस यही सारी चीजें मायने रखती हैं दोस्तों। रुतबा, औहदा, पैसा बढ़ जाने से सुंदरता नहीं बढ़ती। सुंदरता बढ़ती है आपके अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहार से, आपकी अच्छी वाणी से, आपके संस्कारों से। बस यही है आज की छोटी सी बात। आशा करते हैं ये बात अगर सभी के समझ में आ जाए और सभी अपने जीवन में इसे उतारने लगे, इसको लागू करने लगे, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल मिल जाएगा।

जी हाँ, इस वक्त 7:47 और कुछ ऐसे ही गीतों के साथ कुछ ऐसी प्यारी सी यादें जो हमारे अपनों के साथ जुड़ी हुई यादें हैं वो ताज़ा हो गई होंगी। और इसी के साथ चलिए आपके नामों को जोड़ने का समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ बहुत हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं, माला सुमारू जी जो हमारे साथ काठबोन से हैं, पति सूर्यदेव के साथ घोंगोप से श्यामा रघुनंदन हमेशा की तरह, उनके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी नम्रता, केशव और युधीश साथ दे रहे हैं, और साथ ही साथ विश्वानी जी भी जुड़ चुकी हैं, साथ ही दे रहे हैं, साथ वीना रामफल जो है त्यागूर से, बाकवा से हैं शोभा जी, साथ है अनुषा, शर्वीना, अवनीश, अर्णवी, उनकी प्यारी बहन प्रेम मिला जयमंगल, और साथ है बहन वीना और खास सखी राधा बाल गोबिंद मोचीदा से। गायत्री जी हमारा साथ दे रही हैं अल्फोंस से, बेटा अजय, मामी कल्याणी, मोहन हमेशा की तरह, भाभी शकुंतला मोताइलोंग से, और आपकी प्यारी सखी गीता बाई जो है नोवेल अल्फोंस से, और बिल्कुल गीता बाई भी हमारा साथ दे रही हैं यहाँ पर, उनके प्यारे बेटे शिवाजी, साथ है श्वेता बाई उनकी बहू, बेटी है सुधा बाई, और दो नातीन बिजवी बाई, दिया बाई और प्यारा सा मल्हार, और कहती हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बेशक बहुत ठंड है, इसीलिए ऐसे ठंड के मौसम में बस आप लोगों का प्यार हमें बहुत ज़्यादा गर्मी देता है, यही हमारा सुरक्षा कवच है। और इसी के साथ यहाँ पर क्लाविद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय बंधन जी, उनकी

प्यारी पत्नी रेखा और साथ ही साथ उनकी बहनें चंदनी, बिंदु कुमारी और साथ है उनके सभी दोस्त जो काम पर हमेशा सुनते हैं। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। पोफेयर से गीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्यारे पति रोहित के साथ, और इसी के साथ आदित्य आरफ और तानिश उनके तीन प्यारे नाती, जानवी उनकी प्यारी नातिन, तीन बहू तीन बेटों के साथ जुड़ी हुई हैं। माधुरी जी भी फ्लोगयाल से हमारा साथ दे रही हैं और बेशक प्रभा दसोई हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बेलगोस से। प्यारी बेटी लवीना का जन्मदिन था कल यानी 6 तारीख को सोमवार को। मामा प्रभा, पापा है जयराज, भाई है निर्मल और उनके सभी कजन्स अनसुया, प्रिया और मानुषा, जिन्होंने उनको एक बहुत अच्छा सरप्राइज दिया, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। चलिए लवीना, हमारी ओर से आपको बहुत सारा प्यार और आपको कहेंगे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बस आप खुश रहें, मम्मी पापा से बहुत सारा प्यार पाएं और हमेशा स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। अनीता लाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोडालबिया से, गोगा परिवार, ईतू परिवार, नागेश्वर परिवार के साथ। मानती जी भी साथ दे रही हैं नवलफोंस से। प्यारी बहनें आरती, अनंती, साथ है उनकी बहुएं अनुषा, उर्वशी, साथ है गिरीशा, मितिशा, भव्या, हितांशु और पुष्कल के साथ, वे भी जुड़े हुए हैं। घोंगोब से जुड़ी हुई हैं सुनीता जी, प्यारी बहन विमला जो कोंगोमा से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं। गुडलैंड से है वीना जी और अमृता जी घोंगोब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वस्ति हमारे साथ है काठबोन से, साथ दे रही हैं लेखानी और सुमित, और बिल्कुल हिल स्टेशन का गाना सुनकर उनको उनके पापा की याद आ गई। लीला जी भी बहुत शेगी से साथ दे रही हैं और इस वक्त सुधा जी भी हमारे साथ कोगो मॉडल से जुड़ चुकी हैं और अपने पराए इस फिल्म को, फिल्म के गीत को सुनकर आपको भी आपके पापा की याद आ गई, बापू जी की याद आ गई। ये सुदास और आशा भोसले के आवाज़ में रखा हुआ ये गीत था और इस फिल्म में नज़र आए थे अमोल पालेकर और शबाना आज़मी और कुछ ऐसी घटनाएँ जो आजकल हमारे जीवन में आए दिन बनती रहती है। जैसे घर में क्लेश होता है, घर में छोटी छोटी लड़ाइयाँ किस प्रकार से बड़ा रूप धारण करती हैं और उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर कैसे पड़ता है, ऐसी ही फिल्मों का, ऐसी ही स्टोरीज पर आधारित ऐसी फिल्म का ये गीत था। बहुत ही लाजवाब मूवी रही और इसी के साथ चलिए यहाँ पर लीला जी बाशिगी से साथ दे रही हैं। मुन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इक्वायो से और साथ है उनके पति चांद, बेटा है अविनाश अभिषेक और बेटी अविशा, बहू है नीलम जिंसके, दामाद है आश्ले और निया और निक्षु हमेशा की तरह साथ देते हुए। कमला जी कातकुक्कु से जुड़ी हुई हैं रामन परिवार और सीपोल परिवार के साथ। इंदिरा लॉटन हमारा साथ दे रही हैं मोडालबिया से। सूरज शर्मा सजादा जो जुड़े हुए हैं त्रियोले से। लच्छम सीगोबिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लियाफो वाकुआ से। लीलो जी घोंबुआ से बहुत ही प्यार से हंसती मुस्कुराती चहकती हुई खेतों से काम करती हुई हमेशा साथ देती हैं और कहती हैं कि चाहे मौसम कितना भी बेईमान क्यों ना हो पर ये गीतों की गर्मी उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उनको काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए बहुत हिम्मत देता है। तो चलिए हम भी आपको हिम्मत दे रहे हैं और आपके फ़ोन कॉल्स हमें हिम्मत दे रहे हैं, एक दूसरे का साथ हाथ बटाते हुए साथ देते हुए हम भी जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते चले। और आपकी प्यारी सखी गीता जी का नाम हम नहीं भूले हैं, आपके साथ किशोर भैया भी काम कर रहे होंगे उनका नाम भी जोड़ते हैं। यहाँ पर नवलफोंस से गीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और क्योपिप की गीता जी भी हमारा साथ दे रही हैं। घोंबुआ से है शिवरानी जी, उनके प्यारे बेटे सुधीर शर्मा सुनाही का बर्थडे था कल यानी 6 तारीख को सोमवार को। चलिए सुधीर भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपकी प्यारी पत्नी है रोशनी, साथ दे रहे हैं आपके बेटे शिरीष, बहू है शिखा, साथ है नाती शिवान, आपके भैया है राज, भाभी है आरती, साथ है आपके भतीजे यश और कबीर और अंजलि जी आपकी प्यारी बहू। एक घोंबुआ से आपके साथ जुड़ चुकी हैं आपकी बहन है शर्मिला सीचन काठबोन से और साथ दे रही हैं आपकी भगिनी उर्वशी रघुबा, मौसी है कृष्णा कुमारी, गौरी शंकर जो हैं यूके से। और चलिए इसी के साथ
बस यूं ही साथ देते रहिएगा। विश्वानी दुमन का भी मैसेज यहाँ पर आ पहुंचा है वाकवा से, वे भी हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं शुभ दिन आपको। बिल्कुल, आपको भी ढेर सारी बधाइयां आज के लिए। प्रेमिला सी गुलाम हमेशा की तरह कौन दिमाग से जुड़ी रहती है।

की प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो हैं बेचू परिवार से ग्रीष्मा फ्लक्स से साथ देते हुए, त्रियोले से अनसुईया राम केलावन भी हमेशा साथ दे रहे हैं। सुदेवी जी मोका से जुड़ी हुई हैं उनके पति और बच्चों के साथ, और विश्वानी जी हमारे साथ है पुत्र दो आमलेट से बहुत ही प्यार से जुड़ी हुई, उनके भैया हैं प्रेमनाथ, भाभी हैं सुबीता, तीन प्यारी बहनें इंदिरा, रीटा और शारदा, बस साथ देते रहिएगा और ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। इंदिरा चिंताराम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मोताइलोंग से, ओम और तुषार को बेहद मिस करती हैं, बहुत प्यार उनके लिए। किरण बारोट आप हमारे साथ हैं लिस पेगोंस त्रे बुशे से, आपकी प्यारी पत्नी नम्रता भी हमेशा साथ देते हुए, गर्मा गर्म चाय और बस हमेशा प्यार सा प्यारा सा आशीर्वाद आपकी ओर से हम तक आता रहा है, बहुत बहुत प्यार आपको हम कहेंगे। और इसी के साथ हम बिल्कुल आपको भी शुभ दिन की शुभकामनाएं देते हैं। शकुन आप भी हमारा साथ दे रही हैं रोज बेल से, एवा और शेन आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और शेन का जन्मदिन मनाया जाएगा 9 तारीख को यानी गुरुवार को। चलिए एडवांस में शेन को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद हमारी टीम की ओर से। नवीन लक्ष्मण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोज बेल से, प्यारी पत्नी चित्रा के साथ, निवेदिता और सच्चिदानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेबर्ग से, ललिता और धनराज चरण जी प्यारी बेटी स्वीटी के साथ मोरालबिया से साथ देते हुए, न्यू ग्रोव से जुड़े हुए हैं राज और अमृता ओबिलक, और रमेश और प्रीति जी जो हैं घोंबुआ से हमेशा साथ देते हैं। तो बस आज का दिन सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा रहे। और यहाँ पर किसी ने हमसे कहा है कि रेडियो मॉरिशस उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, चलिए कोशिश करेंगे कि आपके इस मैसेज को हमारी टेक्निकल टीम तक हम ज़रूर पहुँचाएँ और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बस यही आश्वासन देते हैं कि आते हैं 8 बजे के समाचारों के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के ज़माने के धुरंधर के साथ। तो बस साथ दीजिएगा और जितने लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं आपको खासम खास ये गाना हमारी ओर से, झूमते रहिए, नाचते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस ज़िंदगी को और भी ज़बरदस्त बनाइए अपने कर्मों के साथ, अपनी बातों के साथ, अपनी परफॉर्मेंस के साथ। और इसी के साथ चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी ही देर में समाचारों के बाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्ते और सलाम फजर के 8 बजल बा। आवाज़ समाचार सुना जा। आलू के खेती हर लोग के 50,000 रुपए की बजाय 85,000 रुपए के मुआवजा देवल जात बा। कृषि उद्योग मंत्रालय बताइले बा कि गत बरिस लामाही प्लेंसोफी लालोगाही व्यधागों वगैरह इलाका के 64 गो खेती हर लोग के प्रदान बीज से प्राप्त समस्या के बाद ये फैसला लेवल कर रहल बाते। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से ई बीज के आयात करल कर रहल बाते, जन करीब 40 दिन के बाद सरने लगेरा। फागे के निरीक्षण के बाद ही पता चला कि ई बीज अच्छा नहीं बा। यही खातिर सरकार सब संबद्ध खेती हर लोग के मुआवजा दे के फैसला ले लन जा। आज राष्ट्रीय सभा के कार्य लगावल जाए। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के संबोधित 17 सवाल में से एगो सुब्रमण्य किसनैन के मौत के मुतालिक करल जाल जांच के सिलसिले में बातें। मोताई ब्लॉन्च क्रानरी वसाफ ईस्ट के सांसद चेतन बाबूलाल जानना चाहेला कि कत्ल में महारत हासिल विदेशी जांचकर्ता के तहकीकात अबले कहाँ पहुँचल बा। शान कुंडुमाल मामले में नया विकास बा। ओकर कानूनी सलाहकार पुष्टि कर ले बा कि दुबई में ऑफिस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर नतीजा पर पहुँचे बा कि ऊ कोनु जुर्म नहीं करत वन बाते और ऊ ममीला के बगैर किसी शर्त के खारिज कर देवल कर रहल बाते। वकील ई बात भी जुटलाए कि शान कुंडुमाल के हवाई अड्डे पर गिरफ्तार करल कर और ओकर जमानत पर रिहा करल कर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 59 देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलावल गल एगो वैश्विक कार्रवाई में 1,000 से जस्ती जना के गिरफ्तार करल गल। एक कार्रवाई खातिर इंटरपोल, प्रोवेशन, ग्लोबल चेन वगैरह के सहयोग मिलेला। कु 2,070 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बाते। इरहर समाचार, नमस्ते और सलाम।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

मरने के खबर सुने जा सेवन प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट जुबई में चार कोरी तीन बरिस के 83 ऑन श्रीमती उमाबाई पांड्या श्रीमती उमाबाई पांड्या जनमीरा और चाची पांड्या के नाम से जस्ती जान जात्र लन गुजर कल हवन इनकर माती आज तीन बजे इनकर बेटा अनिल पांड्या के घरे सेवन प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट जुबई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर जुबई क्रिमिशन ग्राउंड के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे एट 3 PM क्लेफो नंबर 3 फिनिक्स में चार कोरी 80 जनाब मुस्तफ़ा गुलाम हुसैन जनाब मुस्तफ़ा गुलाम हुसैन जुन चिबाई मेकानिसियाँ UBS के नाम से जस्ती जाना जातरलन इंतकाल कर गल हवन जनाजा आज 12 बज के आधा कर घर एक क्लेफो नंबर 3 फिनिक्स से उठा के सबसे पहले जनाजे के नमाज खातिर मस्जिद अल नूर फिनिक्स और फिर दफनाए खातिर फिनिक्स के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM

0: ख्वाबोचिक थ्रियोले में तीन कोरी दस बरिस के स्वसंजीजों श्री परमानंद बुधराम, श्री परमानंद बुधराम जिन फुफुन के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर गल हवन इंकर माती आज दस बज के आधा, आज दस बज के आधा इंकर पत्नी चंद्राउती बुधराम के घरे ख्वाबोचिक थ्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कंपोमा महात्मा गांधी रोड थ्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुमारो एट ऑफ कॉस 10 AM डुलम स्ट्रीट न्यू क्रोव में दो कोरी 19 बरिस के 59वां श्री भुवन कुमार द्विवेदी पोमानंद, श्री भुवन कुमार द्विवेदी पोमानंद जिन कुशन के नाम से जस्ती जाना जात रहलन और जिन पूर्व पैक्स सुपरवाइजर ऑफ एयरपोर्ट रहलन गुजर गलहवन इंकर माती आज 11 बजे, आज 11 बजे इंकर घरे डुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मौदाल बे क्रिमेशन ग्राउंड के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM महात्मा गांधी रोड ख्वाबोचिक थ्रियोले में दो कोरी 7 बरिस के 47वां श्री सच्चिदानंद परलाकी, श्री सच्चिदानंद परलाकी जिन ऋषि के नाम से जस्ती जाना जात रहलन और जिन पूर्व प्रिजन ऑफिसर रहलन गुजर कल हवन इंकर माती आज 2 बज के आधा, आज 2 बज के आधा इंकर माँ परबावती सकुने परलाकी के घरे महात्मा गांधी रोड ख्वाबोचिक थ्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थियमी न्यूज थ्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास 2 PM जोली स्ट्रीट 400 में 3 कोरी 14 बरिस के 74वां श्रीमती मानती राम सुहोक, श्रीमती मानती राम सुहोक जिन मानती के नाम से जस्ती जाना जात रहा लन गुजर कल हवन इंकर माती आज 12:45 पौने 1 बजे इंकर भाई पुरन बली के घरे जूली स्ट्रीट 400 से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 12:45 PM आले बम्बू मोतायोरी में 5 कोरी 100 के श्रीमती कलावती रकातू, श्रीमती कलावती रकातू पैदाइशी नाम सालदों जुन पुपुक साबित के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर गल हवन इंकर माती आज 12:45 आज 12:45 इंकर बेटा देवरा कातू के घरे आले भ्रियों बॉम्बू मोतायोरी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पाए के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 12:45 AM रॉयल रोड गुडलैंड्स में 3 कोरी 12 बरिस के 72वां श्री देवानंदेश्वर लाल बोलोराम, श्री देवानंदेश्वर लाल बोलोराम जिन बोलो के नाम से जस्ती जाना जात्रलन गुजर गल हवन इंकर माती आज 12 बज के आधा, आज 12 बज के आधा इंकर घरे रॉयल रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 मॉर्चिनिया रोड सूरीनाम में 4 कोरी 80 श्रीमती अहिल्या सुको, श्रीमती अहिल्या सुको पैदाइशी नाम हरदास जिन अहिल्या के नाम से जस्ती जाना जात रहलन गुजर कल हवन इंकर माती आज 11 बजे, आज 11 बजे इंकर घरे मॉर्चिनिया रोड सूरीनाम से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सूरीनाम के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM पटोल लेन लिमारियान में 2 कोरी 15 बरिस के 2nd श्री घनश्याम चिन्नाबंस, श्री घनश्याम चिन्नाबंस जुंडोले के नाम से जस्ती जानो जात्रलन गुजर गल हवन इंकर माती आज 1 बजे, आज 1 बजे इंकर पत्नी विरमला चिन्नाबंस के घरे पुटुल लेन लेमारियान से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लेमारियान के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM रॉयल रोड लिस्पिरांस त्रिबुशे में 3 कोरी 19 बरिस के 79वां श्री सुरेंद्र रंजाया, श्री सुरेंद्र रंजाया जिन सुरेश के नाम से जस्ती जाना जात्रा लन गुजर गल हवन इंकर माती आज 10 बज के आधा, आज 10 बज के आधा इंकर पत्नी सेलू रंजाया के घरे रॉयल रोड लिस्पिरांस त्रिबुशे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 12:50 AM शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमनी संवेदना प्रकट करत है जा।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए इस समय घड़ी में 8:15 हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर आइए नज़र डालते चलें। ये विज्ञप्ति है ग्लेनपा के कुछ इलाके जिनमें है ग्लेनपाक, मौसलमा ईडू, कॉन्टिकफिन नंबर 1, कॉन्टिकफिन नंबर 2, रॉपर रोड, एवेन्यू देवियागु और मौसलमा करमताली के निवासियों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 7 जुलाई यानी आज सुबह 8:30 से लेकर दिन के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए इसी के साथ कार्यक्रम को जारी रखते हैं।
2: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
3: Subha ka nazrana, Radio Mauritius. Ek choti si mulaqat, ek kalakar ke saath, Radio Mauritius par. Radio Mauritius par. एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह का नजराना कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में एक छोटी सी मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बॉलीवुड अभिनेता के साथ। और आज का ये सेगमेंट हम डेडिकेट करेंगे रणवीर सिंह को। जी हाँ, इस एरा के धुरंधर हम कह सकते हैं रणवीर सिंह भवनानी, जो 6 जुलाई 1965 में उनका जन्म हुआ। माफ कीजिएगा, 1975 में। और चलिए इसी के साथ बिल्कुल आज हम कह सकते हैं कि रणवीर सिंह भारतीय अभिनेता एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक अपनी लाजवाब छवि बना दी है। और मुंबई में जन्मे रणवीर सिंह हमेशा से ही अभिनेता बनना चाहते थे, परंतु कॉलेज के दिनों में उसे लगा कि अभिनय का जो ख्याल है वो काफ़ी दूर की बात है और उसने लेखन और स्क्रिप्ट राइटिंग की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित किया और इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री करते वक्त रणवीर सिंह पुनः अभिनय की ओर आकर्षित हुए और वापस भारत में आने के बाद मुख्य किरदारों के लिए हिंदी फिल्म उद्योग में ऑडिशन देना उन्होंने शुरू कर दिया। 2010 में रणवीर सिंह ने यशराज फिल्म्स की नई फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए ऑडिशन दिया था और भूमिका प्राप्त करने में वे सफल भी रहे। और ये रोमांस कॉमेडी शादियों को योजनाकारों यानी इवेंट मैनेजमेंट पर आधारित थी ये फिल्म। और उस दरमियान इवेंट मैनेजमेंट यानी वेडिंग प्लानर्स का जो सिलसिला था उसी दौर से शुरू हुआ था। और रणवीर को एक पारंपरिक दिल्ली के लड़के बिट्टू का किरदार निभाने का अवसर मिला। फिल्म के निर्देशक मनीष शर्मा ने उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में भोजन अवकाश के दौरान भेजा, जहां से उसे अपने किरदार के लिए प्रेरणा मिली। रिलीज के बाद बैंड बाजा बारात बहुत ही हिट हुई और फिल्म ये साबित हुई कि रणवीर को अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नए पुरुष अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उसे सम्मानित भी किया गया। तो चलिए बैंड बाजा बारात और इस फिल्म में डेफिनेटली उनके साथ

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ।
1: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह भवनानी की, जिनका जन्मदिन बिल्कुल 6 जुलाई को मनाया गया और वे महाराष्ट्र के बॉम्बे यानी वर्तमान मुंबई में अंजू और जगजीत सिंह भवनानी के सिंधी परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी एक बड़ी बहन है रितिका भवनानी और उनके दादा दादी भारत के विभाजन के दौरान कराची में सिंध से वे बम्बई आए थे और उनके दादा सुंदर सिंह भवनानी साथ ही साथ उनकी दादी अभिनेत्री चंद बर्क थी और जिनका जन्म एक पंजाबी ईसाई परिवार में हुआ था और वे राजनायिक और लेखक सैमुअल मार्टिन बर्क की बहन थी जो स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में सक्रिय थी। रणवीर सिंह ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपना सरनेम भवनानी इसीलिए हटा दिया क्योंकि उन्हें लगा था कि ये नाम बहुत लंबा और बहुत सारे शब्दांशों वाला था जिससे एक बिकने वाली चीज के तौर पर उनकी ब्रांड वैल्यू शायद कम हो सकती थी। रणवीर सिंह की मामा की कजिन सुनीता कपूर और उनकी शादी एक्टर अनिल कपूर के साथ हुई। बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो वे फैमिली में पढ़ते हैं। रणवीर सिंह हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे और उन्होंने स्कूल के कई नाटकों और डिबेट्स में हिस्सा भी लिया। हालांकि मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लेने के बाद रणवीर सिंह को एहसास हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिलना बहुत मुश्किल था। उनको लगा कि एक्टिंग का ख्याल बहुत ही मुश्किल था और हो सकता है कि उन्हें चांस ना भी मिले, इसीलिए उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान अपना फोकस किया और वह अमेरिका चले गए जहाँ उन्होंने 2008 में इंडियाना यूनिवर्सिटी में उन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया। हालांकि ये जो विषय था बहुत ही माइनर था, पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 2007 में जब मुंबई लौटे तो लौटने के बाद रणवीर सिंह को कुछ साल तक O&M और साथ ही साथ जे वॉल्टर थॉम्सन जैसी एजेंसियों के साथ एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर के तौर पर काम मिला था और उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया, लेकिन एक्टिंग के करियर में उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर वे सच में चाहते थे कि उनका एक करियर बने एक्टिंग के क्षेत्र में। फिर उन्होंने डायरेक्टर्स को अपना पोर्टफोलियो भेजना शुरू कर दिया और भेजने के बाद वो हर तरह के ऑडिशन में जाते थे लेकिन उन्हें कोई अच्छा मौका नहीं मिला। उन्हें सिर्फ छोटे मोटे रोल के लिए ही कॉल किए जाते थे और सब कुछ बहुत निराशाजनक था, बहुत फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ वो दिन था, वो दिन थे। और कई बार उन्हें ये भी सोच में आता था कि ये क्षेत्र में वे अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वैसे कहते ना कि हर मंजर को प्राप्त करने के लिए

0: कुछ अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। और वैसा ही हुआ रणवीर सिंह के साथ भी। रणवीर सिंह ने भी बहुत सारी तपस्या की, बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने के बाद जब उन्हें बैंड बाजा बारात की फिल्म मिली 2010 में, फिल्म फेयर अवार्ड का मेल बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी उन्हें प्राप्त हुआ। और उसके बाद 2013 में फिल्म आई लुटेरा।
1: एक छोटी सी मुलाकात,
0: ये इस फिल्म में उन्होंने एक चोर की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में वे नजर आए थे सोनाक्षी सिन्हा के साथ। चलिए इस फिल्म का एक छोटा सा मुखड़ा आपको बिल्कुल सुनाएंगे।

ये तो थी फिल्म लुटेरा, पर ये भी बताते चले कि जी हाँ, 2010 में जब फिल्म आई थी बैंड बाजा बारात, उसके बाद एक बार फिर वे नजर आए थे अनुष्का शर्मा के साथ। फिल्म थी लेडीज वर्सेस रिकी बेल, और इस फिल्म में भी उनका जो काम था वो लोगों को बेहद बेहद पसंद आया, क्योंकि बिल्कुल हटकर उनका जो रोल था बहुत ही लाजवाब सा रोल था। और बिल्कुल इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी साथ नजर आई थी और बहुत ही लाजवाब सा रोल था। इसमें भी उन्होंने एक कॉन मैन की ही एक्टिंग की थी। चलिए इस फिल्म की भी एक छोटा सा जो मुखड़ा है आपको सुनाते हैं।

0: बिकॉज ये एक नया चेहरा था, बिल्कुल फ्रेश चेहरा था, और ये फ्रेश चेहरे ने कई जवान दिलों को बिल्कुल हिला के रख दिया, और बिल्कुल वे बन गए एक ऐसा कह सकते हैं कि चार्म ऑफ फेस, और इसी के साथ उन्होंने अपनी एक जगह कायम कर दी बॉलीवुड इंडस्ट्री में।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: 2013 में उनको मौका मिला संजय लीला भंसाली की बहुत ही बड़ी मूवी गोलियों की रास लीला रामलीला में काम करने का मौका मिला उन्हें, और उनके ऑपोजिट में नजर आई थी दीपिका पादुकोण। और ये जो कहानी थी वो रोमियो जूलियट, जी हाँ, विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट पर आधारित ये एक कहानी रही, और इस फिल्म में गुजराती लड़का रोमियो बना।

बिल्कुल रणवीर सिंह, और इस फिल्म को बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज और साथ ही साथ क्रिटिक्स मिले। और इतना ही नहीं, रोहित खिलनानी जो इंडिया टुडे में लिखते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये है भारत का भविष्य, यानी ये है एक ऐसा उभरता हुआ कलाकार जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत आगे तक ले जाएगा। और इतना ही नहीं, रणवीर सिंह की इस मूवी में उन्होंने एक सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस दी, 2002 करोड़ का रेवेन्यू कमाया इस फिल्म ने। और इसी के साथ साथ रणवीर सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन में भी उनका नाम शामिल हो गया। और बिल्कुल इस फिल्म का ये गाना तत्तड़ तत्तड़ बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था। और साथ में हम आपको बताते चले, उनकी हर फिल्म में कोई ना कोई गाना ऐसा रहा जो एक सिग्नेचर मूव छोड़ के गया।

बिल्कुल रणवीर सिंह की आज हम बात कर रहे हैं और कल उन्होंने मनाया अपना जन्मदिन 41 इयर्स के रणवीर सिंह। और इसी के साथ जी हाँ, हम आपको ये भी बताते चले कि 2013 में आई थी मूवी रामलीला और इस फिल्म के कितने ऐसे गाने थे जो कितने ज़्यादा हिट हो गए और साथ ही साथ के हर गाने के मूव्स ने लोगों को नाचने पर मजबूर कर दिया। 2014 में फिल्म आई गुंडे और इस फिल्म में अर्जुन कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान के साथ वे नजर आए थे। इस फिल्म में भी प्रियंका चोपड़ा के साथ रणवीर सिंह की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही लाजवाब रही और इस फिल्म ने भी 100 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। ۔2015 में आई मूवी दिल धड़कने दो, जोया अख्तर की ये मूवी और इस फिल्म में फरहान अख्तर के साथ नजर आए थे अनिल कपूर, शेफाली शाह, प्रियंका चोपड़ा और खुद रणवीर सिंह। हालांकि इस फिल्म में उनको एक पायलट बनने का बहुत ही मन था। फैमिलीज़ के झमेलों के साथ किस प्रकार से उन्होंने अपनी बहन को सपोर्ट किया हर प्रॉब्लम में, इस फिल्म की स्टोरी रही और बहुत ही ज़्यादा इस फिल्म ने भी कमर्शियली बहुत ही अच्छा कमाया और इस फिल्म को भी लोगों ने बेहद बेहद पसंद किया।

भाई शादियों में जब ये गाना बजता है तो पूरे शादी में जितने भी आए लोग होते हैं सब नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। और बेशक ऐसे कई सारे सिग्नेचर स्टाइल्स वाले जो डांसेस हैं जिन पे रणवीर सिंह ने परफॉर्म किया था। और बेशक 2015 में आई थी फिल्म बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में भी संजय लीला भंसाली का निर्देशन रहा और ये एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूवी, हालांकि ये एक बायोपिक थी और बिल्कुल इसमें दीपिका पादुकोण के साथ नजर आई थी प्रियंका चोपड़ा। और इस फिल्म में बिल्कुल बाजीराव के रोल में नजर आए थे एवर डैशिंग रणवीर सिंह, जिन्होंने सच में अपने बालों को निकाल दिया था, यानी पूरी तरह से गंजापन कर लिया था और उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया था 21 दिनों के लिए होटल के कमरे में, ताकि वो उस कैरेक्टर को पूरी तरह से महसूस कर सके। और सच में इस फिल्म में जिस प्रकार से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था बहुत ही काबिले तारीफ रहा। इस फिल्म ने भी 350 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और बिल्कुल फिल्म फेयर अवार्ड के बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्होंने बिल्कुल प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ चलिए बाजीराव मस्तानी का ये गाना भी विशाल डडलानी की आवाज़ में, और ये गाने के मूव्स भी लोगों को बिल्कुल याद हो गए। मल्हारी विशाल डडलानी की बहुत ही पावरफुल आवाज़ में।

सच में इस गीत के लिए भी जितना एनर्जी जितना पावर रणवीर सिंह ने अपने किरदार के द्वारा डाला था काबिले तारीफ। और इसी के साथ ऐसी कई सारी बायोपिक्स में उन्हें काम करने का मौका मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मावत। उससे पहले आई थी 2016 में बेफिक्रे, और इस फिल्म में वाणी कपूर उनके साथ नजर आई थी और ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी लाजवाब थी और हट कर थी। उसका जो थीम था बहुत ही हट कर था, लोगों को बेहद पसंद आई। उसके बाद आई फिल्म 2018 में पद्मावत। जी हाँ, इस फिल्म में भी संजय लीला भंसाली का निर्देशन रहा और इस फिल्म में रणवीर सिंह ने पोर्ट्रे किया एक नेगेटिव रोल अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि एक बहुत ही रूथलेस मुस्लिम किंग यानी मुगल एम्परर का उन्होंने किरदार निभाया। इस फिल्म में भी दीपिका पादुकोण नजर आई थी, पर इस फिल्म में दीपिका पादुकोण लीड कर रही थी शाहिद कपूर के साथ।

कि इस फिल्म के भी जो क्रिटिक्स थे वो बहुत ही काबिले तारीफ रहे, और अलाउद्दीन खिलजी जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भूमिका को दर्शाया ये आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ही मुश्किल किरदार रहा, क्योंकि पूरी तरह से अपने आप को एक ऐसे किरदार, एक ऐसे रूप में लोगों के सामने प्रदर्शित करना जहां पर लोगों के दिल में वो खौफ पैदा करना, वो गुस्सा पैदा करना आसान नहीं था। पर फिर भी रणवीर सिंह ने जी हाँ, रणवीर सिंह ने बहुत ही लाजवाब तरीके से इस किरदार को निभाया था, और पद्मावत ने भी 200 करोड़ रुपए कमाए, बिल्कुल 200 करोड़, और ये दुनिया भर में बिल्कुल 570 करोड़ की रेवेन्यू उसने कमाई, और बहुत ही बेहतरीन, और इस फिल्म को भी काफी सारे क्रिटिक्स मिले, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले, जब रणवीर सिंह को मिला था बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर क्रिटिक्स का अवार्ड, तभी उन्होंने स्टेज शेयर किया था आयुष्मान खुराना के साथ, जिन्हें मिला था अंधाधुंध के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड, यानी उस साल टाई हुआ था। तो चलिए, खली बली का ये गाना तो कितना हिट रहा ये तो आप जानते ही हैं। इस गीत को आइए, इस गीत का एक छोटा सा मुखड़ा आपको सुनाते हैं।

0: के सहरा खाली।
1: दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि ये फिल्म, ये गीत की जब शूटिंग हो रही थी, ये शूटिंग के दरमियान आप नहीं मानेंगे, रणवीर सिंह को इतना तेज़ बुखार रहा और इस तेज़ बुखार में भी उन्होंने जिस प्रकार की एक्टिंग की है और उनका चेहरा बिल्कुल नेचुरल तरीके से लाल था क्योंकि उस समय उनको तेज़ बुखार था और ऐसे तेज़ बुखार में भी उन्होंने अपने किरदार को नहीं छोड़ा और बिल्कुल उस एक्टिंग के साथ, उस किरदार के साथ उन्होंने बिल्कुल 100% अपना देने की कोशिश की। और बिल्कुल 2018 में आई फिल्म सिम्बा, जिसमें वे एक पुलिस के भूमिका में नज़र आए थे और इस फिल्म में भी उनका जो रोल रहा बहुत ही काबिले तारीफ़, और इस रोल को भी लोगों ने बेहद पसंद किया क्योंकि साथ ही साथ जहां पर उनकी एक पुलिस की जो एक्टिंग थी उसके साथ साथ उन्होंने अपने कॉमिक परफॉर्मेंस की जो टाइमिंग थी उसे भी बेहतरीन तरीके से संभाला। जी हाँ, रोहित शेट्टी की सिम्बा।
2: रुक जा रे बंदिया, ये रात।
1: इस फिल्म में वे नजर आए थे सारा अली खान, सोनू सूद के

और इस फिल्म ने भी कह सकते हैं कि उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही जगह। गली बॉय में वे नजर आए थे और इस फिल्म में नजर आए थे वे आलिया भट्ट के साथ। 2019 की ये मूवी रही और इस फिल्म ने भी 69th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल कर लिया था अपने आप को। और गली बॉय ने बिल्कुल 13th फिल्म फेयर अवार्ड जीता और साथ ही साथ इस फिल्म के लिए भी उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे फिल्मों के साथ उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। जी हाँ, सूर्यवंशी के जैसे फिल्म में भी उन्होंने अपने आप को दर्शाया। कपिल देव की बिल्कुल उन्होंने पोर्ट्रे किया था। बायो

बिल्कुल, ये भी एक बायोपिक रही कपिल देव पर आधारित 83, जिसमें वे 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में उन्होंने दर्शाया और जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया कपिल देव को, ये कोई आसान काम था नहीं, पर इस फिल्म में भी उनका जो उनकी जो भूमिका रही वो काबिले तारीफ थी। और ये फिल्म भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये दिखाता है कि किस प्रकार से हर बायोपिक में उन्होंने अपने आप को एक अलग सांचे में ढाला और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस को दिखाया। रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस में भी वे नजर आए थे, जिसमें वे अंगूर फिल्म का रीमेक था, 1982 की अंगूर फिल्म, जो कॉमेडी थी, जिसमें दो पेयर दिखाए गए थे जुड़वा बच्चों का जो अदल बदल हो जाता है, और ये भी एक बहुत ही लाजवाब मूवी रही। उसके बाद एक कमर्शियली अनसक्सेसफुल मूवी आई जयेश भाई जोरदार, पर ये फिल्म की भी स्टोरी काफी लाजवाब थी। 2023 में फिल्म आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और इस फिल्म में करण जौहर ने भाई कहते हैं ना मिसमैच करने की कोशिश की थी, क्योंकि एक टाइम था जब रणबीर कपूर डेट किया करते थे दीपिका पादुकोण को, और लॉटरी लग गई रणवीर सिंह की, शादी हुई रणवीर सिंह की दीपिका पादुकोण के साथ, पर फिर रणबीर कपूर की वाइफ बनी आलिया भट्ट, और उन्होंने करण जौहर ने क्या किया कि रणवीर सिंह को लेकर पैर अप कर दिया आलिया भट्ट के साथ। पर इस फिल्म में भी इन दोनों की जो केमिस्ट्री रही वो काबिले तारीफ, बहुत ही लाजवाब फिल्म रही। और इसी के साथ इस फिल्म में बिल्कुल एक बहुत ही अलग कंसेप्ट के साथ इस फिल्म को सजाया गया था, और इस फिल्म के गाने भी बहुत ही मज़ेदार।

कौन रोक सकता है ऐसे धुरंधर को जिन्होंने मन में एक जज्बा पाल लिया है आगे बढ़ने का और हिम्मत के साथ वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे समय बहुत कम रह गया है तो आपको ये भी बताते चले, 2025 में आई फिल्म धुरंधर और 2026 में धुरंधर का सीक्वल धुरंधर द रिवेंज में उनका जो कमाल था लाजवाब, और बड़े पर्दे पर उन्होंने कई ऐसे राज को पर्दाफाश किया और बिल्कुल मुंबई में होने वाले जो आतंकी हमले थे उस पर उन्होंने ये फिल्म में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई धुरंधर की। चलिए धुरंधर का ये गाना और इसी गीत के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे। वैसे आपको याद दिलाते चले, यही गाना हमें जोड़ेगा हमारी अगली कड़ी के साथ जो है हमारी धरोहर, जहां पर किरण जानकी हमारा साथ देंगी बहुत ही बेहतरीन जानकारियों के साथ।

ये थे रणवीर सिंह, और बेशक उनकी एक्टिंग का जो रंग है वो भी यूं ही गहरा होता चला गया, और धुरंधर के साथ उन्होंने जो एक्टिंग की, बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि इस रोल में और कोई फिट हो नहीं सकता। चलिए इसी के साथ आज के इस सेगमेंट को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि ये छोटी छोटी जानकारी

0: कार्यों से आपका दिल भी वही खुश हुआ होगा। और बिल्कुल कल उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, तो सभी फैंस के नाम और इसी के साथ जी हाँ जुड़ेंगे। आइए स्वागत करते हैं किरण जानकी का हमारे अगले सेगमेंट में जो है हमारी धरोहर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने देखा जा कि मॉरिशस में जोन पर्यटन लोग आवेदन सब पर्यटक लोग उ लोग कैसे हमने के देश के खाली सुंदरता ही देखने आवेलन सा, बल्कि हमने के देश के जोन घुला मिला संस्कृति बा, जोन सुंदरता बा, जोन हमने के संस्कृति के साथ साथ इतिहास बा, इस सब पर ध्यान देवेलन सा। और देखब जा कि हमने के देश के कौन कौन ऐसन जगह बा जेके पर्यटक लोग सबसे जस्ती विजिटे करेलन सा। काहे कि जैसे तोहरा बोल ली संस्कृति और धरोहर उ खाली मन के सुकून देवे खातिर नहीं है, बल्कि एकर से चाहे आमदनी भी प्राप्त करे के धरोहर और विरासत चाहे हमेशा से आमदनीशील रहे के, तभी उ सस्टेनेबल रहेला, उ टिकाऊ रहेला लंबा समय तक। कल्चरल टूरिज्म धरोहर के बढ़ावा देवे में बहुत बड़ा भूमिका निभावेला। और जे लोग दुनिया भर के हेरिटेज साइट्स यानी विरासत स्थल के दौरा करे जालन सा, उ लोग में एक कल्चरल टूरिस्ट लोग बहुत बड़ा उ लोग के रोल है। मॉरिशस के इकोनॉमी के मुख्य स्तंभ और हमनी के कोलोन आप जाने ला कि आज है पर्यटन सेक्टर। और जब हेरिटेज और टूरिज्म के बात चलेला मॉरिशस में तो कौन कौन मुख्य आकर्षण बा, चला आज इ पर नज़र दौड़ाए जा। विशेष रूप से जब हमने ऐसन मॉरिशस के बात कर रहे थे जा जहाँ पर संस्कृति, जहाँ पर हमने के धरोहर पर अब जस्ती से जस्ती ध्यान देवल जाला। मॉरिशस हिंद महासागर के बीचों बीच एगो सितारा है। मॉरिशस के धरती के स्वर्ग जान के बहुत से हनीमूनर्स यहाँ पर आवेलन सा। ढेर कोई इस समुद्र तट, पहाड़, हरियाली और झरना दिखे आवेलन सा, तब बहुत कोई गोल्फ खातिर आवेलन सा। लेकिन हमने के देश के जोन विरासत जगह बा, जोन राष्ट्रीय इतिहास के एगो इंडिकेटर है, ओकर एगो सूचक है, इस सब जगह पर पर्यटक बहुत जालन जा। और आज देखब जा कि ये सब में से कौन कौन उ सब जगह है जो इन पर्यटक लोग के मनपसंद है, सबसे मनपसंद। पहला तो बा शॉ दू मॉस, शहर के शॉ दू मॉस जो हमने के राजधानी के सबसे पुराना लेकिन अभी तक कार्यरत जगह है। फिर बा यूरिका प्लांटेशन हाउस, ये एगो मुख्य पर्यटक आकर्षण है। और आप अगर वहाँ पर नहीं गल हुई बा तो ज़रूर जाइया। यहाँ पर 18वीं शताब्दी के जो जीवन जिले हैं सा और 19वीं शताब्दी के ओकर कहानी बहुत सुंदर रूप से दर्शावल गल बा। हुआ पर पुराना सामान भी बा और हमने के पूर्वज लोग कैसे खाना पकावत रहन सा उ सब चीज़ हुआ पर देखबा। हुआ के रसोई में हुआ खाए पिए के भी व्यवस्था बा। अब 18वीं शताब्दी के सशिव सागर बोटानिकल गार्डन, एसएसआर बोटानिकल गार्डन पर्यटक लोग के मनपसंद जगह में से एगो है। ये बाग हिंद महासागर के एगो अद्भुत बाग है, खास तौर पर बॉटनी के नज़रिया से। अब हुए पर भेरी में बा आमोचा जुसुक, हुआ के शुगर फैक्ट्री म्यूजियम हमने के इतिहास के खेती और चीनी पैदावार के कहानी सुनावेला। अगर ये जगह के दौरा आप करबा तो आप जनबा कि यहाँ पर ईख के खेती और ईख के खेती के इतिहास के बारे में पूरा जानकारी देवल गल बा। और ये आमोचा जुसुक 250 बरिस पुराना इतिहास के यहाँ पर प्रस्तुत कर ले बा। पोर्टलुई के शहर

0: जोन बा हुआ पर हमनी के देश के सबसे जस्ती राष्ट्रीय विरासत बा 88 ई वजह से शहर जाए के सब पर्यटक खुशी रहेलन सा हुआ पर प्लस डॉम से लेके हुआ के गवर्नमेंट हाउस म्यूनिसिपल थिएटर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम फिर आप्रवासी घाट और आगे जे बता सिटाडेल जे फोर्ट एडिलेड नाम से जानल जात रहा ई सब हुआ पर बा और कैसे से कब्जा भुलाए शहर के बाजार एगो पर्यटक जे नहीं जाए हुआ तो ओके मॉरिशस के जन असली छवि बा उही ओके नज़र नहीं आए। अब एकर बात बा फिनिक्स के ग्लास गैलरी हुआ पर भी विजिटर लोग बहुत चालन जा और मॉरिशस द्वारा पैदा करल जाए होला जोन कांच के बोतल रही बर्तन रही या कोई भी सामान रही हुआ पर बतावल जला इस सब चीज हुआ पर एगो म्यूजियम भी बा और बहुत कम दाम में यहाँ पर सगबा सामान खरीद के कोई के भेंट या उपहार के रूप में प्रस्तुत करे। अब आप्रवासी घाट हमने के देश के पहला विश्व विरासत स्थल है जोन शर्तबंद मजदूरी के कहानी सुनावेला एकर तुरंत बाद एगो दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होल हमने के देश में और उहल लुमोन भाबो और यहाँ पर दास प्रथा खास तौर पर मारून स्लेव्स के कहानी पैबा ये भी जगह पर ढेर पर्यटक लोग जालन जा और यहाँ पर जोन पर्वत बा जेकर पर मारून स्लेव्स लोग चढ़ल रलन सा ओकर भी सैर करे बहुत पर्यटक निकले लंसा तो ई एकाद गो ऐसन जगह रहल जोन हमनी के देश में पर्यटक लोग के बहुत आकर्षित करेला और ई जोन सब जगह के नाम ले लीजा ई सब हमनी के देश के विरासत और इतिहास से जुड़ल बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला धन्यवाद नमस्ते।
1: तो चला इसी के साथ किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा और जे कोई घूमे आवता मोरिस में मोरिस के जोन प्राकृतिक सुंदरता बा मोरिस अपने आप में एगो बढ़िया सुंदर देश है। तो चलिए आज के है कार्यक्रम में अंतिम गीत भोजपुरी भाषा में मुकेश चेदी के आवाज़ में चलाओ अब जा और है ये गीत हमने के जोड़ी 9 बजे के समाचारों के साथ। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जारी रखल जाए जहां पर सुमिता सरकार आप सब कोई के साथ दियन जा और 9 बजे के समाचारों के बाद 9 बजे से लेके 10 बजे ले है कार्यक्रम जारी रखल जाए रेडियो मॉरिशस के लहरों पर जेकर सीधा प्रसारण मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग पर आप सुने सकबा रेडियो मॉरिशस पर सुने सकबा और साथ ही साथ MBC के तीसरा चैनल पर एक कर सीधा प्रसारण तू देखे सकबा। तो चला इसी के साथ बिल्कुल हमारी और आपकी भेंट यहीं तक 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में सुमिता सरकार आपका साथ देगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 7 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचार को लेकर सुमैरा आ चुकी है। सुमैरा, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार और आदाब सभी को। आज राज्यसभा के कार्य लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को संबोधित 17 सवालों में से एक सुब्रमण्य किसनैन की मौत से मुतालिक की जा रही जांच के सिलसिले में होगा। मोताई ब्लॉन्च ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट के सांसद चेतन बाबूलाल जानना चाहेंगे कि कत्ल में महारत हासिल विदेशी जाँचकर्ताओं की तहकीकत अब तक कहाँ पहुंची है। याद रहे, स्कॉटलैंड यार्ड से बरतानी जांचकर्ता जून 2025 में सेंट्रल सीआईडी की मदद करने के लिए मुर्शिद आए थे। किसनैन परिवार के वकील गामा वालिदैन अफसोस जताते हैं कि कुछ पहलुओं को मद्देनजर नहीं रखा गया है, जैसे कि दो एफिडेविट हैं। आलू के खेतीहरों को 50,000 रुपए के बजाय 85,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। कृषि उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल लामारी, प्लेन सूफी, लालोरा, रिविया ड्रागों वगैरह इलाकों के 64 खेतीहरों को प्रदान बीजों से प्राप्त समस्याओं के बाद ये फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से इन बीजों का आयात किया गया था, जो करीब 40 दिनों के बाद सड़ने लगे थे और फागे के निरीक्षण के बाद ये पता चला कि ये बीज अच्छे नहीं थे। इसलिए सरकार ने सभी संबद्ध खेतीहरों को मुआवजा देने का फैसला लिया। उन 17 खेतीहरों को भी जिन्होंने 21 दिनों की अवधि के बाद खेती करनी शुरू की थी। एसएमई चैम्बर और छोटे एवं मध्यम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन प्रधान एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को एक खत भेजने वाले हैं। एसएमई चैम्बर के अध्यक्ष अजय बिदेसी के मुताबिक एसएमईज की कई सिफारिशों को राष्ट्रीय बजट 2026-2027 में शामिल नहीं किया गया, जैसे कि कोविड-19 के दौरान डीबीएम से लिए गए कर्जों के सिलसिले में छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय समर्थन देने के लिए एक मैकेनिज्म की स्थापना करने का प्रस्ताव भी शामिल था, ताकि कर्ज लिया जा सके। सभी संगठन एक हल ढूंढने की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 59 मुल्कों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाई गई एक वैश्विक क्रैकडाउन कार्रवाई में 1,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के लिए इंटरपोल, ऑपरेशन ग्लोबल चेन वगैरह का सहयोग मिला है। कुल 2,070 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बने हुए थे। और फुटबॉल की बात करें तो विश्व कप में पुर्तगाल का सफर कल रात को ही ख़त्म हुआ। स्पेन ने गोल करके पुर्तगाल को खेर से बाहर कर दिया और आज सुबह बेल्जियम और अमेरिका का मैच पूरा हुआ। बेल्जियम ने 4-1 से अमेरिका को ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी है और आज रात राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना और इजिप्ट के दरमियान मैच खेला जाएगा रात 8 बजे। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार और आदाब।
3: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 7 जुलाई रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत हम करते हैं। साथ ही जितने दर्शक हमारे साथ MBC के चैनल 3 और MBC प्ले के जरिए जुड़े हुए हैं, आप सभी का हृदय से स्वागत हम करते हैं। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह आज की चर्चा इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें जो प्रोग्राम है इस समय आप लाइव सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण जो है वो हो रहा है MBC के चैनल 3 पर और साथ ही MBC प्ले पर। आपको ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो चलिए आज की चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। आज है 7 जुलाई,

0: और हर वर्ष 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जो माफ़ी मांगने और माफ़ करने के महत्व को उजागर करता है, और हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट होता है, हमसे कहीं ना कहीं जो है जीवन के सफ़र में गलतियां होती है, बहुत कुछ हम सीखते हैं जीवन में औरों को देखकर, अपने अनुभव से, अपने बड़ों से, और जीवन के इन राहों में चलते चलते कभी जाने अनजाने में हमसे भूल चूक हो जाती है। तो माफ़ी मांगना और अपने आप में माफ़ करना, ये मानव मूल्यों में जो है कहते हैं बहुत ही अहम महत्व रखते हैं। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिस रेखा जमन जी जुड़ चुकी है, सिस्टर रेखा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कोऑर्डिनेटर है इन मेडिटेशन इन स्कूल प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलके ये कार्य करती है, जहां पर बच्चों के साथ मेडिटेशन के महत्व को उन्हें बताती है, और साथ ही ब्रह्म कुमारी से भी जुड़ी हुई है, 30 वर्षों से ज़्यादा इनका अनुभव है मेडिटेशन और योग में। तो सिस्टर रेखा, आपका स्वागत हम करते हैं, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और मेडिटेशन और योग तो हमारे जीवन का हिस्सा होना ही चाहिए, खासकर आज के समय में, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है ग्लोबल फॉरगिवनेस डे। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये ग्लोबल फॉरगिवनेस डे क्या होता है और इसे क्यों मनाया जाता है?
1: आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कहते हैं हम जीवन के राह पर चल रहे हैं और रास्ते में सब कुछ मिलता है, कभी रास्ता ठीक चलता है और कभी इसमें उतराव चढ़ाव होता है
0: जी।
1: और हम मनुष्य हैं और मनुष्य से कभी कभी अच्छा कर्म होता है, कभी कभी भूलें भी हो जाती हैं
0: जी।
1: और भूलों को पार करके, समस्याओं को पार करके आगे चलना, इसको ही जीवन कहा जाता है। और आगे बढ़ने के लिए जीवन में कुछ मूल्यों की ज़रूरत होती है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं कि पीछे जाएं या रुक जाएं, जीवन रुक जाएं। और उन मूल्यों में से एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मूल्य है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो है क्षमा भाव। क्षमा कर देना, माफ़ कर देना
0: जी।
1: इसका क्या महत्व है, हर एक खुद जानता है, क्योंकि इसका हमारे सबका अनुभव है इसके बारे में। क्षमा करना या क्षमा मांगना, इसके हम बहुत अनुभवी हैं, क्योंकि कई बार, कितनी बार हमसे गलती हुई है और कितनी बार ही हमको माफ़ी प्राप्त हुई है, मिली हुई है औरों से, और कितनों ने हमको, हमारे साथ गलती की है, हमको कोई दुख ठेस पहुंचाया है या रास्ते में कुछ बात हो गई हो, और कितनी बार ही हमने औरों को माफ़ किया, इसके आधार से हम आगे बढ़ते गए
0: जी।
1: अगर ये मूल्य हमारे जीवन में ना हो, हम ना किसी को माफ़ करें और ना हमको कोई माफ़ करे, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रास्ता कितना कठिन हो सकता है और आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है। और हम सब चाहते हैं कि हमारा जो जीवन का सफ़र है, यात्रा है, वो सहजते सहज हो, औरों को भी सहजते सहज ये लगे। तो इसके लिए इस मूल्यों को अपने जीवन में लाना, इसके बारे में विचार करना, इसके लिए ही तो ये दिन रखा गया है, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे। ये है आज के दिन हमारे लिए है, इस मूल्य पर विचार करना कि इसका क्या महत्व है और मैं इसको कितना महत्व दे रहा हूँ और कितना और इसको महत्व देना है, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपने व्यावसायिक जीवन के लिए, और ख़ासकर समाज के लिए, सारे विश्व के लिए। ये वैल्यू जो है फॉरगिवनेस, इसका महत्व क्या है, आज का दिन है इस पर विचार करने का और निर्णय लेने का, चॉइस लेने का कि मैं क्या चूज करूं, क्षमा या घृणा, क्षमा या वैर भाव, क्षमा या दुख पहुंचाना
0: जी।
1: क्षमा करना और अपने स्ट्रेस को और दूसरों के तनाव और बढ़ाना उनके जीवन में, या इन सब बातों से मुक्त करना।
0: बिल्कुल, क्षमा की जब हम बात करते हैं, फॉरगिवनेस की जब हम बात करते हैं सिस्टर रेखा, सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी से क्षमा मांगना या किसी को माफ़ कर देना। जब भी हम इस इमोशन से जुड़े होते हैं कि किसी को हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या कोई हमें माफ़ नहीं कर पा रहा है, उसके साथ साथ काफ़ी

0: सारे इमोशंस आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, नफरत आ जाती है, मतलब कि एक दूसरे के प्रति जो सम्मान की भावना होती है, जो प्रेम की भावना होती है, उससे हम दूर होते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्षमा कर देना सुनने में और बोलने में बहुत ही सरल लगता है, लेकिन लोग इसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि सालों से लोग एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं ना, अलग है, मन में दुख लिए बैठे हुए हैं कि देखो वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, और कोई पहला कदम नहीं उठाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती है? अगर हम फॉरगिवनेस की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए?
1: क्षमा जो होता है वो सहज भी जैसे एक प्रोसेस हो सकता है, प्रक्रिया हो सकता है, और मुश्किल से मुश्किल भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन चोट कितना गहरा पहुंचा है, क्योंकि जब भी कोई टकराव होता है, कोई भी कारण हो, उसमें चोट जरूर पहुंचता है एक दूसरे को। इसके कारण ही वो जैसे एक दूसरे को देख नहीं पाते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, एक दूसरे से काम नहीं कर पाते, एक दूसरे के पास नहीं आ सकती, वो जो मतलब डिस्टेंस है हो जाते हैं, बढ़ता जाता है। तो जैसे हमने कहा, इट डिपेंड्स ऑन कितना गहरा वो चोट आपको पहुंचा है या आपने उसको पहुंचाया है। इसलिए कभी ये अपना बहुत समय भी लगता है, कुछ बातों पर और कुछ लोगों से, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप, आपका संबंध क्या है उस व्यक्ति से। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिसमें सहज ही हम माफ़ कर देते हैं या माफ़ मिल जाता है, और कुछ ऐसे संबंध होते हैं ऑलरेडी थोड़ा डिस्टेंस होता है, उसमें कुछ हो जाता है तो फिर और मुश्किल हो जाता है
0: जी। और कभी कभार माफ़ी मांगने पर माफ़ी आपको नहीं मिलती है,
1: नहीं
0: तो
1: मिलती,
0: वो एक गहरी चोट के रूप में जो है आपको जीवन भर जो है सताते रहती है,
1: और कभी कभी वो बढ़ता जाता है।
0: और कभी कभार ये इमोशनल स्ट्रेस जो है, ये इमोशनल ट्रॉमा जो है, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है।
1: आजकल प्रभावित करेगा,
0: आजकल हमारी जीवन शैली काफ़ी बदल गई है, हर कोई अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद कभी कभार ऐसा होता है कि मन की शांति हमें नहीं मिलती है। और जब वही एक बेसिक चीज़ अगर हमारे जीवन में नहीं होती है, हमारे भीतर संतुष्टि नहीं होती है, हमारे भीतर प्रेम और करुणा नहीं होती है, तो ऐसा होता है कि सब कुछ होना और ये एक चीज़ का नहीं होना एक गहरा प्रभाव डालता है,
1: जैसे खालीपन
0: सा रहता
1: है। जैसे सब कुछ प्राप्त होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है हमारे पास, जैसे खाली हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें और प्रोग्रेस का, समृद्धि का, विकास का अनुभव करें। उसके लिए मन की शांति बहुत ज़रूरी है, और दिल का साफ स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ ऐसी बातें अंदर में हैं, मन के अंदर या दिल के अंदर, हृदय के अंदर कुछ हैं, तो वो खटकता है, और उसका जैसे आपने ठीक बताया, हमारे जीवन की जितनी भी और एरियाज हैं उसको
0: अफेक्ट करता है।
1: खासकर हमारे स्वास्थ्य पर
0: जी, सबसे पहला असर,
1: क्योंकि मन और शरीर एक है ना
0: जी।
1: मन के अंदर कुछ भी चल रहा है, दिल के अंदर कुछ भी चल रहा है, पहला प्रभाव तो शरीर पर ही रहेगा, क्योंकि दोनों इतना घना मीन्स रिलेशनशिप है, कनेक्शन है। तो स्वास्थ्य का असर पड़ेगा, और स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो अपने जो पारिवारिक जीवन है वो कैसे, मतलब कैसे कम्युनिकेशन कैसे चलेगा, रिलेशनशिप कैसे होगा, उसका असर पड़ेगा। जैसे मेरे मन के अंदर बहुत क्रोध है, तो चाहे किसी और व्यक्ति से कुछ हुआ है, लेकिन क्रोध उस पर नहीं निकाल रहे हैं तो अपनों पर ही निकालेंगे,
0: अपनों पर निकालते हैं, परिवार के सदस्यों पर।
1: संबंध का क्या हो जाता है? फिर जो सुख शांति है, जो सहयोग की भावना होनी चाहिए, वो सब खत्म हो जाता है। फिर काम पर आएंगे तो उसका असर आपके परफॉर्मेंस पर पड़ेगा
0: जी,
1: और फिर समाज में आपका चेहरा का रंग अलग हो जाता है, आपका जो मतलब बातचीत चलता है औरों के साथ, आपका संबंध जो है आपकी कम्युनिटी के साथ, सब पर असर पड़ता है, और उसका जो रिटर्न है आप पर ही वापस आएगा
0: जी।
1: जैसे कहते हैं ना, कर्म की कुहिए गति, हमने उस चीज़ को अंदर रखा, वो घूम फिर कर आपकी पास ही आएगा।
0: ये कहते हैं ना, जब हमारे भीतर घृणा की भावना होती है किसी के प्रति, या नफरत की भावना होती है, या फिर जलन द्वेष जो कहे, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले व्यक्ति जिसके प्रति है वो उस पर शायद असर करे या ना करे, वो इमोशंस का असर सबसे पहले हम पर होता है, क्योंकि वो हमें पहले जला रहा है।

0: आपने बिल्कुल ठीक बोला। इसलिए जो ये क्षमा भाव जो होता है ना, वो जिसने आपको दुख दिया उसके प्रति नहीं होता है, क्षमा भाव खुद के प्रति होता है। खुद के लिए है, ताकि अपने को उन बुरी बातों का, जैसे घृणा, क्रोध, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी असर आप पर पड़ रहा है, आप उससे मुक्त हो जाएं। तो जो क्षमा है वो दूसरों के प्रति नहीं। कई बार ऐसे समझते हैं कि दूसरों को क्षमा करना है मुझे, लेकिन नहीं, वो ये जो क्षमा है उस व्यक्ति के लिए, उसकी गलती के लिए नहीं है, वो क्षमा जो है वो मेरे लिए है। मुझे अपने को हील करना है, मुझे अपने को क्लियर करना है, मुझे खुद को क्षमा करके अपने को मुक्त करना है। फिर उसके आधार से मैं जिसने मेरे को दुख पहुंचाया या कुछ किया, फिर उसका हल ढूंढ सकते हैं। अगर अंदर का हल नहीं ढूंढ पाए, अंदर का जो आंतरिक शांति जो है उसको नहीं ढूंढ पाए, तो फिर दूसरों को कैसे मदद दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: क्योंकि जब भी कोई दुख पहुंचाता है तो हम चाहते हैं कि वो बदल जाए। लेकिन अगर मेरे अंदर उसके प्रति कुछ भी अशुद्ध भाव होगा, तो कितना भी मैं कोशिश करूं कि उसको मदद दूं, थोड़ा बदल जाए, ऐसा ना करे अगली बार, लेकिन उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर कुछ अशुभ भाव हैं। इसलिए अशुभ कर्तव्य या अशुभ व्यवहार हुआ है उसमें ऑलरेडी अशुद्धि है, मैं अशुद्धि पाल रहा हूँ उसके प्रति। तो अगर अशुद्ध और अशुद्ध मिल जाए, उसका तो डबल हो जाएगा, वो तो और बिगड़ जाएगा। जैसे कोई गिर गया है और अशुद्धि पालने से फिर उसको और उसको गिरा रहा हूँ। इसलिए पहले अपने को क्लियर करें, अपने को क्षमा भाव से, उस शक्ति को से अपने को स्वच्छ साफ बना दें। मन में जितने भी अगर घृणा भाव हैं, वैर भाव हैं या क्रोध हैं, कुछ भी हैं, उसको पहले साफ करें। फिर जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी के आधार से फिर एक दूसरे को क्षमा कर सकेंगे और एक दूसरे को मदद करके अगर कुछ बदलाव लाना है, परिवर्तन लाने, उसमें आगे बढ़ सकेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: तो फर्स्ट क्षमा है खुद के प्रति।
1: और माफ़ करने की भावना को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है सिस्टर रेखा? क्योंकि अभी के समय में हम बात करें तो हम छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के साथ नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा बैठते हैं, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती है तब हम निराश हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो निराशा कल को जाकर घृणा में बदल जाती है, नफ़रत में बदल जाती है। तो माफ़ करने की भावना, फॉरगिवनेस की जो भावना है, इसे इतनी अहमियत क्यों दी गई है मनुष्य के जीवन में?
0: क्योंकि ये जो क्षमा की भावना है, ये कहीं जा कर के कहीं को कहीं उसको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो आंतरिक स्वभाव है, आत्मिक स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही है स्नेह और क्षमा। जैसे कहते हैं हमारा नेचुरल नेचर है
1: जी,
0: ये हमारा स्पिरिचुअल ट्रेजर है
1: जी,
0: हमारी जो आध्यात्मिकता है अंदर, आत्मा के अंदर, वो ऑलरेडी है वहाँ, जैसे शांति ऑलरेडी है वहाँ
1: जी।
0: आध्यात्मिकता में हम यही सीखते हैं, मेडिटेशन में यही सीखते हैं कि जितने भी जीवन के मूल्य हैं हमारे अंदर छिपी हुई हैं, वे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारे पास कुछ है तो क्यों ना उसका प्रयोग करें। क्यों परमात्मा ने जब हमको रचा तो ये सब जितने भी गुण हैं, जितने भी आंतरिक शक्तियाँ हैं, मूल्य हैं, हम में वो भर दिया है ताकि हम उसका प्रयोग कर सकें। अगर हैं और प्रयोग ना करें तो नुकसान किसको पहुंचेगा?
1: बिल्कुल,
0: अपने को और हमारे द्वारा औरों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो वो हमारे पास ऑलरेडी है, वो जो ट्रेजर है जिसको कहते हैं, जिसको वो जो मतलब जो पूंजी है हमारे अंदर, ये जैसे हमारे लिए जैसे एक वेपन है, एक शस्त्र के समान है। उस शस्त्र के आधार से हम अपने जितने भी अंदर क्रोध, वैर, घृणा, कुछ भी हो, उसका हम उसको हम निकाल सकते हैं, उस पर हम विजय जीत पा सकते हैं। तो क्यों ना उसका प्रयोग करें, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास है और वो तो फ्री है
1: जी।
0: कुछ पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं। जितना भी हमारे जीवन के अंदर संबंधों के अंदर समस्याएं हैं, सबका हल
1: हमारे
0: सब
1: भीतर है,
0: शस्त्र हमारे भीतर है, बस उनको पहचानना है, जगाना है और खास उसका प्रयोग करना है। एक बारी नहीं प्रयोग कर पाए, दूसरी बारी नहीं, या प्रयोग प्रयत्न कर रहे हैं कर पहुंच नहीं रहा है, बार बार करने से वो पहुंच जाएगा, उससे कार्य हो जाएगा। एक बार माफ़ करने की

0: कोशिश की नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरी बार फिर से उसको यूज़ करें, फिर से उसका प्रयोग करें, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, दो तीन बारी पर जैसे उस शस्त्र को के आदि हो जाएंगे, फिर जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, एक बारी, दो बारी, दसवीं बारी पर उसको क्षमा करने की क्षमता जागृत हो ही जाए,
1: यानी कि आप में इच्छा होनी चाहिए,
0: इंटेंशन होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और प्रैक्टिस करें।
1: बिल्कुल,
0: एक बारी नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस चाहिए
1: अवश्य। जितने श्रोता, जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें 402-8085 पर कॉल कर सकते हैं। और अभी के लिए चलिए एक गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: की चर्चा।
1: चलिए एक बार फिर से हमारे सभी श्रोता और दर्शकों का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं और आज जो है हम ग्लोबल फॉरगिवनेस डे पर बात कर रहे हैं। क्षमा मांगना, क्षमा करना अपने आप में सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन ये अपने आप में एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। खासकर चलिए अब हम बच्चों से इस क्षमा याचना को जोड़ते हैं। अभी की जीवन शैली हमारी काफ़ी बदल गई है। अच्छे समय के साथ हम देख रहे हैं काफ़ी ज़िद्दी होते जा रहे हैं, उनमें काफ़ी बिहेवियरल इश्यूज़ जो है हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभार हम काफ़ी साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कार्यक्रम करते हैं, जो शिक्षा से रिलेटेड रिसोर्स पर्सन होते हैं उनके साथ भी जुड़ते हैं, तो कभी कभार हमें देखने और सुनने को मिलता है कि बच्चों के जो है बर्ताव में काफ़ी बदलाव आ गया है और बच्चे जो है माफ़ी मांगना आजकल भूलते जा रहे हैं। तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या बच्चों के लिए भी माफ़ी मांगना उतना ही ज़रूरी है अपने बड़ों से, और अगर है तो क्यों?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम बच्चों के साथ बहुत बहुत समय से काम जी करते आए हैं, ओवर 35-40 ईयर्स से जी जुड़े हुए हैं, तो हमने देखा कितना और कैसे जैसे जैसे समाज बदलता जा रहा है, जीवन की शैली बदलती जा रही है, वैसे उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर कितना पड़ रहा है, बच्चों पर और युवा वालों पर कैसे पड़ रहा है। और आजकल हमारे जो आधुनिक लाइफस्टाइल हैं, सोशल मीडिया आदि आदि, उसका भी बहुत गहन प्रभाव
1: बच्चों
2: के मन पर, उनके विचार करने पर, उनकी इमोशंस फीलिंग्स पर और उनके बिहेवियर उनके बर्ताव पर बहुत असर पड़ रहा है। आजकल हमारे बच्चे और युवा जो हैं, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर एंग्री, बहुत बहुत क्रोध उनमें बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने माता पिता के साथ, और कभी कभी उनका जो संगठ है पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर, उनका भी प्रभाव पड़ता है, खासकर सोशल मीडिया
1: जी।
2: उनका एक्सपोजर इतना जो भी सोशल मीडिया पर चलता है वो ज़्यादातर लॉट ऑफ वायलेंस एंड एंगर नेगेटिव बहुत हैं, तो वो अंदर घुस जाता है ना, मन जैसे एक स्पॉन्ज होता है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है और वो अंदर रखते हैं, और उनको ये शिक्षा नहीं मिलती है कि अंदर की जो बातें उसको प्रोसेस कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस रीति से करना चाहिए। हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है अभी बस उनका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ देखते हैं कि मीन्स एकेडमिक कैपेसिटी, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस अभी तक उस पर कुछ और काम करना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा What is the right way to think?
1: जी,
2: अच्छे विचार बुरे विचार क्या है, अच्छे इमोशंस नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, और मैनेज उनको कैसे करेंगे। हम सबको क्रोध आता है, क्रोध आए तो क्या करना पड़े, कुछ अनबनत हो जाती हैं पीयर ग्रुप से, किसी ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाई, मुझे क्रोध आ रहा है, आई वॉन्ट टू रिटेलिएट, मुझे रिवेंज, मुझे उसको बताना है, सिखाना है, लेकिन क्रोध के आधार से उस संबंध का क्या असर, उस पर असर क्या होगा, और क्षमा का स्थान क्या है संबंध में, चाहे माता पिता और बच्चों के संबंध में, चाहे स्कूल में टीचर्स के साथ, वो ये जो नैतिक मूल्य हैं जिसके बारे में हम आज विचार कर रहे हैं, क्षमा भाव, फॉरगिवनेस, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, जीवन में इसका स्थान क्या है, ये हम लोगों को, बड़ों को ये शिक्षा, ये ट्रेनिंग, ये रिफ्लेक्शन उन बच्चों में भरना है
1: चाहिए।
2: इसके इसके आधार पर ही हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है स्कूल में
1: जी,
2: जिसका हमने टाइटल रखा है मेडिटेशन इन स्कूल, ताकि जितने भी जीवन के मूल्य हैं, जीवन के सिद्धांत हैं और जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं उनका जो रिएक्शन है और रिलेशनशिप में कितनी बातें चलती हैं, तो हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रियाएं कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, ये सारा उस प्रोजेक्ट इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, ताकि बच्चों को वी एनकरेज देम टू रिफ्लेक्ट अबाउट लाइफ।

ताकि वो रिस्पोंड करे लाइफ की जितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, बच्चों के सामने भी आती हैं, युवा के सामने, कोई भी हो, सबके सामने अच्छी घटनाएं बुरी घटनाएं आती हैं, अच्छी परिस्थितियां बुरी परिस्थितियां, लेकिन उनको कैसे पार करना है ताकि हम

0: छोटे उम्र से ही बच्चों में विचार चलाने की, रिफ्लेक्शन करने की, फिर उस पर ध्यान देने की, फिर उसको उसको जो अच्छी बातें हैं, गुड प्रैक्टिसेस, वो कैसे प्रैक्टिस करें ताकि वो उसमें वो क्षमता उनमें आ जाए, देन इट बिकम्स अ स्किल फॉर लाइफ।
1: जी, ये काफ़ी सराहनीय है कि शिक्षा मंत्रालय भी जो है होलिस्टिक लर्निंग की ओर जो है काफ़ी अपना पॉजिटिव अप्रोच रख रहा है, और अब छोटे ही से बच्चों में जो है मानवीय मूल्यों की जो इम्पोर्टेंस है इसे समझकर ऐसे प्रोडक्शन, ऐसे जो है प्रोजेक्ट्स में अपना जो है इन्वॉल्वमेंट दे रही है, जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन इन स्कूल प्रोजेक्ट। सो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं और छोटों से ही जब बच्चों को इन सभी बातों के बारे में जानकारी दी जाती है, मानवीय मूल्यों को समझाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली घर पर भी माता पिता अपने बच्चों को सिखाते ही हैं, लेकिन जब स्कूल में भी आकर वो इन सभी बातों पर गौर करते हैं तो इनकी एक पर्सनालिटी में एक अलग ही जो है बदलाव हम देखते हैं। तो किस तरह से हम ये मेडिटेशन इन स्कूल प्रोजेक्ट को फॉरगिवनेस, इस ग्लोबल फॉरगिवनेस डे से जोड़ पाते हैं, थोड़ा सा इसके बीच में जो रिलेशन है ये बताएं।
0: मतलब इस प्रोजेक्ट का मेन जो लक्ष्य है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड, क्योंकि हमको पता है बच्चों का मन कैसे और उस चंचल मन का असर उनके स्टडीज़ पर पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से ये है कि उनको सिखाएं कि मन को कैसे स्थिर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशन, छोटे छोटे प्रैक्टिस से उनके मन को फर्स्ट स्थिर करना सिखाते हैं, क्योंकि स्थिर मन से ही हम जीवन की बातों पर रिफ्लेक्ट मतलब विचार चला सके। अगर मन चंचल है तो उस पर विचार चलाना, गहन रीति से किसी बात पर विचार चलाना असंभव है। तो इस रीति से माइंड कंट्रोल, कंसंट्रेशन, फिर हमारे मन के अंदर इमोशंस भी चलते हैं, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, किसी ने हमारे प्रति कुछ कह दिया तो अंदर हमारे इमोशंस आ जाते हैं, अच्छे बुरे इमोशंस, क्या होता है सकारात्मक और नकारात्मक इमोशंस, उनका जो मतलब डिफरेंस है उनको सिखाते हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो नेगेटिव इमोशंस है उनका क्या करना है।
1: जी, चलिए एक श्रोता है हमारे साथ, हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आज के इस विषय पर वो क्या जोड़ना चाहते हैं। 4028085 है नंबर हमारा, और हम मांग करेंगे कि जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपके जो विचार है या जो भी प्रश्न है उसी पर आधारित हो। चलिए मिलते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो, नमस्कार।
2: हेलो, नमस्ते सुमित जी, मैं कोटे से आशा जाने बोल रही हूँ।
1: नमस्ते आशा जी, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ, और आज के मेहमान को भी सादर नमन करती हूँ।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार
2: जी। देखिए सुमित जी, विषय तो बहुत अच्छा है, क्षमा फॉर गिवनेस। और इंसान में बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें क्षमाशील होना इस गुण का बहुत बड़ा महत्व होता है।
1: जी।
2: हमारे धर्म ग्रंथ में 10 लक्ष्य बताए गए हैं, जिसमें क्षमा का दान इसका बहुत बहुत ज्यादा ही महत्व बताया गया है, क्योंकि इंसान में करुणा दया अगर हो तो वो संसार के कठिन से कठिन कार्य में भी सफल हो सकता है।
1: जी।
2: जैसे कि हम क्षमा कब कर सकते हैं, एक इंसान एक दूसरे व्यक्ति को कब क्षमा कर सकता है, जब उसमें ईगो ना हो।
1: जी।
2: अगर उसमें अहंकार हो तो वो कभी क्षमाशील नहीं हो सकता।
1: जी।
2: अहंकार और संस्कार में एक ही अंतर है, संस्कार झुकता है और अहंकार झुकाता है। तो इसीलिए कहती हूँ, यदि हमारे हृदय में ईगो हो ना तो हम कभी क्षमाशील बन ही नहीं सकते, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे कोई भूल हो गई है तो सामने वाला व्यक्ति हमें क्षमा कर दे। पर हमें ये हमने कभी सोचा है किसी ने हमारा दिल दुखा दिया या कुछ अक्षत हमें कह दिया तो हम किसी दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? तो हम यदि क्षमा नहीं कर सकते तो हमें क्षमा मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे भूल को क्षमा मिल, हमें क्षमा मिल जाए, तो हमें पहले क्षमा करना सीखना चाहिए। और अगर सबका दिल एक माँ की तरह हो ना तो संसार में रिश्तों में कभी कोई आपदा विपदा आ ही नहीं सकती। जिस तरह से माँ अपने बच्चे के हर भूल को क्षमा कर देती है, क्योंकि माँ तो ममता का दरिया होती है, उसी प्रकार यदि हम भी अपने हृदय में एक माँ का दिल रखें तो हम भी क्षमा करना खुद सीखेंगे भी और क्षमा मांगने से भी हिचकिचाएंगे भी नहीं। तो ये

0: कहूंगी सुमी जी कि क्षमा करना और क्षमा मांगना इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि इससे दिल बड़ा होता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपके इन विचारों के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने और धन्यवाद। और चलिए एक और श्रोता है, उनसे भी हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार सुनी जी।
1: जी नमस्ते धनी जी, कैसे हैं आप?
2: जी को भी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: देखिए अगर हम कहें कि बच्चों को क्षमा मांगना है
1: जी,
2: बड़ों से अगर कोई गलती हुई, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज के माता पिता जब कुछ वाद विवाद कर रहे हैं अपने अपने अपने में, तो अगर माता का भूल है या पिता का भूल है, अगर वो अपने आप में क्षमा मांगे और बच्चे सुने, तो ये ऐसी प्रथा को मजा चलता रहेगा। मान लीजिए चलता रहेगा कि मेरे पिता से गलती हुई तो उसने मेरी पिता ने माँ से माफी मांगी
1: जी।
2: तो ये माफी की बात बच्चे सुने, और अगर वो गलती करें तो वो भी माफी मांगेंगे। ये माफी की बात इसका जो सिद्धांत है वो चलता रहेगा
1: जी।
2: तो आज ये सब कुछ रुक गया। हाँ, बाहर में अगर कोई दोस्ती से किसी दोस्त से, या मान लीजिए कि काम में कुछ गलती हुई तो सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन ये माफी का जो स्तर है, माफी का जो जितना मान है, पहले के समय में बच्चे माता पिता से अगर कोई गलती हुई तो पैर लग चरण छूकर माफी मांगते थे। ये माफी मांगना बहुत यही बहुत हमारे परिवार में होता था।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी।
2: से माफी मांगना, दादा दादी से माफी मांगना
1: जी,
2: यही एक ये सोरी उरी नहीं था
1: जी। चलिए धन्यवाद धनी जी आपके विचारों के लिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी बदलाव हम समाज में देखना चाहते हैं या अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उसके लिए पहला कदम हमें खुद उठाना पड़ता है। तो अगर हम किसी से माफ़ी की अपेक्षा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी माफ़ करना आना चाहिए, है ना। चलिए एक और श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार।
3: हेलो सुमी जी, नमस्कार।
1: नमस्ते वीना जी, आपका स्वागत है।
3: तो बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा मुझे समझ
1: में आया। जी लाइन कट गई यहाँ पर, आप कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कीजिएगा वीना जी। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। क्षमा याचना की बात करें अगर हम सिस्टर रेखा, तो युवाओं में, अभी के युवाओं में क्षमा याचना की भावना होना कितना आवश्यक है, और किस तरह से ये उनके पर्सनल लाइफ के साथ साथ अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में कदम रख रहे हैं तो किस तरह से ये उनके लिए हेल्पफुल साबित होता है?
4: हम सबका अनुभव है कि जब हम क्षमा या तो मांगने में या तो देने में जब मुश्किलात होती हैं, तो ये हमारे अंदर एक कमज़ोरी का चिन्ह है। क्षमा कौन कर सकता है, क्षमा कौन दे सकता है, क्षमा कौन मांग सकता है जो अंदर से बहुत मजबूत हो
1: जी।
4: अगर ईगो मजबूत होगा तो हमारे में वो क्षमा न मांगने और न देने की शक्ति होगी, कि एक श्रोता ने अभी खूब अच्छी तरह से बताया।
1: और आपने सही कहा, कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर हमें किसी से माफ़ी मांगनी है तो हम अपने आप में सोचते हैं कि ये हमें कमज़ोर बना रहा है,
4: हम अपने को कमज़ोर दिखा रहे
1: हैं,
4: लेकिन ये तो द ऑपोजिट है। ये तो हमेशा क्षमा भाव को महानता माना गया, महान लोग ही क्षमा कर सकते हैं। छोटे लोग, छोटे दिल वाले कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें वो शक्ति ही नहीं है
1: जी।
4: तो उसके अंदर मतलब क्षमा करने के लिए वो शक्ति चाहिए,
1: इट इज़
4: ए पावर, ये शक्ति है क्षमा करने की शक्ति। और उस शक्ति ऐसी नहीं मिलती, उसको जमा करना पड़ता है, उसको कमाना पड़ता है,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं नाराज होना, गुस्सा करना,
4: ये सब कमजोरियाँ
1: सरल है,
4: और ये तो कमजोरियाँ हैं।
1: वहीं पे क्षमा करना या चुप रह के किसी की बातों को सुनना या किसी के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए,
4: ये अपने बड़प्पन की और महानता की निशानी है। और वो जैसे अपने वो अंदर अपने में विकसित करना होगा, उस पर काम करना होगा, और इस प्रोजेक्ट के द्वारा यही हम युवाओं को स्कूल स्कूल में जा करके और

0: बच्चों को सिखा रहे हैं कि अंदर की भावनाएं कौन सी होती हैं और अच्छी भावनाएं उसको जमा कैसे करते हैं, उसका विकास कैसे करते हैं और उसका अभ्यास कैसे करते हैं
1: जी।
0: तो जैसे हम उनको जैसे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स देते हैं कि याद कीजिए लास्ट टाइम आपको किसने कुछ गलत किया आपके साथ
1: जी।
0: फिर आपकी प्रक्रिया क्या थी,
1: क्या थी?
0: फिर आप अगर आप उसको क्षमा करना चाहें तो कैसे क्षमा करेंगे
1: जी।
0: और ऐसे 10 ऐसी घटनाएं या 5 घटनाएं अपने जीवन में याद कीजिए जहां आपको आपको किसी ने माफ़ नहीं किया हो, आपकी क्या फीलिंग थी। अगर आप किसी को माफ़ न करें तो उसके दिल के अंदर क्या पहुंचता होगा, और अगर आप उसको माफ़ करें तो उसको कैसे आप ये ना मुक्त कर सकते हैं। तो इस ऐसे उनको विचार दिलाने से उनके अंदर जो क्षमा भाव के होता है इट्स नॉट बिकमिंग मीनिंगफुल, उसका अर्थ का उनको पता पड़ जाता है, समझ में आने लगता है कौन सी शक्ति है और इसका प्रभाव मेरी क्षमा उस पर क्या असर पड़ेगा। फिर जब उसकी वैल्यू को पहचान लेते तो फिर उनको प्रैक्टिस करना सिखाते हैं।
1: चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे, आप मेडिटेशन और योग से 30 वर्षों से जुड़ी है और अभी शिक्षा मंत्रालय के साथ में जुड़कर जो है मेडिटेशन इन स्कूल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं, तो कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि क्षमा की भावना की अगर बात करें तो क्षमा के साथ साथ गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो किस तरह से हम अपने मन को स्थिर रख पाएंगे? कोई ऐसी टेक्निक है, मेडिटेशन टेक्निक कहे या योग की ऐसी टेक्निक कहे जो सवेरे उठकर कोई व्यक्ति कर सकता है ताकि अपने दिन में वो फोकस रहे और अलर्ट रहे कि क्या कर रहा है या उसके विचार किस दिशा में जा रहे हैं और कहाँ पर उसे अपने आप पर नियंत्रण रखना है? तो कोई ऐसे टेक्निक्स है जो एक दो आप हमारे श्रोता और दर्शकों से बांटना चाहेंगे?
0: ज़रूर, खुशी के साथ। हमारे जीवन में अलग घटनाएं घटती रहती हैं, ज़्यादातर नेगेटिव घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं, नेगेटिव व्यक्तियों के साथ काम करना पड़ता है, नेगेटिव परिस्थिति में तो नेगेटिविटी का फोर्स बढ़ता जा रहा है और अगर हम उसको अपने अंदर जमा करते जाएं, अंदर नेगेटिविटी माना अंदर वीकनेस, कमज़ोरियाँ, और जैसे हमने कहा कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा न दे सकता है, ना ले सकता है, ना एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसलिए अपने अंदर जो है जो सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव शक्ति, उसको जमा करना है। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत इजी होता है जिसमें हम अपने को कुछ पल के लिए, कुछ पल माना 1-2-3 मिनट के लिए रोज थोड़ा निकाल करके अपने मन को शांत करें, शुरू करें अपने तन को शांत करें, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में चलता है उसका तन पर असर पड़ता है। ऐसे नहीं कि मन चंचल है, हमारे कर्म इंद्रियां भी बहुत अशांत हैं, होती हैं, तो उनको शांत करना, जस्ट साइलेंट सिटिंग, थोड़ा म्यूजिक डाल दें, कुछ भी हो, कुछ भी आधार ले लें, शरीर और अपने कर्म इंद्रियों को शांत करना सिखाएं, उसका प्रैक्टिस अभ्यास करें। क्योंकि कुछ भी चलता है ना तो हमारा रिएक्शन, शरीर का भी रिएक्शन होता है, इमोशनल रिएक्शन, मन का रिएक्शन, फिर रिएक्ट करने लगते हैं बिना सोचे विचारे, फिर उससे समस्या और बढ़ जाती हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति हो अपने को पहले शांत रखें
1: जी,
0: शांत करना सिखाएं अपने को, तन से भी, मन से भी और दिल को भी साफ, मतलब कुछ भी नेगेटिव हो डिटेक्ट करके, अगर मेरे मन के अंदर कुछ इल फीलिंग है उसके प्रति, उसको कैसे मैं निकालूं, शुद्ध फीलिंग लाऊं, ये शांति का जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज़रूरी है
1: जी।
0: ऐसे नहीं कुछ परिस्थिति आ गई तब मैं अपने को शांत करने की कोशिश करूं, थोड़ा ब्रीदिंग करूं, थोड़ा मंत्र का जाप करूं या वहां से हट करके कहीं बैठ जाऊं, वो तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसलिए ये पहले से ही रोज का अभ्यास बना लेना
1: जी, मतलब कि ये आपके जीवन शैली का एक हिस्सा होना चाहिए
0: ताकि वो अभ्यास समय पर आपको काम में
1: काम आए।
0: जैसे आपने कुछ पूंजी जमा कर दिया, शक्तियां जमा कर दी है जो समय पर आप उसका प्रयोग कर सकें। ऐसे नहीं कि वो परिस्थिति आ गई, क्रोध आ गया, अब क्या करूं उसका, वो पहले से ही अपने को जैसे रेडी कर लेना है। रोज थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस, सिंपल साइलेंट सिटिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और खास कर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग, और जब खुद आप अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस पर जैसे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मेडिटेशन में ये भी सिखाते हैं कि परमात्मा के साथ अपना मन जोड़ दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 1-2 सेकंड के लिए भी उनसे वो शक्ति प्राप्त कीजिए जिससे आपकी जो जमा हुई शक्ति

0: उसमें और ज़्यादा शक्ति बढ़ गई, उसके आधार से आप हल ढूंढ सकते हैं, क्षमा करने की जो क्षमता है वो आप में आ जाएगी। सो टेक सपोर्ट, आप अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों का सपोर्ट लें, परमात्मा का सपोर्ट लें, उसके आधार से आपकी शक्ति बढ़ेगी, जमा होगी, फिर आप सहज ही क्षमा कर पाएंगे या दूसरों को से क्षमा मांग पाएंगे।
1: जी चलिए, अब हम आते हैं कपल्स पर। आजकल जो है पति पत्नी के बीच भी काफ़ी मनमुटाव हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना बंद हो जाता है कि वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा या मैं क्यों माफ़ करूं, है ना। तो किस तरह से हम जो है परिवार में इस तरह की भावनाओं को आने से रोक सकते हैं, और किस तरह से जो है जैसे कि एक श्रोता ने हमें कहा ना कि अगर घर में जो है बड़े नहीं करेंगे तब ना बच्चे करेंगे, तो इस पर आप किस तरह से अपने विचार दे सकती है कि किस तरह से वो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं ताकि उसका सीधा प्रभाव उनके बच्चों पर पड़े।
0: कपल लाइफ आजकल बहुत डिमांडिंग लाइफ है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ और घर भी देखना, बच्चों को भी संभालना, और आजकल तो सभी सबको काम करना पड़ता है, बहुत थोड़ा समय मिलता है परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कपल लाइफ के लिए, लेकिन इससे भी ज़रूरी बहुत कम समय मिलता है स्व के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पूरे जीवन जितने भी एरियाज हैं उन सब का मूल आधार है माय पर्सनल टाइम, मेरे लिए, मैं अपने लिए कितना समय निकाल रहा हूँ, अपनी मन की शांति के लिए, अपने इमोशंस को मतलब ठीक रखने के लिए, अपने अंदर की जो संतुष्टि है, अपने अंदर की जो खुशी है, उसकी मैं पालना कैसे कर रही हूँ, कितना अपना समय दे रही हूँ। अगर इधर मैं इन्वेस्ट ना करूँ तो क्या है मेरे पास जो मैं अपने बच्चों को दूँ, जो कपल लाइफ में इन्वेस्ट करूँ या जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में। अगर हमारे अंदर खालीपन है तो बाकी सब जीवन के दूसरे पहले वो दिखाई पड़ेगा, और खाली बर्तन जो है ना जल्दी हिलता है,
1: वो ज़्यादा बचता है,
0: बचता है, हिलता है, चिल्लाता है। इसलिए अपने के लिए समय निकालना और अपने को भरना, जो भी अच्छी बात है अपने में, अपने को भरपूर
1: अच्छी
0: करना
1: भावनाओं से, अच्छे विचारों से,
0: और थोड़े समय में लेकिन क्वालिटी टाइम में, अच्छे विचारों से, अच्छी बातों से, अच्छे गोल से, अच्छे अपने समय को अच्छी बातों में, समाज की सेवा में, ये सब हमारे लिए पूंजी है। अगर हम थोड़ा समय के लिए डिटैच हो करके, चाहे कपल लाइफ, पेरेंट लाइफ, कुछ भी लाइफ हो, थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल के अपने को फिर से रिकंस्ट्रक्ट, अपने जीवन को बनाएं, तो जितनी भी हमको शक्तियाँ चाहिए, क्षमा करने की शक्ति, कोई भी मूल्य चाहिए जीवन में, कोई भी गुण चाहिए, कोई भी शक्तियाँ चाहिए, वो हमारे अंदर अपने आप विकसित होता है, फिर हमारा जीवन सहज हो जाता है। ऐसी नहीं समस्याएँ नहीं आएंगी, वो आएंगी, लेकिन कितना भी बढ़ करके आए, हम अपने अंदर की जो शक्ति है वो बढ़ा रहे हैं,
1: यानी कि उस समस्या का जो है हल हम आसानी से ढूंढ पाएंगे और शांत मन से ढूंढ पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे तो जीवन में काफ़ी लोगों से हम मिलते हैं, हमारे माता पिता से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, गुरुजनों से भी सीखते हैं, जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे एक वक्त हमें भी जानने का मौका मिला था कि दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से कहें कि पता नहीं कि किस जन्म में, किस रूप में, कहाँ पर मैंने किसका बुरा किया है, किसका नुकसान किया है, तो उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और चाहती हूँ कि वो सब मुझे माफ़ कर दे, और अगर मैंने किसी को कभी माफ़ नहीं किया है तो मैं भी उनको। तो क्या ये बातें अपने आप को इस तरह से मैनिफेस्टेशन के ज़रिए, इन अच्छे विचारों के ज़रिए जब हम पढ़ते हैं तो इसका हमारे जीवन में कहते हैं कि बहुत गहरा प्रभाव होता है,
0: बहुत गहरा।
1: तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: इसी को ही तो मेडिटेशन कहा जाता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: जब मैं खुद के साथ बैठूं और परमात्मा को अपने जीवन में उतारूं, और जो भी बातें मैं अपने आप हल नहीं ढूंढ पा रही हूं, क्षमा करने की या कुछ भी और बात हो, तो अपने अंदर वो शक्ति ऑलरेडी है, हमारी स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी है, वो उसको जागृत करें। और अगर मैं इतनी मेरे में क्षमता नहीं कि मैं इस व्यक्ति का सामना करूं और डायरेक्ट उसको उससे क्षमा मांगूं, या उसमें उसमें वो साहस नहीं है मेरे सामने आने की
1: जी,
0: तो हमारा जो पर्सनल टाइम है
1: जी,
0: मेडिटेशन या रिफ्लेक्शन टाइम कहें, कुछ भी नाम दें
1: जी,
0: उसमें जैसे हम परमात्मा से बात करते हैं, क्षमा मांगते हैं या उससे क्षमा लेते हैं, तो वैसे इसी प्रकार से मेडिटेशन में जिस व्यक्ति के साथ भी कुछ चल रहा है उसको अपने मन

0: जी
1: कनेक्ट
0: और
1: हो सकते हैं,
0: कनेक्ट हो सकते हैं और अपने दिल से, ऐसे नहीं ऊपर से सॉरी नहीं जैसे एक श्रोता ने अभी जी, कहा जी, लेकिन मन से
1: जी,
0: मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे क्षमा मांगूं, फेस टू फेस नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आपको साक्षी मान करके आप ये आत्मा आपकी आत्मा से मैं क्षमा मांग रही हूँ या मैं आपको क्षमा कर रही हूँ, तो इससे जो कनेक्शन है उस वो एनर्जी जाती है
1: जी,
0: और कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा और एक ना एक दिन आपको साहस आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी उस व्यक्ति को फेस करने की और उस प्रॉब्लम को हल करने की, वो अवश्य आएगा।
1: तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर रेखा जी, आज के इस कार्यक्रम से आप जुड़ी जो आधारित रहा ग्लोबल फॉरगिवनेस डे पर। क्षमा के मूल्य को आपने हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और आपको हम शुभकामनाएं देंगे कि आप युवाओं के साथ इस तरह से कार्य कर रही है और इतना अपना जो है योगदान दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए और साथ ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को भी, सभी दर्शकों को भी जो इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको अवश्य लाभ हुआ होगा। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी हमारी प्रोडक्शन टीम को, टेक्निकल टीम को, हमारे प्रोड्यूसर जिनेश को, साथ में टेक्निक पर हमें सहयोग मिला काद्या का और हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका को भी धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए कोशिश करेंगे कि हम में भी इतनी शक्ति हो, इतनी क्षमता हो कि यदि हम कोई भूल कर रहे हैं जाने अनजाने में तो क्षमा हम मांग पाए और औरों को भी क्षमा कर पाए। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं, जल्द आप लोगों से फिर भेंट होगी। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से, धन्यवाद।
0: नमस्कार, हमारी भी शुभ भावना है कि आज का दिन सभी इस पर ज़रूर विचार करें और इस मूल्य को ज़रूर अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। MBC को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, भेंट होगी, नमस्कार।

0: Well, good morning, time check, it's 10 a.m. वक्त हो गया संक्षिप्त समाचार का, स्टूडियो में सुमेरा उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। आलू के खेतीहरों को 50,000 रुपए के बजाय 85,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। कृषि उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल लामारी, प्लेन सोफी, लालोगा, रिविया द्रागों वगैरह इलाकों के 64 खेतीहरों को प्रदान बीजों से प्राप्त समस्याओं के बाद ये फैसला लिया गया। ऑस्ट्रेलिया और

0: दक्षिण अफ्रीका से इन बीजों का आयात किया गया था जो करीब 40 दिनों के बाद सड़ने लगे थे। फागे के निरीक्षण के बाद ये पता चला कि ये बीज अच्छे नहीं थे, इसलिए सरकार ने सभी संबद्ध खेतिहरों को मुआवजा देने का फैसला लिया। उन 17 खेतिहरों को भी जिन्होंने 21 दिनों की अवधि के बाद खेती करनी शुरू की थी। आपको बता दें कुल 161 बीघा जमीनों के लिए 230 टन बीज बेचे गए थे और एक टन की लागत 20,000 रुपये थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अध्यक्षता में इकोनॉमी कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक के एक दिन पहले वित्तीय क्षेत्र अपनी उम्मीद जाहिर कर रहा है। फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक लगाई जाएगी। मॉरिशस फाइनेंस की अध्यक्षा रुबीना तोजू के मुताबिक सबसे पहले अब तक के सफर को सराहना चाहिए, खासतौर पर एक नियमित ढांचे के आधुनिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन, भारत और अफ्रीका के लिए मॉरिशस का बतौर पुल की हैसियत रखना वगैरह। निवेशक इन सभी पहलुओं को सकारात्मक नजरिए और जायजे से देखते हैं। एसएमई चेंबर और छोटे व मध्यम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को एक खत भेजेंगे। एसएमई चेंबर के अध्यक्ष अजय विदेशी के मुताबिक एसएमईज की कई सिफारिशों को बजट 2026-2027 में शामिल नहीं किया गया, जैसे कोविड-19 के दौरान डीबीएम से लिए गए कर्जों के जैसे छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्तीय समर्थन देने के लिए एक मेकानिज्म का प्रस्ताव भी रखा गया था ताकि वे कर्ज ले सकें। वो हल ढूंढने की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 59 मुल्कों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते चलाई गई एक वैश्विक क्रैकडाउन कार्रवाई में 1,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के लिए इंटरपोल, ऑपरेशन ग्लोबल चेन वगैरह का सहयोग मिला। कुल 2,070 लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। और फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सफर कल रात खत्म हुआ। स्पेन ने एक गोल करके पुर्तगाल को खेल से बाहर किया। बेल्जियम और अमेरिका का मैच आज सुबह पूरा हुआ। बेल्जियम ने 4-1 से अमेरिका को जबरदस्त शिकस्त दी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट जुब्रॉय में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती उमाबाई पांड्या, श्रीमती उमाबाई पांड्या पैदाइशी नाम भेकौ जो मीरा और चाची पांड्या के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे इनके बेटे अनिल पांड्या के घर फ्रांसिस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट जुब्रॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जुब्रॉय की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: मंगलवार 7 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:05 होने को है। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक यह कार्यक्रम चलने वाला है और ईश्वर की कृपा आपके जीवन पर सदा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। ईश्वर जो है सदा आपका कल्याण करे, ईश्वर जो है सदैव हमारा मार्गदर्शन करे और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर सदैव हम चलने का प्रयास करें। तो चलिए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वेद सुधा भी आचार्य सुदेश बद्री जी से। अभी के लिए भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं।

0: ईश्वर की शरण में हर कोई जाना चाहता है, ईश्वर की कृपा को हर कोई प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर का आशीर्वाद हर कोई अपने जीवन में चाहता है। लेकिन उसके लिए अच्छे कार्यों का करना, अच्छे कर्मों को करना, अच्छे विचारों का होना, ये सभी चीज़ें बहुत ही जो है हमारे जीवन में मायने रखती है। और जब भी हम अच्छाई की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि अच्छे अनुभव हमारे जीवन में और भी आने लगते हैं। अच्छाई और सच्चाई से जिस भी कार्य को हम करने का प्रयास करते हैं उसमें सफलता तो हमें अवश्य मिलती ही है, साथ ही संतुष्टि भी मिलती है, मन की शांति भी मिलती है। चलिए अभी के लिए आज मंगलवार है तो भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए आचार्य सुदेश बद्री जी की प्रस्तुति में हम सुनेंगे कार्यक्रम वेद सुधा।
1: वेदों पर आधारित कार्यक्रम आइए सुनिए वेद सुधा।
2: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम हम वेद पाठ एवं उसका भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक भजन का आनंद लेंगे और अंत में एक वैदिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं वेद पाठ से। ओम त्रिपादो द्वैत पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साशनन्नशने अभि। वह अमृत स्वरूप त्रिपात परमेश्वर इस नश्वर जगत से ऊपर विद्यमान है। इसका एक पाद भाग ही पुनः पुनः सृष्टि उत्पत्ति काल में चेतन अचेतन चर अचर जगत के प्रति सर्वत्र व्यापक हुआ उसको बार बार उत्पन्न करता है। ओम विराड जायत विराजो अधिपुरुष स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमथो पुरः। मनुष्यों को चाहिए कि प्रभु की बनाई हुई इस कर्मानुसार उपलब्ध हुई इन देह रूप पुरियों में निवास करते हुए अपने उस अधिष्ठाता परम पुरुष परमेश्वर को जानने का यत्न करें। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् पशुंस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये। वह प्रभु सबके सुख के लिए संसार में अन्न दुग्ध घृत आदि पदार्थ उत्पन्न करता है और वही सब प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंगों को अपने अपने कर्मानुसार जन्म देकर कर्मानुसार ही भोग प्रदान करता है। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। उस प्रभु ने इन चारों वेदों का ज्ञान मानव मात्र के सुख और कल्याण के लिए दिया है, इसलिए

लिए सब मनुष्यों को उचित है कि इन वेदों का नित्य स्वाध्याय कर उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान रहकर अपने सर्वविद्ध व्यवहार किया करें, ताकि उनका लोक परलोक सुधर सके। ओम शांति शांति।

अयन्त इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। प्रिय श्रोतागण, वैदिक साहित्य संपूर्ण मानवता के लिए ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता तथा आध्यात्मिक उन्नति का अनंत स्रोत है। वेदों में वर्णित प्रत्येक मंत्र केवल किसी धार्मिक अनुष्ठान का अंग नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के व्यक्तित्व, समाज, राष्ट्र तथा संपूर्ण विश्व के कल्याण की प्रेरणा देता है। वेदों की यही विशेषता है कि उन्हें विश्व के अन्य प्राचीन ग्रंथों से विशिष्ट बनाती है। श्रोताओं, यज्ञ वैदिक संस्कृति का केंद्र बिंदु है और यज्ञ के प्रत्येक मंत्र में जीवन को उच्च, पवित्र और

उद्देश्यपूर्ण बनाने का संदेश निहित है। पठित मंत्र ओम अयंत इद्म आत्मा, यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र केवल अग्नि में समिधा अर्पित करने का विधान नहीं करता, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन को यज्ञमय बनाने का आह्वान करता है। इस मंत्र में आत्मसमर्पण, ज्ञान, चरित्र, संतान, समृद्धि, ब्रह्म वर्चस तथा त्याग, इन सभी का अद्भुत समन्वय मिलता है। श्रोताओ, यज्ञ शब्द संस्कृत धातु यज्ञ से बना है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान, अर्थात ईश्वर की उपासना, श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान, समाज में सहयोग तथा परोपकार की भावना ही यज्ञ का वास्तविक स्वरूप है। महर्षि दयानंद ने भी स्पष्ट किया कि यज्ञ केवल अग्निहोत्र नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए किया गया प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है। जब मनुष्य अपना समय, श्रम, ज्ञान, धन और सामर्थ्य समाज की भलाई के लिए समर्पित करता है, तब वह यज्ञ का ही पालन करता है। प्रस्तुत मंत्र इसी जीवन दर्शन को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है। श्रोताओ, मंत्र का प्रारंभ अयंते इद्म आत्मा से होता है। इद्म का सामान्य अर्थ समिधा या यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है, किंतु यहाँ ऋषि अत्यंत सूक्ष्म संकेत देते हैं कि वास्तविक समिधा केवल लकड़ी नहीं, बल्कि मनुष्य का अपना जीवन है। जिस प्रकार समिधा स्वयं जलकर अग्नि को प्रज्वलित रखती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्वार्थ, आलस्य, अहंकार, लोभ तथा अज्ञान का त्याग करके समाज और धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं को लोक कल्याण के लिए अर्पित नहीं करता, तब तक उसका जीवन अपने उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यही इस मंत्र का प्रथम और अत्यंत गंभीर संदेश है। श्रोताओं, यहां आत्मा शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य, चेतन, अविनाशी और कर्म करने वाला तत्व है। शरीर परिवर्तनशील है, किंतु आत्मा शाश्वत है। इसलिए इस मंत्र में साधक यह संकल्प करता है कि मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी वाणी, मेरा ज्ञान और मेरी शक्ति सब ईश्वर और समाज की सेवा के लिए समर्पित हैं। यही सच्चा यज्ञ है। यही कारण है कि वैदिक संस्कृति त्याग को पलायन नहीं, बल्कि सर्वोच्च सक्रियता मानती है। श्रोतागण, इसके बाद मंत्र में जात वेदस शब्द आता है। वैदिक साहित्य में अग्नि का यह अत्यंत प्रसिद्ध नाम है। जात अर्थात उत्पन्न हुए समस्त पदार्थ तथा वेद अर्थात जानने वाला। जिस प्रकार जात वेदस का अर्थ हुआ वह जो संपूर्ण सृष्टि के समस्त पदार्थों के गुणों को जानता और प्रकट करता है। अग्नि में डाला गया प्रत्येक पदार्थ अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देता है। इसी कारण अग्नि को ज्ञान, विवेक और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। महर्षि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में स्पष्ट किया है कि अग्नि शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। परमात्मा, विद्वान, भौतिक अग्नि, ज्ञान तथा प्रकाश। इस मंत्र में अग्नि का अर्थ केवल लौ नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के भीतर स्थित ज्ञान, उत्साह और पुरुषार्थ को जागृत करती है। श्रोताओ, जब मंत्र में कहा जाता है तेने ध्यस्व, तब इसका बाह्य अर्थ है हे अग्ने, इस समिधा से और अधिक प्रज्वलित हो, किंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ कहीं अधिक व्यापक है।

इसका आशय है कि हे दिव्य ज्ञान, हमारे समर्पण से तुम हमारे जीवन में और अधिक प्रकाशित हो जाओ, हमारे भीतर सत्य का प्रकाश बढ़े, विवेक जागृत हो, अज्ञान का नाश हो तथा जीवन का प्रत्येक क्षेत्र धर्म के प्रकाश से आलोकित हो जाए। यही कारण है कि वेद बार बार ज्ञान को अमृत और अज्ञान को मृत्यु के समान बताते हैं। श्रोताओं, ज्ञान का प्रकाश ही मनुष्य के जीवन को दिशा प्रदान करता है। जिस प्रकार अंधकार में मनुष्य सही मार्ग नहीं पहचान पाता, उसी प्रकार अज्ञान से आच्छादित व्यक्ति सत्य और असत्य, उचित और अनुचित तथा धर्म और अधर्म का विवेक नहीं कर पाता। अतः जब साधक तेने ध्यस्व कहता है, तब वह केवल यज्ञाग्नि की लौ बढ़ाने की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि अपने अंतःकरण में स्थित ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करने की प्रार्थना करता है। यही ज्ञान मनुष्य को आत्मविश्वास, साहस, विवेक और धर्मनिष्ठा प्रदान करता है। वेदों में अनेक स्थानों पर प्रकाश का प्रतीक ज्ञान है और अंधकार का प्रतीक अज्ञान है। इसलिए यह मंत्र मनुष्य को जीवन भर स्वाध्याय, चिंतन और सत्संग के माध्यम से अपने ज्ञान को निरंतर विकसित करते रहने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, इसके पश्चात मंत्र में वर्धस्व तथा वर्धय चास्मान का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्धि प्रकृति का नियम है, जो बढ़ना बंद कर देता है उसका पतन आरंभ हो जाता है। वैदिक संस्कृति में वृद्धि का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, बौद्धिक प्रखरता, नैतिक चरित्र तथा आध्यात्मिक जागृति का समन्वय विकास है। इस मंत्र में अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह स्वयं भी प्रज्वलित रहे और हमें भी निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करें। मनुष्य का जीवन स्थिर नहीं रह सकता, या तो वह ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा। इसलिए वैदिक ऋषि निरंतर उन्नति की प्रेरणा देते हैं। श्रोताओं, मंत्र में प्रयुक्त प्रजया शब्द केवल संतान प्राप्ति की इच्छा का सूचक नहीं है। वैदिक दृष्टि में प्रजा का अर्थ है संस्कारवान, विद्वान, सत्प्रिय और कर्मनिष्ठ भावी पीढ़ी। जिस परिवार में सत्य, यज्ञ, स्वाध्याय, सेवा और सदाचार का वातावरण होता है, वहां उत्पन्न होने वाली संतान समाज की धरोहर बनती है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। इन संस्कारों का उद्देश्य केवल धार्मिक परंपरा का पालन नहीं, बल्कि श्रेष्ठ मानव का निर्माण है। यह मंत्र प्रत्येक माता पिता को स्मरण कराता है कि वे अपनी संतान को केवल भौतिक सुविधाएं न दें, बल्कि उसे सत्य, अनुशासन, आत्मसंयम और राष्ट्र प्रेम के संस्कार भी प्रदान करें। श्रोताओं, इस मंत्र की भविष्य में उपयोगिता अत्यंत व्यापक है। यदि विद्यालयों में इसके आदर्शों को शिक्षा का अंग बना जाए, यदि परिवारों में इसकी भावना के अनुसार संस्कार दिए जाए, यदि सामाजिक संस्थाएं सेवा और समर्पण के आधार पर कार्य करें तथा यदि प्रत्येक व्यक्ति इदं न मम की भावना को अपने जीवन का सिद्धांत बना ले, तो एक ऐसे समाज का निर्माण संभव है जहां ज्ञान, नैतिकता, करुणा और सहयोग का वातावरण स्थापित हो। यही वैदिक संस्कृति का स्वप्न है और यही इस मंत्र का शाश्वत संदेश है। अंततः यह कहा जा सकता है कि ओम अयंत इद्म आत्मा

0: केवल एक यज्ञ मंत्र नहीं बल्कि संपूर्ण वैदिक जीवन दर्शन का घोष है। यह मनुष्य को आत्मसमर्पण, ज्ञान, पुरुषार्थ, श्रेष्ठ संतान, धर्म सम्मत समृद्धि, ब्रह्म वर्चस, निष्काम कर्म और ईश्वर अर्पण की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति इस मंत्र के वास्तविक अर्थ को समझकर अपने जीवन में उतार लेता है, उसका प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है, प्रत्येक विचार उपासना बन जाता है और उसका संपूर्ण जीवन लोक मंगल की साधना में परिवर्तित हो जाता है। यही इस मंत्र की अमर महिमा है, यही इसकी आध्यात्मिक गरिमा है और यही वर्तमान तथा भविष्य की मानव सभ्यता के लिए इसका अमूल्य संदेश है। आदरणीय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। हमें विश्वास है कि इस वेद मंत्र की व्याख्या ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की होगी। इस कार्यक्रम को सजाने हेतु श्रीमती अंजू जी का विशेष धन्यवाद। आप सभी का स्नेह और श्रवण हमारे लिए अमूल्य है। पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा, आचार्य बद्री जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं। और आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है। हनुमान जी का चलिए स्मरण हम करते हैं इस अगले भक्ति गीत द्वारा।

सीता जिनके वन में राम जी बसते हैं उन्हें हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी जो है भगवान श्री राम के परम भक्त है, और जो हमें भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, जो हमें जो है श्रद्धा का पाठ पढ़ाते हैं, और निष्ठापूर्वक किस तरह से अपने इष्ट के प्रति हमारी समर्पण की भावना होती है, ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी हम करना चाहे अगर विश्वास नहीं हो, समर्पण नहीं हो, तो फिर कुछ ना कुछ जीवन में छूट ही जाता है। तो पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जिस भी कार्य को आप करते हैं उसमें सफलता हमें अवश्य मिलती है। बस विश्वास होना चाहिए और कदम हमारे कभी नहीं डगमगाने चाहिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आज जीवन में सुख की अनुभूति हम कर रहे हैं तो कल को शायद दुख भी हमें झेलना पड़े, इसलिए हमें सभी जो है परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए और अपने आप को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग से कभी भी नहीं डगमगाए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिन के 10:50 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। सीईबी इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। सीईबी इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। सुरीनाम के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है। सुरीनाम के खासकर मौसलमा गोबिन सुरीनाम, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल बुधवार 8 जुलाई को सुबह के 9 से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही कौशलोत शमेग्रेनिये रिवेदे गाले, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर गुरुवार 9 जुलाई को सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही यूनियन पार्क के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। यूनियन पार्क के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक मौसलमा SIT यूनियन पार्क, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी कल बुधवार 8 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से सपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही हाईलैंड्स के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। हाईलैंड्स के खासकर बेल्टेयर रोड और आसपास के इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक खासकर शमे सिते साइकॉन्त नादेस रोड फायल रोड बाउंड्री रोड, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि

0: यहाँ पर आज मंगलवार 7 जुलाई को, यहाँ पर आज मंगलवार 7 जुलाई को दिन के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ CEB की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओ, भक्ति धारा इस कार्यक्रम के लगभग हम अंत तक आ गए हैं। यही हम प्रार्थना करेंगे कि मंगलवार का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो। ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, हनुमान जी की इस आरती के साथ, हनुमान जी की कृपा आप सब पर रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। 11 बजे आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। तो अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: सुमेर आगे स्टूडियो में से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। आज राज्यसभा में विपक्ष नेता का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन। प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में 1.4 बिलियन रुपए के एक्सपेंडिचर की जानकारियों पर आधारित रहेगा। जुले जोंगो सभी आयातकों और ऑपरेटरों के नाम चाहते हैं और उन्हें दी गई रकम के बारे में भी मालूमात चाहते हैं। इसके अलावा विपक्ष नेता उन सभी मीठी पैदावारों की फहरिस्त को टेबल करने की मांग करेंगे जिन पर एक्साइज ड्यूटी पिछले 20 जून 2026 से लागू हैं। गिबियाडी जोंगी सुया के सांसद रोशन जमन प्रधानमंत्री से ये पूछने वाले हैं कि सन 2024 से लेकर आज तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कितनी जांच कार्रवाइयां चलाई हैं और कितनी पूरी हो गई हैं तथा कितनों को सलाह के लिए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया और उनका क्या हुआ। छात्रों के लिए 2 नए अंडर ग्रेजुएट वजीफे यानी छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। हालिया राष्ट्रीय बजट में इसका ऐलान किया गया था। इसके अलावा ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत की जाएगी ताकि छात्र प्रैक्टिस कर सकें। कैम्ब्रिज ने शिक्षा

0: शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा कि ग्रेड 10 में एससी टेक्निकल प्रोग्राम शुरू किया जाए, जैसे कृषि और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में। विदेश में चीन में दक्षिणी हिस्से में मेसक तूफान से एक जलाशय की दीवार टूट गई है और कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। 62,000 लोगों को विस्थापित किया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: क्लेफोन नंबर 3 फिनिक्स में 80 साल के 80 years old जनाब मुस्तफ़ा गुलाम हुसैन, जो चिबाई मेकानिसियन UBS के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज साढ़े बारह बजे इनके घर क्लेफोन नंबर 3 फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए मस्जिद एल नूर फिनिक्स और फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट जुब्रॉय में 83 साल की 83 years old श्रीमती उमाबाई पांड्या पैदाइशी नाम बेकौ, जो मीरा और चाची पांड्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे के बेटे अनिल पांड्या के घर प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट जुब्रॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जुब्रॉय की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: रेडियो मॉरिशस
1: 819 kHz पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।
4: औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलम से अल्लाह की तारीफ लिखने बैठी हूँ। सियाही ख़त्म होती गई, तारीफ़ उसकी बढ़ती गई। सब तरह की तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है। मीडियम वेव 819 kHz पर यह रेडियो मॉरिशस है। शामिल मोहतरम परवीज़ा का सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है अब तमाम सामईन बफ़ज़ल खुदावंदी और रसूल खुदा ताजदार मदीना हबीब किब्रिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से खैर आफियत से हैं। मजीद सामीन, उर्दू नशरियात शम्मे फरोजा के साथ हाजिर खिदमत हुई हूँ। आप सभी लोगों का इस मजलिस में दिल खैर मकदम है। तो आइए मजीद सामीन, आज की इस महफिल का आगाज कुरान पाक की चंद आयतों से करें। बादब और बगौर समात करके अपने दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब वाकई होने वाली वाकई हो जाएगी उसके वाकई होने में कुछ झूठ नहीं। किसी को पस्त करने किसी को बुलंद करने वाली जब जमीन भूचाल से लरजने लगे और पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाएं, फिर गुबार होकर उड़ने लगेंगे और तुम लोग तीन किस्म के हो जाओगे।

और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, वही अल्लाह के मुकर्रब हैं। नेमत की बहिश्तों में वो बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और थोड़े से बाद वालों में से।

लाल और याकूत वगैरह से जड़ाव तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे उनके आसपास फिरेंगे, यानी आप खोरे और आफताबे और साफ शराब के जाम ले लेकर, उससे न तो सर में दर्द होगा और न उनकी अकलें जायल होंगी, और मेवे जिस तरह के उनको पसंद हों और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे।

और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जैसे हिफाजत से रखे हुए आबदार मोती, ये उनके आमाल का बदला है जो वो करते थे। वहां न वो बेहूदा बात सुनेंगे और न गाली गलौज। हां उनका कलाम सलाम सलाम होगा।

और दाहने हाथ वाले क्या कहने हैं दाहने हाथ वालों के, वो बेकांटों की बेरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते पानी के चश्मों और बहुत से मेवों के बाघों में होंगे, जो न कभी खत्म हो और न उन पर कोई रोक टोक होगी, और ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर आराम करेंगे। हमने ही इन हूरों को पैदा किया तो इनको कुंवारी बनाया, और शौहरों की प्यारी और हम उम्र, यानी दाहने हाथ वालों के लिए। ये बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से।

और बाएं हाथ वाले, अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में होंगे, यानी दोजख की लपट और खौलते हुए पानी में और सिया धुएं के साए में, जो न ठंडा होगा और न खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐश में पड़े हुए थे और बड़े गुनाह यानी कुफ्र पर अड़े हुए थे।

और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां हो गए तो क्या हमें फिर उठना होगा और क्या हमारे अगले बाप दादा को भी। कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोजे मुकर्रर के वक्त पर जमा किए जाएंगे।

फिर तुम्हें झुटलाने वाले गुमराह हो, थूहर के दरख्त से खाओगे, फिर उसी से पेट भरोगे, फिर उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, फिर पियोगे भी इस तरह जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। इंसाफ के दिन ये उनकी ज़ियाफ़त होगी।

हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस नुतफे को तुम डालते हो, क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम इस बात से आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं?

भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें, सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए, बल्कि हम बेनसीब रह गए।

भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं? अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते?

0: भला देखो तो, जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं? हमने इसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है।
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ।
0: तो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करो।
1: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ

सो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। क्या तुम इस कलाम के मानने में देर करते हो और अपना वजीफा ये बनाते हो कि इसे झुटलाते रहते हो।

फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते।

फिर अगर वो अल्लाह के मुकर्रबों में से हुआ तो उसके लिए आराम और रोजी और नेमत के बाग होंगे, और अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो कहा जाएगा कि तुझ पर दाहने हाथ वालों की तरफ से सलाम। और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हुआ तो उसके लिए खौलते पानी की ज़ियाफ़त होगी।

0: ये बात वाकई यकीनी है। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करते रहो।
1: सदकल्लाहुल अजीम। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन कुरान मजीद वो आखिरी और कामिल किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। ये किताब क़यामत तक के लिए इंसानियत की रहनुमाई का ज़रिया है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और हिदायत है परहेजगारों के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरान का माहिर कारी इज़्ज़त वाले नेक फ़रिश्तों के साथ होगा। क़ुरान एक ऐसी रोशनी है जो हमें दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी की ज़मन देती है। जो शख्स क़ुरान के साथ अपना ताल्लुक मज़बूत रखेगा वो गुमराही से महफूज रहेगा और क़यामत के दिन क़ुरान उसका सिफारिशी बनेगा। अल्लाह हम सब को क़ुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। तेरा ही जिक्र है लबों पे ऐ खुदा हमारे, तेरा ही नूर है फैला सब जहां के प्यारे।

0: रहमतों का है ख़जाना तेरा दरबार आज़म, बख्श दे हमको भी या रब, है दुआ ये बार बार, बंदा तुझको भूल जाए फिर भी तू हर दम साथ है, तेरा दर है सबसे ऊंचा, तू ही सबका बादशाह है, मैं फ़कत खाक हूँ मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है निस्बत मेरी, ये एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। वज़ीसामीन, ज़िंदगी खुशियाँ और आजमाइशों का मजमुआ है, कभी कामयाबियाँ हमारे कदम चूमती हैं तो कभी मुश्किलात हमें घेर लेती हैं, ऐसे लम्हात में एक मोमिन का सबसे बड़ा सहारा सब्र है। सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहते हुए साबित कदमी इख्तियार करना, उम्मीद को ज़िंदा रखना और दिल में शिकवा की बजाय शुक्र और दुआ को जगह देता है। सामईन कराम, अब हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद जुनेद अशरफी साहब का ईमान अफरोज बयान। आइए अदब व एहतराम के साथ समाअत फरमाइए।
1: नहमदुहु नुसल्लि व नुसल्लिमु अला अशरफिल अंबियाए व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व शुहदाए उम्मतिही व खुसूसन शुहदाए करबलाए उम्मतिही अलैहिम अजमाईन अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين। عزيزان محترم, इससे पहले का प्रोग्राम जो मैंने आपके सामने पेश किया उसमें सब्र इमाम अली मकाम के हवाले से क़ुरान की रोशनी में गुफ्तगू रखी, उसी का दूसरा हिस्सा फिर आपके सामने रखने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। عزیزان محترم, صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو مل جائے تو وہ انسان کامل اور صاحب ایمان بندہ بن جاتا ہے। सब्र एक ऐसी चीज़ है जिस दौर से अम्बिया कराम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम भी गुज़रे। आप तारीख़ उठा के देखें, क़ुरान मुक़द्दस का मुताला बमुहब्बत नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत अहले बैत असहाब औलियाए कामलीन देखें और पढ़ें तो अम्बिया कराम के सब्र आपको नज़र आएंगे और उसका अजर व सिला भी आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ सिक्के के रुख को देखेंगे तो जालिमीन का जुल्म और उसका सिला भी आपको दिखाई देगा। तब हमें और आपको ये फ़ैसला करना आसान होगा कि हम ज़ालिमीन के साथ रहकर थोड़ी सी ज़िंदगी जो है गुजारें या साबरीन के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का आप सब्र देखें, हज़रत सैयदना

पढ़ते थे, और ज़ुल्म भी नबी की शरीयत और नबी के नवासों पर करते थे। तो सब्रे हुसैन को अगर आप वज़न करेंगे तो कायनात में सब्रे हुसैन के मद्दे मुकाबिल दूसरे सब्र के पल्ले वो नीचे होंगे, और सब्रे अहले बैत और सब्रे करबला ऊपर होगा।

0: सब्र दिखावे की चीज़ नहीं, वो दिल के अंदर जो दुनिया दर्द दे रही है उस दर्द को सह लेना, उस वक्त रब्बे कदीर देख रहा है कि मेरा बंदा जालिमीन के दर्द को सह रहा है, और सह लिया जब रब तबारक व ताला फिर उसको अजर देता है और जालिमीन को उनके कैफे किरदार तक पहुंचा देता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको हक गोई, हक पर कायम रहना, ये तरीक़े अहले बैत अतहार है, और मुसीबतों पर सब्र करना ये क़ुरान का भी हुक्म है, तरीक़े अहले बैत भी है, तरीक़े सहाबे रसूल भी है, तरीक़े सालेहीन भी है, और तरीक़े अहले सुन्नत वल जमात भी है। अल्लाह ताला हमें और आपको बला मुसीबतों पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, और सब्र के साथ साथ अल्लाह तबारक ताला हम सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। जुल्म का सर काट लेना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है हमने आबिद बीमार से, जुल्म से सब्र हारा नहीं है और सब्र से जुल्म जीता नहीं है। जब आए मकाबिल यजीदी तुम्हारे, मिसाले शहे करबला देते रहना। सामाइन हजरात, अल्लाह की बारगाह में आप भी दुआ करें, हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला मुल्क मॉरिशस में अमन व सुकून, रहमतें बरकतें अल्लाह ताला फरमाए, और इसी के साथ साथ आलम इस्लाम में अल्लाह हुसैनियत का बोलबाला फरमा दे, हक्कानियत का बोलबाला फरमा दे, और यजीदियत और झूठे के मुंह को काला कर दे। अल्लाह ईमान पर कायम और दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम सामईन, हज़रत मौलाना जुनेद साहब के ईमान अफरोज़ बयान ने यकीनन हमारे दिलों को सब्र, रज़ा और तवक्कुल के नूर से मुनव्वर कर दिया। ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा के साथ है, उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा दिन के 12 बजे तक। वज़ी सामईन, सब्र व चिराग हैं जो अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी कायम रखता है, और मोमिन को हर हाल में अल्लाह से जोड़े रखता है। आजमाइशें आती हैं, गुजर जाती हैं, मगर सब्र करने वालों का अजर हमेशा बाकी रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी सब्र वो है जो मुसीबत के पहले सदमे के वक्त इख्तियार किया जाए।

वक्त की रफ्तार हमें शुरू परवर महफिल के इख्तिताम तक के ले आई हैं। दुआ है कि आज सब्र के हवाले से जो बातें हमने सुनी वो हमारे दिलों में उम्मीद, इस्तिकामत और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे की शमा रोशन कर दें। याद रखें, सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहते हुए उसकी रहमत पर यकीन रखने का नाम है। आजमाइशें वक्ती होती हैं, मगर सब्र का अज्र हमेशा के लिए हैं। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियां पैदा फरमाए। हर दुख, हर परेशानी, हर बीमारी और हर आजमाइश को अपनी रहमत से दूर फरमाए। आपके घरों में मोहब्बत, सुकून, खैर व बरकत और ईमान की बहारें अता फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाएँ। जो रिस की तंगी में हैं उनके लिए अपने फजल के दरवाज़े खोल दे। और जो अपने मरहूमीन को याद कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। इन्हीं दुआओं के साथ परवीज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। और एम फ्री उर्दू नशरियात सबाल खैर में।

0: रामदास माळी। हाँ बोल। पांढरी गाड़ी है? करेक्ट। नंबर बोल। चश्म्याचा नाही गाडीचा। एमएचओ एमएचओ मला शिव्या देतो? एमएचओ 01123 करेक्ट। माल घेऊन टपकाव त्याला। नवेद
1: नवेद
2: पंचावे।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम है आपकी पसंद, ढाई बज चुके हैं, स्टूडियो की घड़ी में आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। चलिए आज है मंगलवार, मंगलवार का ये दिन आपके लिए बेहद ही मंगल हो, हमारी यही कामना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, हमारी ओर से ये प्यारा सा गीत फिल्म गोलमाल से लिया गया, ये गीत आप किशोर कुमार की आवाज़ में सुन पाएंगे। और हमारा फ़ोन नंबर आपको इशारा कर दे, हमारा फ़ोन नंबर है 4028085, हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251700005। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे।
1: कुछ नहीं ठहरता ना पंचम, कभी भी कहीं भी, ना तुम ठहरे न मैं ही रुकूंगा। मैं क्या बताऊं कि बहता दरिया जब आ रहा था तो जा रहा

जी श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पे। हमारे साथ इस समय वाकवा की सुदेवी हैं और साथ में है त्रियोले की दीदी ललिता, कुशल परिवार है, आत्माराम भाया, दीदी सुनीता, शोभा, देविना, बिंदु, संगीता, युवराज, मलिंगा के समस्त रामसरण परिवार, राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार, कुआओ परिवार, रागुबा परिवार। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत है, आपके नाम हम कर रही है।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत विश्वानी डुमैन जी के लिए, और आप वक्वा की रहने वाली हैं। ये अगला गीत जो है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं गीता गजाधर जी के नाम और समस्त परिवारों की तरफ से शुभकामनाएं। बहन अमृता, भाई कृष्ण, रोशन है, भाभी है, संध्या है, कल्याणी डुमैन, मथुरा हैं, और साथ में है रामकिशन, बिहारी परिवार, गोबर्धन परिवार। तो इन सभी परिवारों के नाम जो है, इन सभी परिवारों की तरफ से ये प्यारा सा गीत जाएगा गीता गजाधर जी के नाम। तो चलिए, उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं बिसे की पूरी टीम की तरफ से। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारा सा गीत है। और ये गीत जो है हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ। तो चलिए, गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम चला रहे हैं।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पे। और इस समय हमारे साथ माला सुमारू जी हैं, काथोबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत उनकी पसंद पे जाने वाला है इन उनके परिवारों के लिए। कुछ मॉरिशस में है, कुछ कनाडा में है। वैसे ये गीत जाएगा उनके पति सूर्यदेव जी के लिए। उनके बेटे हैं सुयश, साथ में है बहू आशा, छोटी बच्ची है आयुषी। कनाडा से वे लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए गाने की ओर बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है प्रिंस, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना हम सुन पाएंगे।

0: नहीं।
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार पर ये सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड पर केंद्रित रहा। व्यापार मंत्री माइकल स्विकन ने बताया कि इस फंड के लिए निर्धारित शुरुआती 1.4 बिलियन रुपए में से 710 मिलियन रुपए पहले ही योग्य ऑपरेटरों को दिए जा चुके हैं। 366 मिलियन रुपए की बकाया रकम पर अभी भी काम चल रहा है, जबकि 280 मिलियन रुपए बेकरीज को प्रदान किए जा चुके हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड एक निश्चित राशि वाली सब्सिडी है जो कई खाद्य उत्पादों पर लागू है। ये व्यवस्था अगस्त 2025 में शुरू की गई थी। इसके तहत योग्य ऑपरेटर मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बकाया रकम की अदायगी की मांग कर सकते हैं। इन दावों की जाँच के बाद ही संबंधित राशि जारी की जाती है। मेटा की ओर से व्हाट्सएप को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना बनी हुई है। कुछ बहुत जल्द व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन नंबर शेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बदले अब यूज़र नेम की संभावना जोड़ी जा रही है। गोपनीयता के लिए भले ही ये एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन सुरक्षा और अन्य पहलुओं को लेकर इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्व कप यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए राउंड ऑफ 16 का दौर चल रहा है। कल स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराया, जबकि आज यूएसए का सामना हुआ बेल्जियम से और बेल्जियम की टीम बाजी मार गई। स्कोर रहा बेल्जियम 4 यूएसए 1। आज रात 8 बजे अर्जेंटीना खेलेगा इजिप्ट के खिलाफ। राउंड ऑफ 16 का आखिरी मैच खेला जाएगा रात 12 बजे स्विट्जरलैंड और कोलम्बिया के बाद। इसके बाद शुरू होगी क्वार्टर फाइनल्स। विदेश में चीन के ननिंग इलाके में मेसाक नामक जोरदार तूफान के बाद एक बांध टूट गई, जिसके कारण कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। पानी की भारी प्रवाह में ये लोग बह गए, जबकि नदी के आसपास रहने वाले 62,000 लोगों को हटाया गया। बांध के पास का एक पूरा गांव तबाह हो गया। वहां हाई अलर्ट जारी किया गया है और अधिकारियों ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया जी, नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
5: तो चलिए श्रोताओं, से पहर के 3:03 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। यूनियन पार्क के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मौसलमा SIT यूनियन पार्क के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 8 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, तो आइए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। तो अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं, हमारे साथ जो है इस समय, जी हाँ, इस समय हमारे साथ यूनियन पार्क की विद्या जी जुड़ी हुई है। तो उनका ये मनपसंद गीत जाने वाला है उनके सभी परिवारों के लिए। उनकी चाची हैं कुमारी, उनकी बहन है सती, साथ बह सुरेखा, वेदना, विमला, प्रीति और बबीता। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत

तो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं श्रोताओं। चलिए हमारे साथ इस समय न्यूकोव की रहने वाली, जी हाँ हमारे साथ इस समय न्यूकोव की रहने वाले आप है किशन, साथ में है रुशना, प्रीतम है केशरी, खुशी जेसिका और गीता जी है पोंफिया की रहने वाली। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम चला रहे हैं।

0: तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। 3:15 बज रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में और आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये अगला गीत अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है फीका फ्लाक से। तो चलिए उनके नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं, फिल्म का नाम है खट्टा मीठा।
1: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ भी नहीं आता।
2: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
1: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
2: सोचने दो।
1: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
1: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
2: तुम मुझे प्यार करते हो।
1: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
1: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
2: प्यार करते हो ना?
1: पर जरीन, तुम
3: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे तुम।

तो हमारे साथ इस समय काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो चलिए कुछ फ़ोन कॉल्स भी हम लेंगे। हमारे साथ इस समय नूफेल फ्रांस के रहने वाले आप है भाई कुलेन जी हमारे साथ जुड़े हुए, तो आपका ये मनपसंद गीत जो है हम चलाने वाले हैं। और इस समय गाँव गोप की सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी रहती है हमेशा, तो उनके नाम भी अगला गीत, राधा जी है सैपिया की रहने वाली, तो उनके नाम भी अगला गीत हम चला रहे हैं। केश जी है कथोबोन की रहने वाली और उनकी दो बेटियां हैं नेहा नितिशा, उनके दामाद है एल्विन और उनके सभी बच्चों के लिए उनके पति हैं आनंद जी, तो इन सभी लोगों के नाम ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी, फिल्म बहुत ही पॉपुलर हुए और इस फिल्म के सभी गाने जो है आज भी लोग बहुत ही प्यार के साथ गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो चलिए इसे फिल्म से लिया गया गीत हम चला रहे हैं आपकी फरमाइश पे, आप है काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत इब्राहिम जो है पोर्टवीज के रहने वाले हैं, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो उनकी फरमाइश पे ये अगला गीत हम चलाएंगे।

0: श्रोताओं, आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हम प्रसारित कर रहे हैं मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद। तो अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ फिनिक्स की रहने वाली आप है रेहाना। रेहाना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो चलिए रेहाना जी की पसंद पे ये अगला गीत हम चलाने वाली है। तो श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो है हम जारी रखेंगे शाम के 4 बजे तक। तो हमारा फ़ोन नंबर है 4028085। हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251705।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

श्रोताओं, 3:35 हुए हैं, आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय हम चला रहे हैं। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं इन सभी लोगों के नाम, और काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ इस समय दिलीप जी है कुंगुमा के रहने वाले, और ये गीत जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए। संगीता है साथ में, है इंदिरा, योगेश, मनीषा, कविता, किश्नवी, दानन, इंदिरा, तो इन सभी लोगों के नाम जो है, ये बहुत ही पॉपुलर गीत है। फिल्म का नाम है हीरो, और इस फिल्म से लिया गया गीत जो है हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रही है। तो चलिए हमारे साथ काफ़ी लोग जो है, गीता जी हैं पोंफिया की रहने वाली, उनके सभी बच्चों के लिए, आदित्य, अरव, जानवी और तनिष भी है, उनकी बहन है मीरा न्यूकोव की रहने वाली, तो ये गीत इन सभी लोगों के नाम हम कर रहे हैं। तो बहुत ही पॉपुलर गीत है, और गीत की ओर हम बढ़ेंगे। और साथ में है सुरेखा जी, सुरेखा जी जो है देपिने की रहने वाली है, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो ये गीत भी उनके नाम हम करने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओं, गीत की ओर हम बढ़ेंगे, और आपकी पसंद कार्यक्रम को चला रही है शाम के 4 बजे तक।

3:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओ, चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और अगला गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं, भाई हरीश जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बुबासा के रहने वाले हैं, तो आपके मनपसंद गीत को हम शामिल करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत है, तो ये गीत जो है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए तो उन सभी लोगों के नाम जो है हम चलाने वाले हैं। तो श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है इस समय। तो एक से बढ़कर एक गीत आपके नाम हम कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप मैसेजेस पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और कुछ लोग जो है हमें फ़ोन भी कर रहे हैं। तो चलिए, आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा हमारे साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, फिल्म का नाम है क्रिश फ्री, तो इस फिल्म से लिया गया ये बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बसंती जी हैं, उनके नाम जो है अगला गीत हम चलाएंगे उनके सभी परिवारों के लिए।

कीमती समय आप सुन रहे हैं और इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो जाएगा। साथ देने के लिए शुक्रिया, फोन कॉल्स के लिए शुक्रिया। कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले तमिल भाषा में कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कलाई वाणी के साथ। हमारी तरफ से आप

0: रेडियो मॉरिशस पर भोले बिस्ने के
1: शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोताओं नमस्कार, आप सबको कैसे हैं आप? आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ, जी हाँ, और आप अभी सुन रहे हैं भोले बिस्रे गीत प्रोग्राम। और जी हाँ, यहाँ पर उषा कौर आप लोगों के साथ, और ये कार्यक्रम चलेगा 6 बजे तक। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी साथ देंगे भोले बिस्रे गीत प्रोग्राम। जी हाँ, पुराने और भोले बिस्रे गीत सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते, बल्कि वो हमारी यादों का एक अनमोल खजाना होते हैं। इन गीतों में वो सादगी, वो मिठास और वो एहसास छुपा होता है जो आज भी दिल को सुकून दे जाता है। तो चलिए आज का पहला गाना सुनते हैं, हलाकू फिल्म से लिया गया, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में।

5:10 हुए हैं श्रोताओं जी, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम और आप सुन रहे थे दिल एक मंदिर फिल्म से लिया गया ये प्यारा सा तराना लता जी की आवाज़ में। श्रोताओं, 1956 में जी हाँ एक फिल्म रिलीज हुई कारवां, उस दौर की उन फिल्मों में शामिल है जिन्होंने रोमांच, प्रेम और मनोरंजन का खूबसूरत संगम पेश किया। इस फिल्म का निर्देशन रफ़ीक रिजवी ने किया था और इसमें महिपल, शकीला, यशोधरा, कज्जो, गोपे, हेलेन और हीरालाल जैसे कलाकारों ने अपनी अदाकारी से कहानी को यादगार बना दिया। इस फिल्म का संगीत

गीत मोहिंदर जी ने दिया। और कहते हैं ना 1950 के दशक का सिनेमा अपनी सादगी, मजबूत कहानियों और भावनाओं से भरे प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। कारवां भी उसी परंपरा का एक खूबसूरत हिस्सा थी। उस दौर की फिल्मों में ना आधुनिक तकनीक का शोर था और ना ही दिखावे की भरमार, फिर भी उनमें एक ऐसा जादू था जो सीधा दिल को छू लेता था। इसी फिल्म से लिया गया ये खूबसूरत गाना सुनते हैं। और कारवां उसी सादगी की एक प्यारी मिसाल है जो हमें याद दिलाती है कि वक्त गुजर जाता है लेकिन अच्छी कला कभी पुरानी नहीं होती।

देर कहीं और चल जी। हाँ, लेकिन अभी तो जाने का समय नहीं आया है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है। 5:20 अगला गाना हम सुनेंगे, जाल फिल्म से लिया गया जी। हाँ, हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में।

हेमंत कुमार साहब अपनी गहरी आवाज़ और विनम्र व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उनके बहुत से इंटरव्यूज़ में वो ज़िंदगी, संगीत और सादगी पर बात करते थे। जैसे कि वह कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत धुन वो होती है जो दिल की खामोशी से जन्म लेती है। कहते और वो ये भी कहते हैं कि सुर तभी अमर बनते हैं जब उनमें सच्चाई और विनम्रता की सांस बसी हो। या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि शोहरत वक्त के साथ धुंधली हो सकती है, लेकिन अच्छा संगीत हमेशा रूह में गूंजता रहता है।

जहाँ श्रोताओं, 1950 का दौर हिंदी फिल्म संगीत का सुनहरा युग माना जाता है। इसी दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी ने अपनी बेमिसाल आवाज़ों से ऐसे गीत दिए हैं जो आज भी हर दिल की धड़कन बने हुए हैं। दोनों कलाकार जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मिलते थे तो उनका एक ही मकसद होता था, हर गीत को अपना सर्वश्रेष्ठ देना, ना किसी तरह की जल्दी, ना किसी तरह का दिखावा, सिर्फ सुरों के प्रति समर्पण, गीत के प्रति ईमानदारी और संगीत के प्रति बेपना मोहब्बत। उस ज़माने के संगीतकारों और गीतकारों के साथ मिलकर रफ़ी साहब और लता जी ने अनेक अमर गीत रचे। हर रिकॉर्डिंग एक सीख, एक तपस्या और एक नई उम्मीद लेकर आती थी। दोनों एक दूसरे की कला का गहरा सम्मान करते थे और इसी परस्पर आधार ने उनके युगल गीतों को और भी खास बना दिया। उनकी आवाज़ में अलग अलग रंग थे। रफ़ी साहब की आवाज़ में कोमलता के साथ शक्ति थी, जबकि लता जी की आवाज़ में पवित्रता और मधुरता का अनोखा संगम था। और यहाँ पर सुनते हैं फिल्म भाभी का ये खूबसूरत गाना रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में।

शाम के 5:42 हुए हैं। बस हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि उनको पसंद आ रहा है ये प्रोग्राम।

चलिए अगला गाना हम सुनेंगे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से लिया गया और इस फिल्म में नज़र आए थे गुरुदत्त मधुबाला ललिता पवार और जॉनी वॉकर। कहानी एक अमीर युवती अपनी विरासत पाने के लिए एक कानूनी मामले में फंस जाते हैं और यहाँ पर गुरुदत्त की हल्की फुल्की फिल्मों में ये एक बहुत ही खास स्थान रखती है। तो चलिए इसी फिल्म से लिया गया अगला गाना सुनते हैं रफ़ी साहब और गीता दत्त की आवाज़ों में।

0: 5:54 हुए हैं दोस्तों। जी हाँ, और आज के इस आखिरी गीत आप लोग सुने, और फिल्म का नाम है सोनी मनिवाल।
1: चांद छुपा और तारे डूब,
0: और यहाँ पर कलाकार आप सुन रहे हैं महेंद्र कपूर साहब, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में। और इसी गीत के साथ मैं उषा और यहाँ पर आप लोगों से विदा लेती हूँ। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल आपके पसंद प्रोग्राम में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप

0: सबका स्वागत। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। आज राष्ट्रीय सभा में पेंशन सुधार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में। पीएम क्यूती सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञ आयोग के कार्यों और सुधार प्रक्रिया के अगले चरण पर जानकारियां दी। हर भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने आज राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पंज सिटी की अवधारणा पर एक कार्यशाला आयोजित की। ड्रग्स का सेवन करने वालों को अब हर महीने में अदालत या जेल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये फैसला लिया गया ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल के तहत। कुछ लोगों को कानूनी कार्रवाई के बजाय नशा मुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रम में भेजा जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक युग का अंत। फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुष्टि कर दी है कि ये उनके कैरियर का आखिरी फीफा विश्व कप था। स्पेन ने इंजरी टाइम के आखिरी पलों में गोल कर पुर्तगाल को 1-0 से हराते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय सभा में पेंशन सुधार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में रहा। पीएम क्यूती सत्र के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने विशेषज्ञ आयोग के कार्यों और सुधार प्रक्रिया के अगले चरण पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए अभी 9 महीने का समय है। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि उनकी अध्यक्षता वाली स्टीयरिंग कमेटी के सुझावों पर विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि सुधार प्रक्रिया की दिशा को लेकर आम सहमति बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान ही आज राष्ट्रसभा में दुमेनलीपाय की स्मार्ट सिटी परियोजना का मुद्दा भी उठाया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि इस परियोजना में कई कमियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी का दर्जा वापस लेने पर विचार किया जा रहा है, जबकि इस मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच भी जारी है। प्रधानमंत्री ने इस विषय से जुड़े अन्य सवालों के भी जवाब इस सत्र के दौरान दिए। प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत सब्सिडी वाले सामान बेचने वाले व्यापारियों को अब तक 710 मिलियन रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये जानकारी आज राष्ट्रीय सभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान मंत्री माइकल स्विक्वेन ने दी। विपक्ष के नेता जोलीजोंगा ने इस योजना के तहत दी गई सब्सिडी का ब्यौरा मांगा। इस दौरान प्लास्टिक की बोतलों पर लगाए गए 2 रुपए के टैक्स का मुद्दा भी उठाया गया। पोर्टलुई के बिशप मोंसेयर जॉन मिकाएल जुहोन और फ्रेडरिक्स के अपोस्टोलिक विका मोंसेयर मिशेल मोरा ने आज दोपहर बाद ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ मुलाकात की। चर्चाएं मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए एक रिटायरमेंट केंद्र और रोड्रिग्स में एक रिट्रीट सेंटर पर आधारित रही। मोंसेयर जॉन मिकाएल जुहोन और मोंसेयर मिशेल मोरा को सुनते हैं।
1: Aujourd'hui, c'était d'abord pour présenter le nouvel évêque de Rodrigues, qui a été ordonné le 19 mars 2024. Et puis, passer un peu en revue des grandes questions, nous aussi, pas mal sur les personnes âgées. Si nous en avons dans le diocèse, tous les homes, les maisons de retraite, toutes les questions aussi de là, comment accompagner les personnes âgées.
2: Avec donc l'Église, nous avons monté un projet pour ouvrir la première maison de retraite permanente pour Rodrigues. On a pour le moment, un centre de répit, c'est-à-dire qu'on accueille les personnes âgées pour jusqu'à 2 mois, mais après, la personne doit rentrer à la maison. Il y a aussi une unité de répit qu'on prévoit de mettre en place pour les personnes autistes et les enfants et les jeunes lourdement handicapés.
0: और इससे पहले हम आपको बता रहे थे प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत सब्सिडी वाले सामान बेचने वाले व्यापारियों को अब तक 710 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया। प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के दौरान माइकल सिक्वेन ने ये जानकारी दी। इस पर ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: व्यवसाय मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार सरकार द्वारा प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं पर दी गई सब्सिडी के कारण इन उत्पादों की कीमतों में स्थिरता आई है। हर एक उत्पाद की कीमत में 10 से 55 रुपए तक

0: की कमी दर्ज की गई है। इन सब्सिडियों पर सरकार ने कुल 1.4 बिलियन रुपए खर्च किए हैं।
1: Based on the latest MO information submitted to my ministry as at 16th of June 2026, total subsidy payments already affected to eligible traders amounted to
0: एमआरएस से प्राप्त जानकारियों की हालिया रिपोर्ट के आधार पर जो मेरे मंत्रालय को सुपुर्द की गई है, 16 जून 2026 से सब्सिडी की पूरी अदायगी व्यापारियों को कर दी गई है, जो करीब 710.1 मिलियन रुपए हैं। करीब 366 मिलियन रुपए की अदायगी की प्रक्रिया चलाई जा रही है और 280 मिलियन रुपए बेकरीज को चुकाए गए हैं। मॉरिशस के लिए वार्षिक लागत 258.8 मिलियन रुपए है और रोड्रिक्स के लिए अतिरिक्त 1.4 मिलियन रुपए की जरूरत होगी, जिससे कुल वार्षिक लागत 260.2 मिलियन रुपए है। मंत्री ने बताया कि उनके मंत्रालय की कंज्यूमर अफेयर्स यूनिट सब्सिडी वाले उत्पादों पर लगातार निगरानी और निरीक्षण कर रही है। पिछले एक वर्ष में 11,000 से ज्यादा निरीक्षण किए गए, जिनके दौरान 1200 कंट्रावेंशन जारी किए गए। मंत्री माइकल सिकियन ने प्लास्टिक की बोतलों पर लगाए गए 2 रुपए के कर का भी उल्लेख किया।
1: With effect from 1st of October 2026.
2: The Honourable Minister confirmed to the House that this measure will impact more than 2,000 products consumed on a daily basis in this country.
1: These products are not controlled products. Some importers and some manufacturers can also absorb the cost. It's not a controlled product.
3: It is a tax. So what is the alternative that is being proposed now with the money that will be drawn in as revenue? How much of it will be reinvested for recycling and to finding and subsidizing better alternatives?
1: In fact, we need to educate the people so that we switched to other measures. For example, for bottled water, we can switch to water filters. It is as simple as this. And you will save money, people will save money, and also it is extremely good for the environment.
4: राज्यसभा में पेंशन सुधार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में रहा। पीएमक्यूटी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञ आयोग के कार्यों और सुधार प्रक्रिया के अगले चरण पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए अभी 9 महीने का समय है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
5: प्रधानमंत्री ने पेंशन सुधार पर गठित एक्सपर्ट्स कमीशन के सदस्यों की कार्यकुशलता का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं उठता। 8 महीनों के काम के बाद आयोग ने मई महीने में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जो बाद में 20 मई को स्टीयरिंग कमेटी के सामने पेश की गई।
6: मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर, आई मस्ट एम्फसाइज दैट मेंबर्स ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी मेड ए नंबर ऑफ कमेंट्स एंड सजेशंस व्हिच वाज टेकन ऑन बोर्ड बाय द कमीशन। देयर वाज ब्रॉड कंसेंसस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑन द डायरेक्शन of the reforms. Mr. Deputy Speaker, due to the urgency of the fiscal situation, especially the still very high level of public debt, estimated at 87.7% of GDP as of June of this year, and given that the Commission had completed its analysis and recommendations on the first pillar of the pensions system, in particular the basic retirement pension, government decided to act immediately on the policy recommended by the Commission, it's an interim report. To facilitate the implementation of this reform, we are setting up, as recommended by the Commission, a unified independent pensions regulatory authority to regulate the entire pension system and a central pensions administration bureau which will regroup all state-sponsored schemes into one place to digitalize and facilitate service to members and pensioners.
5: डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि आयोग के पास अपनी अंतिम रिपोर्ट सुपुर्द करने के लिए अभी भी 9 महीनों का समय है। कमेटी पेंशन के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव, नेशनल पेंशन और प्रोविडेंट फंड की स्थापना और फंड के संचालन को लेकर कानूनी ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव देती है।
6: मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर, आई विश टू एम्फसाइज दैट द रिफॉर्म ऑफ पिलर 2 एंड पिलर 3 ऑफ द पेंशन सिस्टम, दैट इज आई मेंशनड अर्लियर, दैट इज द कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स and the voluntary private schemes are not yet finalized, in particular the establishment of the National Pensions and

0: Provident Fund, and the modalities will have to be worked out. The implementation will require dedicated legislation, extensive consultations with stakeholders, and also guidance from the proposed Independent Pensions Regulatory Authority. The future of the Portable Retirement Gratuity Fund, as well as the National Savings Fund, will also be carefully considered, taking into account both the short and long-term interests of the workers. Subject to Cabinet approval, the necessary legislation is expected to be introduced before the end of the financial year 2026-2027. I also wish to assure the House that the proposed reforms will not leave any worker worse off. On the contrary, every worker will have an individual dedicated account similar to the arrangements that existed under the National Pensions Fund. And furthermore, the reforms will not result in any increase in contribution rates for either employees or employers. The CSG contributions that are currently credited into the consolidated fund will be progressively redirected to workers' individual accounts. Mr. Deputy Speaker, all these reforms are being done in the wider interest of workers and to protect the future earnings, their future earnings after their retirement. Coming back to the question of the Commission has been entrusted with a mandate of significant national importance, and government has every confidence in the expertise, independence, and professionalism of its members to discharge that responsibility. Accordingly, I wish to reiterate that the question of revoking the appointment of the members of the Commission does not arise. I have requested them to continue the important work entrusted to them and to complete the mandate by submitting the final report. Mr. Deputy Speaker, it is clear that with the reform of the pension system, as the responsible government, we have not chosen the easy way out and to try to get political mileage, but rather our objective is to save the system, to ensure that all the elderly obtain a pension in future, and that the future generation is not burdened with an unsustainable pension system.
1: आयोग के एक सदस्य की संभावित सलाहकारी काम के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है.
2: It is a consultant for investment advisory services to the National Pension Fund and National Saving Funds Investment Committee.
0: I'm not aware that he's been given a particular task to advise on this. He's advising generally.
3: ड्रग्स का सेवन करने वालों को अब हर महीने में अदालत या जेल का सामना नहीं करना पड़ेगा. ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल के तहत कुछ लोगों को कानूनी कार्रवाई के बजाय नशा मुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रम में भेजा जा सकता है. ये व्यवस्था कैसे काम करती है और इसका लाभ किन लोगों को मिल सकता है, जानिए इस रिपोर्ट में.
4: ड्रग्स रखने के आरोप पर गिरफ्तार होने का मतलब अब स्वाभाविक रूप से जेल जाना नहीं है. असल में पिछले 2024 से ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों के प्रति दृष्टिकोण बदला गया है. यदि ड्रग्स की मात्रा कम है, वो व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है और पुलिस ये निर्धारित करती है कि वो व्यक्ति तस्करी में शामिल नहीं है, तो उसका मामला आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ने के बजाय उसे ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल ड्यूएप को भेजा जा सकता है. डीएसपी सुहेल लिजालाम कहते हैं, यदि ड्रग लेने वाला व्यक्ति पुनर्वास का रास्ता चुन रहा है, उसे बिना किसी शर्त के रिहा किया जाएगा. पैनल के बुलाने पर उसे पेश होना पड़ेगा, जिसके बाद उसका इलाज शुरू किया जाएगा. ड्यूएप एक स्वतंत्र पैनल है जिसमें कानूनी क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं. इसका उद्देश्य है हर स्थिति का आकलन करना और संबद्ध लोगों को न्यायिक सजा के बजाय उपचार और पुनर्वास कार्यक्रमों की तरफ निर्देशित करना. डीएसपी सुहेल लिजालाम कहते हैं, हमें लगभग रोज ऐसे मामले मिलते हैं. पुलिस संबद्ध व्यक्ति को विकल्प देती है और हम उसे ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल के हवाले करते हैं, लेकिन इससे पहले पुलिस मामले को डीपीपी के सामने पेश करती है, जो बदले में उसे पैनल के सुपुर्द करती है. अगर रिहैबिलिटेशन अवधि के दौरान व्यक्ति शर्तों का पालन नहीं करता, तो पैनल मामले को डीपीपी के स्तर पर वापस करता है, जो बाद में पुलिस को सौंपा जाता है ताकि अदालती कार्रवाई चलाई जाए. सिविल सोसाइटियों के कई संगठन सालों से इस दृष्टिकोण की वकालत कर रहे थे, जिसमें पिल्स भी शामिल है, जो मानता है कि ड्रग्स पर निर्भरता को मुख्य रूप से एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए. पिल्स से एलोजी कहती है, कई बैठकें हम लगाते हैं और ड्रग्स इस्तेमाल को आपराधिक दायरे

0: से हटाने पर बात होती है, जिसका प्रस्ताव हमने दिया है ताकि ड्रग्स लेने वाले लोगों को जेल में डालने के बजाय उनका इलाज हो। ये एक होलिस्टिक मनोवैज्ञानिक मेडिकल और सामाजिक माध्यम है। डू आप अपने स्तर पर मेडिकल फॉलोअप, मनोवैज्ञानिक समर्थन, काउंसलिंग के सत्र या पुनरेकीकरण की सलाह दे सकता है? एलोजी कहती है, ये देखा जाता है कि व्यक्ति नशे की कितनी लत में है, उसके आधार पर या तो काउंसलिंग, डिटॉक्स या मेथाडोन की सलाह दी जाती है। ऐसे मामलों में सर्टिफिकेट ऑफ मोरालिटी की क्या भूमिका है? DASP सुहेल लीजालाम के अनुसार, अगर व्यक्ति के खिलाफ अदालती कार्यवाही न हो, सजा न दी जाए, तो सर्टिफिकेट ऑफ मोरालिटी में भी वो मामला दर्ज नहीं होता। जो आपको सौंपे गए हर मामले के पीछे एक कहानी होती है, एक व्यक्तिगत सफर होता है और कभी कभी रास्ता तलाश रहा एक व्यक्ति होता है।
1: जल्द ही व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर साझा करना ज़रूरी नहीं होगा। मेटा एक नया फीचर लाने की तैयारी में है, जिसके तहत फ़ोन नंबर की जगह पर प्रोफाइल नेम इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या इससे फर्जी पहचान, ऑनलाइन ठगी या फिशिंग जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं या नहीं, जानिए इस रिपोर्ट में।
2: व्हाट्सएप अकाउंट पर अपना फोन नंबर दिखाना जल्द ही एक विकल्प बन जाएगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नए संपर्कों के साथ बातचीत शुरू करते समय फोन नंबर की जगह प्रोफाइल नाम इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। मेटा का कहना है कि इससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और मजबूत होगी।
3: Telegram, même Signal aussi, il y a quelques années, avait mis en place ce système-là.
2: इसका फायदा उपयोगकर्ताओं को होगा, जो फैसला करेंगे कि वे अपने मोबाइल फोन नंबर किसी को देना चाहते हैं या नहीं। छोटे उद्योगों को भी फायदा होगा, वे अपने कारोबार का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना फोन नंबर बताए बिना। लेकिन इस नए विकल्प को लेकर पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और पुलिस जांच पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं भी सामने आई हैं। असुविधा तब होगी, खासकर अपराध से लड़ने के लिए। जैसे अगर पुलिस ड्रग का सेवन करने वाले किसी को गिरफ्तार करेगी, उसका मोबाइल फोन जब्त करेगी और उस पर हुई बातचीत की जांच करेगी। फिलहाल उसे डीलर या अन्य लोगों के नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन आगे चलकर सिर्फ प्रोफाइल दिखेंगे। तब मेटा से गुजरना पड़ेगा। फिशिंग के संबंध में भी कंट्री कोड की जांच नहीं की जा सकेगी, ये जानने के लिए कि मैसेज मॉरिशस से ही हैं या विदेश से। अगर मॉरिशस सरकार और मेटा के बीच प्रक्रियाएं स्पष्ट नहीं की गई, तो जटिलताएं सामने आ सकती हैं। भारत ने इन संभावित खतरों का हवाला देते हुए व्हाट्सएप से इस सुविधा के रोल आउट को फिलहाल रोकने की मांग की है। मेटा का कहना है कि अकाउंट बनाने के लिए फोन नंबर अब भी अनिवार्य रहेगा। कंपनी का ये भी दावा है कि धोखाधड़ी और पहचान की चोरी से बचाव के लिए कई सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, हालांकि इन सुरक्षा तंत्रों के विस्तृत कामकाज का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। भारतीय सरकार ने अच्छा किया है, हमें भी इसी तरह की पहल लेनी चाहिए।
3: इस
2: साल की शुरुआत से अब तक मोको प्लेटफॉर्म पर लगभग 2500 साइबर घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें करीब 300 मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े हैं, जिनमें अधिकांश व्हाट्सएप से संबंधित हैं। सेट एमयू में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट सचिंद्रा रिकाय कहते हैं, व्हाट्सएप ने एक सिक्योरिटी फीचर की व्यवस्था की है, जिसे यूजर नेम की नाम दिया गया है। अगर उपयोगकर्ता इसे हटाना चाहता है, तो कोई भी नया कॉन्टैक्ट उससे संपर्क रखने के लिए उसे न सिर्फ उसका यूजर नेम बल्कि यूजर नेम की भी जरूरत होगी। उपयोगकर्ताओं का भरोसा बढ़ाने के लिए मेटा का कहना है कि प्लेटफॉर्म नए उपयोगकर्ताओं के साथ संपर्क को सीमित करेगा, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करेगा और पहली बार संदेश भेजने वाले व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारियां भी प्रदर्शित करेगा। उपयोगकर्ता अभी से अपना प्रोफाइल नाम आरक्षित कर सकते हैं।
1: हर भारी बारिश के बाद देश के

0: इलाकों में पानी जमा होने की समस्या सामने आती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने आज राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पंज सिटी की अवधारणा पर एक कार्यशाला आयोजित की। अडॉप्ट एक्शन परियोजना के तहत आयोजित इस पहल को AFD और यूरोपीय संघ का सहयोग प्राप्त हुआ है। चीन में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद एक जलाशय की दीवार टूट गई, जिससे कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। इस आपदा में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 62,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब चलिए फुटबॉल की बात। एक युग का अंत। फुटबॉल के महान खिलाड़ी में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुष्टि कर दी कि ये उनका करियर का आखिरी फीफा विश्व कप था। 41 वर्षीय पुर्तगाली कप्तान का विश्व कप जीतने का सपना उस समय टूट गया जब स्पेन ने इंजरी टाइम के आखिरी पलों में गोल पर पुर्तगाल को 1-0 से हराया। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: 41 साल का है, 6 बार वर्ल्ड कप में, 5 बालों दो। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पेडिग्री। CR7 शायद आखिरी वर्ल्ड कप है ये इसके लिए। आंखों में आंसू, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने सफल फुटबॉल यात्रा का अंतिम पन्ना शायद बन कर चुका है। पर इससे पहले लामिन यामाल ने स्पेन को 1-0 से जितवाया पोर्टुगल के खिलाफ। ज्यादा समय तक ये मैच बंद खेल में रहा। धीरे धीरे मैच में जान आई और रोनाल्डो 2 बार उनाई साइमन को परेशान करता है। नूनो मेंडेस का गेंद पोस्ट से टकराता है। दोनों टीमें एक दूसरे की कमजोरी के ताक में थी। मैच के इंजरी टाइम में जाकर स्पेन के लिए माइकल मेरिनो गोल स्कोर करता है फेरान टोरेस के सटीक पास पर। इससे पहले पोर्टुगल के गोलकीपर डुग्लास ने अपनी टीम को बार बार बचाया। रेफरी जब मैच की समाप्ति के लिए सीटी बजाता है, तब लामिन यामाल आता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गले से लगाता है। बहुत कुछ है इसमें। एक जवान स्टार खिलाड़ी एक चैंपियन को सम्मान दे रहा है। वो आदर, वो सम्मान जिसका वो हकदार है, काफी परिश्रम के साथ रोनाल्डो ने कमाया है। रोनाल्डो के सम्मान में स्पेन के कप्तान ने भी 1-2 बातें कही। वर्ल्ड कप ट्रॉफी छोड़ के रोनाल्डो ने सब कुछ जीता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद करेंगे, उसका नाम फुटबॉल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
0: और फुटबॉल की ही बात करते हैं। फीफा विश्व कप 2026 में आज रात एक कड़ा मुकाबला स्विट्जरलैंड और कोलंबिया क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाने के लिए आमने सामने। एक तरफ स्विट्जरलैंड की मजबूत डिफेंस और टीम वर्क, तो दूसरी तरफ कोलंबिया की रफ्तार। सुनिए।
1: दोनों टीमों के लिए ये एक ऐतिहासिक मौका है। स्विट्जरलैंड आराम से बिना शोर शराबा किए ग्रुप स्टेज पार करके आगे चलकर अल्जीरिया को हराता है। स्विट्जरलैंड में हर तरह के अनुभवी खिलाड़ी हैं। उसका कप्तान ग्रानित ज़ाका अपने खेल से अपनी टीम को संगठित करता है। स्विट्जरलैंड के सफर को करवा करने के लिए कोलंबिया की टीम सामने है। आक्रामक खेल और मजबूत रक्षा पंक्ति मतलब डिफेंस इस टीम के लिए खासियत है। लुइस डियाज के दिमागी खेल, रामेस रोड्रिगेज का अनुभव काम आएगा। दोनों रास्ता खोजेंगे, कहीं ना कहीं नुस्खा खोजेंगे। स्विट्जरलैंड कोलंबिया के तीव्र आक्रामक खेल पर रोक लगाता है, तब काम हो सकता है। कोलंबिया जैसे खेलते हुए यहां तक आया है, अगर ऐसा फुटबॉल खेलता है कोलंबिया तो स्विट्जरलैंड को परेशान कर सकता है। क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए ये आखिरी टिकट होगा।

0: जानते हैं मौसम का हाल।
1: मॉरिशस में ऊंची लहरें उठने और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है, जो बुधवार दिन के 10 बजे तक लागू रहेगी। मस्कारेंस के दक्षिण में एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवाएं चल रही हैं। आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर मुख्य रूप से बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरे छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21

20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दोपहर बाद ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 21 और साहिली इलाकों पर 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं। आम जनता से उड़ती हुई चीजों से सावधान रहने, ऊंचाइयों पर काम न करने और सड़क पर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। लगुनों के परे समुद्र बहुत ही खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, जो तटों तक पहुंच सकती हैं, खासकर दक्षिण और पश्चिम में। आम जनता से समुद्र में न जाने और तटों पर न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:46 पर सूरज निकलेगा।

0: देश विदेश की अन्य खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर फैसल का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। जेरानियम लेन लाक्वाजे शेबेल में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रमरावती जगू पैदाशी नाम जिंगूर और जो पुलु के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनके बेटे जाम जगू के मकान जेरानियम लेन लाक्वाजे शेबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जेफ्वाबों बुगी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30। बेचू लेन प्लैंडे रोश में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सरस्वती बेचू पैदाशी नाम मेपत और जो सती के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 4:00 उनके रिश्तेदार यशविन बेचू के मकान बेचू लेन प्लैंडे रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 4:00 PM। लॉट नंबर 18 मोसलमा ओजी फ्लैक में 42 साल के 42 ईयर्स ओल्ड के श्री विकी गोबिन जो सिवालैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2:00 उनकी माँ गोइंदामा गोबिन के मकान लॉट नंबर 18 मोसलमा ओजी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रीष्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2:00 PM। टुकू रोड हाईलैंड्स में 73 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी अकलीमा पिराली पैदाशी नाम रामजुन इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा रात 9:00 उनके मकान टुकू रोड हाईलैंड्स से उठाकर दफनाने के लिए सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए हाईलैंड्स की अशरफुल मस्जिद और दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9:00 PM। गॉडेनिया रोड विदबाग में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र देव बैरू जो चोल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:30 उनके मकान गॉडेनिया रोड विलबाग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। कांगारो सेंटर डे फ्लैक में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेसराम रामसरन जो मिनिस्ट बलराम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:00 उनके मकान कांगारो सेंटर डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रीष्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:00 PM। रा रोड लावोचिया में 83 साल के 83 ईयर्स ओल्ड के श्री वेद व्रत जीतन श्री

वेदव्रत जितन, जो वेद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके बेटे वृतराज जितन के मकान राडोर लावोंचुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। कांगुलबा रोड शमेघोनिये में 80 साल के T.S. ओल्ड के श्री बाल्मिक बुधन, जो ईश्वर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान कांगुलबा रोड शमेघोनिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। थ्वाबुचिक त्रियोले में 70 साल के 70 years old के श्री परमानंद बुधराम, जो फुफन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनकी पत्नी चंद्रावती बुधराम के मकान थ्वाबुचिक त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौपमा महात्मा गांधी रोड त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। नंबर 14 अवेन्यू कॉन्फिये मोसेलमा मोरियाल 3 कोरोमंडल में 70 साल के 70 years old के श्री लक्ष्मी नारायण रामनारायण, जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी अमृता रामनारायण के मकान नंबर 14 अवेन्यू कॉन्फिये मोसेलमा मोरियाल 3 कोरोमंडल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबाओ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: BBC Radio, 24 hours a day.
1: रेडियो मॉरिशस पर लाइव प्रसारण जारी है। आइए अभी के लिए सुनते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ विज्ञप्तियाँ। सुरीनाम मुसलमा गुबिन सुरीनाम के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 8 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए दूसरी विज्ञप्ति। कौशलो शमग्रोनिये और रिविया दे गाले के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि गुरुवार 9 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए तीसरी विज्ञप्ति। रोजिल और गोशबोन के रहने वालों को, खासकर ये इलाके एनएचडीसी बेगुनिया, एनएचडीसी डालिया, एनएचडीसी फ्लॉम्बायों, एस्पास कॉन्कॉर्ड और एवेन्यू आरियन, एवेन्यू रोशब्रुन, मोसलमा न्यूटन, विनर्स रोशब्रुन और आसपास के कुछ हिस्से, उन सभी रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल बुधवार 8 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और फिर से शाम के वक्त शाम के 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। उन सभी जगहों पर मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना दिए बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी। ये थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ विज्ञप्तियाँ।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

一曲相思落笔，字里行间全是遥远牵挂。接下来这首唱尽跨越山河的奔赴，一起来听。听闻远方有你。

0: This is Radio Marxist.
1: 您好。
2: Assalamualaikum. Came to Mauritius.
3: Namaskar.
4: Shotrandariki Hudiya Purvaka Namaskaram.
5: Ungal anaivarukkum vanakkam.
6: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
7: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर

रेडियो मॉरिशस के सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम में। देवीना का सादर प्रणाम श्रोताओं। दिन भर की व्यस्तता के बाद आइए कुछ पल प्रभु के श्री चरणों में बिताएं। भक्ति श्रद्धा मधुर भजनों तथा प्रेरणादायक विचारों के साथ मन को शांति तथा आत्मा को आनंद प्रदान करें। वैसे श्रोताओं, जीवन में धन पद तथा प्रसिद्धि से अधिक मूल्यवान है प्रभु का स्मरण। जो हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके जीवन में आशा का दीपक कभी नहीं बुझता। चलते हैं पहले भजन की ओर।

प्रिय श्रोताओं, जीवन में सुख तथा दुख दोनों आते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। वैसे ईश्वर हमारी परीक्षा लेते ही हैं, परंतु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर दिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान तथा भजन के लिए अवश्य निकालें।

आप सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम। श्रोताओं, एक संत से किसी ने पूछा, बाबा भगवान कहाँ मिलेंगे? संत मुस्कुराए तथा बोले, जहाँ प्रेम है, सेवा है, करुणा है तथा सच्चाई है, वही भगवान का निवास होता है। इसलिए यदि हम किसी दुखी का सहारा बने, किसी भूखे को भोजन दे तथा मीठे वचन बोले, तो वही सबसे बड़ी पूजा है श्रोताओं।

कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका अच्छा चरित्र है। क्रोध को क्षमा से, अहंकार को विनम्रता से तथा घृणा को प्रेम से जीतना ही सच्ची भक्ति है। भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव के हृदय में विराजमान होते हैं।

प्रिय श्रोताओं, देखते ही देखते आज का हमारा आध्यात्मिक सफर यही समाप्त होता है। आशा है कि आज के भजन, सुविचार तथा प्रेरणादायक संदेशों से आपके जीवन में नई ऊर्जा, विश्वास तथा सकारात्मकता लेकर आए होंगे। हरि नाम से बड़ा कोई धन नहीं, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं तथा प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं। इसी मंगल कामना के साथ हम लेते हैं आपसे अनुमति। अपना तथा अपने परिवार का ध्यान रखिए, सदैव प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए तथा प्रभु का नाम लेते रहिए। शुभ रात्रि, सादर नमन।

मुअज्ज सामईन, हज़रत सैदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजान देने का अंदाज नहायत प्यारा और खुशरू था। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस सिफत ने मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाने में मुमताज़ किरदार अदा किया। ये वो अजान थी जो दिलों में घर कर जाती थी, एक ऐसी सदा जो तारीख और उम्मत मुस्लिमा पर नक्शे दवाम के तौर पर आबाद हैं। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजान ने इस्लाम को रूहानी क़ुव्वतों से भर दिया।

कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सामईन कराम, अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ हमारा आज का शबाना प्रोग्राम महफिल शब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है इस मुख्तसर खैराज अकीदत को आपने पसंद फरमाया होगा। अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। अगले मंगल को फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, शब बख़ैर।

0: संगचालो घरी मिला रहा इस वक्त रात के ठीक 9 बजे बाद तू सुनता रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: continuous music
2: RM3 819 kilohertz this is radio mauritius
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
4: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
0: सब संगतियों के बताएं सर नमस्ते और सलाम। यह तो है मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमके लाइव प्रसारण चला था तो सब कुछ के स्वागत करते हैं जा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम अन लें जा अभी से रात के 11 बजे ले मन करा था कोनो भी भोजपुरी गीत सुनने के लिए मरुआ घुमैया कांसे संख्या हमके टिकटॉक पेज पर SMS करिए। पहलका गाना मच्छी हम खाइला जोली गीत गैलक बा यशवीर सीरतन बहुत प्यार से और एक गीत चरावती सा चंद चंदेश्वर के नाम विषय फिर बीरबल माला यो या माला या गुसी रामा है गीत तोहरों खातिर और माला बाई तोहर खातिर विशाल जी है गीत तोहरों नाम मुन्ना गुप्ता है गीत तोहरों खातिर चराव जा और आवी शिवन रामसरन के साथ देवतन सिम्बा फिर पुरन और बेशक जितना कोई हमने के साथ होता है इस समय रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पेज पर तह गीत तो लोग के नाम मच्छी हम खाइला

संगतिया लोग बोले सर कि प्यार की कोई उम्र नहीं रहेला, कोनो भी उम्र में सकेला इंसान की प्यार हो जाए। तो सौ सौ तेनों के आमिर खान जहाँ सुने में अलबा ओकर तीसर का शादी हुआ था। अब और आमिर ने लेडी लव गौर एक्सप्रेस तो के हाथ थमलन और शादी कर लन और बेशक है ओकर तीसरी शादी है। पहली बार शादी करे रहल, दूसरी बार और अब है तीसर का शादी होता। तो बॉलीवुड के सितारा लोग जो है लोग के जीवन में भी उतार चढ़ाव होला। अगर एगो शादी नहीं चले तो दूसरा शादी करे लन सा, दूसरा शादी नहीं चले तो तीसर का शादी करे लन जा। तो सुनने में आल बाकी आमिर खान के तीसरा शादी हुआ था। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। कैसे उसे प्यार की कोनो उम्र नहीं रहेला और ढेर कोई शादी एक बार नहीं तो तीन तीन बार शादी करेला। तो चलो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक आमिर खान साहब के। अभी रात के 9:12 हुआ था और टिकटॉक पे जो नहीं चला था, माफ़ी चाहते हैं जा। कोई बात नहीं, अभी रेडियो पर हमने के चलो के साथ चलती रही। अगला गाना पटक पटक रावण कुमार गीतवा गेले वन और गीत हमने चलावते गीतवा चलावते आफिज के नाम आप हिरन सैप के मेजबीन पोटरी से रोजिदा हाईलैंड और आशा जानू कॉटेज से। तो गीत सुने पटक पटक।

जी आई बकत सुनते रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और साथ में हमने की देखा था वह रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर तो सबके के स्वागत बा। और अब हम बात कर करी पत्ता के तत्व के बारे में। करी पत्ता जो कि काकी पूरे बोला सर तो ये हर व्यंजन में कर इस्तेमाल हो रही था सबको जाने रहा पर शायद ये कोई जान लगती है जो करी पत्ता है ये अच्छा है स्वास्थ्य खातिर पाचन में सहायता करे रहा मतलब गैस अपच और कब्ज जैसे समस्या के दूर करे रहा। अगर तुहर खाए के अच्छी तरह से जीजे नहीं हो रहा तो करी पत्ता खेबा तो डाइजेशन अच्छी से हो मधुमेह से दूर रह जैसे जाबे दौड़ सकती है करी पत्ता खाए अच्छा है हृदय स्वास्थ्य दिल के धड़कन खातिर अच्छा है कागे पुले खाए के फिर जे कोई के बार झरेला तो कागे पुले खेब तो तुहर बार और सुंदर होला। त्वचा खातिर अच्छा है एक में एंटी ऑक्सीडेंट बा और बेशक कारी पुले चुन है एक में विटामिन आ बा विटामिन बी बा विटामिन सी बा विटामिन ए बा और ये वजन के कम करेला। तो बेशक कारी पुले के पत्ता सकबा इसे खायो के कंचा या फिर सब्जी में सकबा डाली से दाल में जाए रहा सर रोगाई में जाए रहा सर मसाला के तकारी में तो एक प्रयोग होला दाल सब्जी और सब प्रकार के तकारी भी सेवी होला। ये जो तकारी जो रहेला ओकर सुगंध जो है ओकर तेज ओकर स्वाद भी बढ़ावेला। तकारी पुले के पत्ता अगर बात हो ज्यादा में तो ओकर प्रयोग अवश्य करिए जा। रात के 9:20 अगला गीत राधन राम सा और शर्मिला रघुनंदन गैले वन चिरिंग पिरिंग है गीत शोभा खातिर मलिक जी खातिर अनिता है गीत थोड़ा खातिर फिया है गीत तोहर खातिर भी बहुत प्यार से चलाओ अब जा आतिश शर्म के साथ देवथवन फिर आंतिश अंकुश नेहा जयराज रानी और सब दुलार परिवार के नाम रहन लाल माची दिलान सिंह है गीत तोहर नाम युवाना है गीत तोहरों खातिर तसीमा अमगम अमिचान कविता बिसी सर वीनुका गुराना और आज है गीत तोहरों नाम पूजा हरकोरी हरम के साथ देवथवन हेलो जी और नीता सितलू हवन न्यूग्रोव से है गीत हरो नाम शर्मिली कास्तर है गीत हरो नाम और है गीत रावत अंजना खातिर अंजन के साथ देवतवन बहुत बहुत प्यार के साथ शाकुन भी साथ देवतवन रेनू रेनू

और सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के बारे में लिखलेवन, कैसे कृष्ण भगवान पूतना के वध करेला, राक्षसों के मारेला, और कैसे लीला करेला, यशोदा माँ के तंग करेला, माखन चोरी करेला, तई सब हमने की धर्म ग्रंथ में बा। और सूरदास जैसन भक्त कहाँ मिली जोन कृष्ण के इतना वर्णन कर रहा, तुलसीदास जैसन भक्त कहाँ मिली जोन राम जी के इतना वर्णन करे रहन। तो थोड़ा समय में सकबर यूट्यूब में जा या इंटरनेट पर टैपिक करिए सूरदास की भक्ति या तुलसीदास की भक्ति, तरीबा कैसे जोड़ी से लोग भक्ति के बारे में निकले हों जा। अगला गीत दादागल समुंदर है, गीत थोड़ा शिमला के नाम सारा जैन रेणुका लक्ष्मण है गीत औरों खातिर, और आज और रूमिता गुजा है गीत और सब संगतिया सब दशारथ परिवार गुजा परिवार और नतु परिवार खातिर, दुखी मानती है गीत तोहरों नाम चलावत है जा। और है गीत चंपा प्रधान खातिर जॉन फ्रांसवा की शादी वन, हेलो जॉन फ्रांसवा, शैलेश रामरोच, रुक्ता सुब्राची, इंदिरा भरत उबिन की शादी वन, राज निशा रामतोहर के जन्मदिन बा, आप रहे ऑस्ट्रेलिया, बधाई वतन तोहर पत्नी प्रीति, बेटी जिया, मम अनिष्टा और सब तोहर परिवार। है गीत हमने चलावत इस कूस खातिर देवी परम और युधिष खातिर, और ईश्वर शोभन है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी तोहर बेटा पत्यु बेटी दामाद और सब शोभन परिवार के नाम। युधिष शिवदागी गीत तोहरों खातिर और प्रताप की ओर से है गीत होकर बेस्ट फ्रेंड हिरीश नारायण खातिर। चल एक साथ सुने दादागढ़ समुंदर।

हाई दादा तो बड़ी रोमांटिक गर्ल समुंदर ते तुरुस के पीछे पड़ गई। और बोला सके दुनिया में सब कोई अकेला बा जनने से काहे एक बोला मुना काम आगा लो फेसबुक इतना काम आगा पर दुख में रबत कितना काम आगा काम आवेला ये कैसे बोल सक कोई पर भरोसा नहीं करिए भैया अपन गोर हाथ पर भरोसा करिए और सब काम अपने से करिए कोई पर फिर नहीं करे के चहला अभी की दुनिया में सब को के चहला इंडिपेंडेंट हो के आत्मनिर्भर हो के। और अगला गीत नीतीश बिगन के नाम निशिवम के नाम है गीत चली है गीत चला था पल्लवी के नाम और नीतीश बिगन तो फांसी नहीं बात हो संगे तो मिसाज पर रहते हैं छोकरी मिल बाने लेता हूँ मेरी तब बजा दिया कौन से खोज चाहते नहीं नहीं समझती नीतीश बिगन रवि बंगारू है गीत और नाम संघर्ष संघर्ष जी तोहर नाम सिविक है गीत वाठोरों खातिर रवि बंगारू बता को जोली गीत राय के और खातिर तो रवि भाई तोहर गीत खातिर तोहर खातिर चल गीत कृष्ण खच गावल गीत ओके ओके ओके आन्या हमके साथ देवत हन हाय आन्या राज भाई नमस्ते है गी चावते खास हम खास राज मन्ना खातिर सब परिवार के नाम जिमी दुखिया हवन सुदेश जसवा कर्मा राजकुमार सब जसवा परिवार के नाम लोंग चिबुग राजा स्टीव प्रवीण भैरव श्याम मंगल है गीत तोरो नाम प्रतिमा टुलू है गीत तोरो खातिर चावते जितना कोई विराट के उनकी सुनता है गीत तोलो के नाम धोखा दे रे

संगतियालो है जो मन हनी बड़ी चंचल रहला कि कौंथोली करके बड़ी फिर रहेला पर चेला के हर हाल में कौंथोली करके वरना इधर उधर भटकती रही। जब ले तो हर मन स्थिर सिर नहीं रही स्ताब नहीं रही तू नहीं सब को डिसीजन ली तो चेला मन के अपन काबू में रखे के जब मनवा तुहर काबू में रही तो सब कुछ अच्छी तरह से चली। अगला की छोकरा के छोकरी है गीता चलावत लिस्नी परेशान के नाम और सब परिवार और सब राम परेशान परिवार के नाम ठीक बा। रिसोल गीत तोहर खातिर धीमा है गीत तेरो नाम हुसन कृष्ण कृष्णा जीजा है गीत तोरो नाम और हाशी करिश्मा है गीत तोरो खातिर चलावती च और है गीत चली मणिप्रिया खातिर जिमी खातिर मनोज चांद है गीत तोहरो नाम शुभ देवी मुकुंद है गीत तोहरो नाम नजीमा गबुदन है गीत तोहरो खातिर चाव से बहुत प्यार से नीतीश बिगन जी बहुत प्यार से उनके साथ हो जाना अभी हमने के सुना था वन और देखा था वन हमने के टिकटॉक पेज और रेडियो मनोरंजन पर तो चला छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा अब काहे नहीं मिलता चला सुनब जा आदेश ठाकुर प्रसाद की जुबानी।

छोकरा के छोकरी नहीं मिलत बा। हाँ तो आज की दुनिया में निमन छोकरा या निमन छोकरी मिले के शादी करे के फासिल नहीं बा है। पर चहला खोजे के है क्या के शादी जो है दो दिन के बात नहीं है, पूरा जीवन भर पुलिमियो पुलिपिय बोला से न। तो जब शादी करब तो सोच समझ के शादी करिए, और जब तो घर में तो छोकरा बा या छोकरी बा तो निमन छोकरा या को निमन छोकरी देख के शादी करब न। अब हैने होने छोकरा के तो नहीं देखब, अब ध्यान देखे के कि लड़कवा कहाँ ले पढ़ल बा, कौन काम करेलन, ये सब चेहरा देखे के ना। नहीं सकबा अपन बेटी के हाथ कोई के दे जो छोकरा के काम नहीं बा, तो वो अपने पेट नहीं सकता है पाले, तो तुहर बेटी के कैसे पूछी। हाँ तो खातिर शादी जो है खिलवाड़ नहीं है, जीवन भर के साथ निभा के है। तो जर लड़का लोग शादी के उम्र के चल बा तो चेहरा ध्यानपूर्वक एगो निमन लड़का खोजे के तब जाके अपन लड़का के शादी करैया, वरना जिंदगी भर पर जाए पछताए के।

और पहले के जमाना में सबको एगो डायरी के प्रयोग करा चलन था। डायरी कौन सी एगो एगो ऐसे पुस्तक होकर में सब देता ही लिख बा, जैसे आज लेकुल गई ला या काम पे गई ला, कौन सी बीतल तो डायरी में लिख दिला, शांत के कुछ पकैला या कुछ खैला या कौन घटना घटल तो डायरी में आगे धे कोई। अब भाई रामुदवा दिखिला नहीं बा, पर हमने के लिए पोखे जब हमने कॉलेज अली सर बोलते हैं लाने काथोन जिस के बाद बताते हैं काथोन जिस काथोन जिस भी तेको डायरी रखते अली सर ओकर में सब कुछ दिखाता है कि फजीर के उठ के नहा धोवा के पूजा करी सर, फिर माँ बाप की गोर लग गई सर, लेकुल लेकुल में कौन चीज हो, लेकुल के बाद लिसो हई सब आगे डायरी में लिखाते है। पर आजकल देखते ये ट्रेंड नहीं बा, सकेला हो है नहीं बोलते नहीं, पर है जो डायरी है ये बहुत ज़रूरी चीज़ रहल का है कि एक में दिनचर्या के सब कुछ हो में लिखाते हल। पर आजकल लिख रहे सर वो कहते लामूद नहीं बा कोई बात नहीं। तो अगला गीत टुकुर टुकुर देखे रही है गीतवा कविता अनु खातिर, करिश्मा गीत और नाम पैट्रिसिया है गीत और खातिर, फिर आलियास उषा उषामु एंजल मंटू यादव नीना मणिप्रिया अनिल मणिक्योन शकुन कविता अनु रीना रामसरन अनास अविनाश दुबोरी अनु अविनाश दुबारी माफ करिए कृष्णा जीता है गीत हो रखाती है संतोष और बेशक कविता हरंगी जितना कोई हमने के सुना था और देखा था इस समय है गीत तो रोके नाम गीतवा गहले वन राकेश सिटी ऑफ पैलेसेस और गीतवा बोला था टुकुर टुकुर देखे रही है गीत रीता जी के नाम और बहन रेणुका खाते चल एक साथ सुने टुकुर टुकुर देखे ली।

0: है जो घमंड है गुरूर है बहुत बुरा चीज है, ये नहीं अच्छा है। ये कोई घमंड करे अपन पैसा पर, कोई अपन जवानी पर, कोई अपन बूटी पर, कोई अपन काम पर है घमंड ढेर दिन नहीं चला भैया। रावण जैसा आदमी के घमंड नहीं चला। रावण तो दशानन रहल, दस भुजाओं वाला, और रावण जो है शिव के परम भक्त रहल, पर बड़ी घमंड करते हल काहे क्योंकि वरदान मिल रहल कि कोई ओके नहीं सकनी मारे, इस खातिर उतना घमंडी रहल। जे रावण लेखा व्यक्ति के घमंड नहीं चल भैया, तो हमनी के कौन ऐसी कि हमनी इतना घमंड करी रह सर। तो घमंड नहीं करिए, साधारण जीवन ले जाइए और बेशक हंसते गाते रहिए। अभी एगो संगचा बलाइन पे कौन से मिलब जा। हेलो हेलो नमस्ते
1: प्रणाम,
0: के हो जा?
1: मैं कल्याणी हूँ मेबक से।
0: हाँ और वहाँ लेता हूँ कैसे बा?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: हाँ बोते लेता हूँ कैसे बा? ठंडा कर रहता?
1: बहुत ठंडा हवा पानी,
0: हवा पानी भी बा, बाप रे बाप,
1: थचिरे से
0: हवा भरवा को एक बड़ी बड़ा जोर हवा उठल बा
1: जी। यहाँ समुद्र बाटे ना?
0: हाँ तो बड़ा बड़ा वाघ बा वहाँ ना।
1: ओ लला,
0: तो सब मच्छी हिल जाए पानी के भीतरे। लागो में नहीं आवेला, जब ऐसे मोटा पानी रहे रहा हवा तो सब मच्छी भीतरे चल जालन सर।
1: हाँ चल जालन सर।
0: एटा और बोला अगला गीत कर खातिर
1: मेरे लिए और सभी सुनने वालों को भी और आपको भी और मेरे दोस्त को भी। जिले जिले बहुत दिन से ये गाना नहीं सुन पाऊंगी।
0: नहीं तू उतना नहीं सुन ला।
1: जिले
0: जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले ना,
1: दिन बरिश से आगे रोज मैं ये गाना सुनती थी।
0: अब नहीं सुने ला?
1: नहीं
0: काहे हो, चला दियो अब सर तुम्हारे खातिर।
1: लोग नहीं मांगते थे।
0: हाँ लिफाफा नहीं, तू मंगला प्यार से चला दियो अब सर
1: जी।
0: ओके
1: आपको भी।
0: हाँ गीतवा गए लग बा
1: सभी सुनने वालों को।
0: उमेश डोहू जिले जिले जिले जिले। आले बहुत नमस्ते, आले बाय बाय, शुभ रात्रि,
1: शुभ संध्या,
0: शुभ संध्या, शुभ रात्रि। हाय रे सुनिता रहन में बग से और बड़ी जालोक जा रहा था। क्या बात है, क्या बात है, ओय होय होय होय होय या। पर है गीतों से पहले अभी बा चादर बिछाओ बलमा न न न न कंचन और बाबला गीतवा गैले हो न है गीतवा चलाओ जिसे को संगतिया बोला SSU के ऊपर सब संगतिया लोग खातिर। विशाल भाई हाँ ओकर विशाल खातिर को सब संगतिया लोग खातिर जो SSU में भी काम करते हैं उन सब को आज बोलते हैं। प्रसाद दयानंद गीत हो रो खातिर, सुमन बलजा चीनो है गीत हो रो नाम, और सुजीत कवस्सा है गीत हो खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ, मोहम्मद है गीत हो नाम, यशवंत जातू, फिर है गीत इंदिरा, राजा बाबू, सुमिता जय, उषा नादिन ओलांदा, हाँ और इंदिरा गीत मांगले हवन राजेश उगर खातिर भी बहुत बहुत प्यार के साथ, और जीनाथन के साथ देवोत्तन अंजु भी हवन जा। तो चल एक साथ सुने है गीतवा, चादर बिछाओ बलमा चुनरिया चादर बिछाओ बलमा, और बोले लन सकी

ठंडा जब करेला तो नींद ज़्यादा अच्छा आवेला, गहरा नींद लगेगा। पर ढेर कोई लीवे में भी लोग नींद नहीं लगेला तो कोई बात नहीं, जे कि नींद नहीं लगता, नींद नहीं आवता तो चला है गीत सुन। अब जा चादर बिछाओ बलमा।

0: continuous music. RM3.
1: 819 kilohertz. This is Radio Marches. Radio Marches.
2: Bhojpuri. Tadka. भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
4: घड़ी मिलाते चला ये बखत रात के ठीक 10:05 हुआ था तू सुन तो रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस और हमने की रिखा था टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम भोजपुरी तड़का अजय प्रताप सिंह के साथ थोड़ा मन करा था कोना भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमावा का जगह दे विच जगह विच सैंक या हमने के टिकटॉक पेज पर हमने के मिसाज भी जा कर और अभी एक संगत या लाइन पे कॉल से मिल अब जा हेलो नमस्ते
5: प्रणाम
4: प्रेमिला जी
5: हाँ।
4: तो हर स्वागत बा आप आए बाहर आई हमने जानने से तो लोग बहुत प्यार से हमने कहतान कर सका बाजू में आपसे बचाओ आपसे और अब तो मंगर के भी भेंट आपसे हर मंगर के हमने की सुनबा रात के 9 से 11 बजे लिए बोला था प्रेमी आज के दिन कैसे बीतल
5: आज के दिन दू जगह
4: जाए
5: सत्संग मेरा
4: रामायण अच्छा बात था थोड़ा पूजा पाठ में जाल और सब संगत लोग परिवार लोग अच्छा हो सर हाँ दुर्गा माँ के गीत हाँ अच्छा रहल मन के अच्छा बुझल अभी चलिए गीत फिल्म के गीत है बड़े को भोजपुरी गीत है वेलकम टू द जंगल और एक गीत हाँ तू किन कौन गीत सुनबा बोला स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा सोने पे सुहागा बना
5: सब बहुत दुख कोई बहुत परिवार बोलो तेरा परिवार लोग जाता ढेर कोई
4: सब तो परिवार में के सब तो बड़ा आदमी चल जाता के बा सब
5: धनबान में के फास्ट फैमिली हमार ना
4: चाचा चाची सब नाना नानी सब जाता का बोल बा बोलो ता माता जी
5: तो भी बताएं सब परिवार के लिए जितना लोग बीमार हो न लोग के भगवान अच्छा करें जल्दी से
4: हाँ हाँ और बेशक तोहर सब परिवार तोहर संगत चालू और प्रेमिला हम जो खुशी रही जब तू बच्चा रहा तोहर आवाज में एगो मिठास बा तो एगो रास के बात है कि तू गावेला थोड़ा बहुत पूजा पाठ में जाला तो गावेला सर गीत गवाई सब में जाला कभी कभी
5: गीत गवाई में रात को उतना नहीं जाएगा मैं
4: गावेला पर पूछा रहा तो आवाज से तू गीत गावेला
5: हां पर उसी लो रहे ल तो लड़का लोग आवे न तो खुशी रे ल जा गए
4: बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमिला जी
5: और शुभ लोग आवे ल गए हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण
4: हरि हां तेरे जोली गीत बा हाँ देखा थे सब लिबिया में ढेर कोई मारा दुला जाने रहा ना
5: बीमार और ढेर जवान चल जाता
4: है तो दुख के बार बार शोक समाचार में फंस

0: के राज्य में सुनबा फलना व्यक्ति
1: आ
0: युवा भाव पर का करब सर जेकर इखा बजाय के जाय ना माता जी
1: बेई माता जी अच्छा मन सब परिवार अच्छा मन
0: चलता चलता मोतबा नहीं आवेला उतना घूमे नहीं आवत अभी
1: नहीं आवत अभी है समय नहीं मिलता
0: तो एक दिन आइए घूमे मोतबा आली बहुत धन्यवाद हमने से बात कर लिया बहुत अच्छा लगल तो चला अभी सुनब जाएगा भोजपुरी गीत ई फिल्म वेलकम टू द जंगल में गीत वाला बढ़िया जुड़ी गीत निनिमा है गीत खासम खास तोहर खातिर अक्षय है गीत तोहर नाम संजय बुदुआ है गीत तोहर खातिर केली तोहर नाम संजीव राम है गीत तोहर खातिर नर्मदा रामास्वामी है गीत तोहर नाम लियो 24 और हैदर कादिम माधवी डुमर उनके सादे वतन ऑनिसन है गीत तोहरों नाम प्यार से नाद समी और संजीव राम खासम खास है गीत तोहर खातिर घिस घिस घिस

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: यू लिसनिंग आरएम फ्री रेडियो। रेडियो रेडियो
2: संगतिया लोग, आज की दुनिया में वो माटी किन के घर बनाए के आसान बात बा। महंगाई की जमाना में भैया माटी किन के घर बनाए के बहुत मुश्किल बा, पर मेहनत लगन से काम कर बा मियाँ बीवी काम करी तो सकल जरा एगो लोन ले, जॉइंट अकाउंट के लोन ले के सकबा या रेडीमेड घर। ये डिपेंड है कि अगर थोर तू चाहत हो जल्दी से घर में जाएगी तो रेडीमेड घर भी बेचारा मॉरिशस में, पर माटी किन के घर बनाए के फासिल नहीं बा है। तरीका जी बोला सा कि अगर तुहरे को घर बा तो खुशी खुशी घरवा में रहिए, कहे कि अभी ढेर कोई खोता घर बनाए के पर पैसों चहला को बड़ा घर बनाए के। अगला गीत झीले झीले झीले झीले संगतिया गीत मंगने रला न, और अभी पूर्णिमा के साथ दे फकीरा। पूर्णिमा फकीरा नमस्ते, कैसे समाचार?
3: हेलो
2: पूर्णिमा जी, नमस्ते।
3: तोहर
2: राज्यों को बोलीम, तोहर राज्यों को बोलीम ढेर जोर बा कमती कर दे प्लीज। हाँ। प्लीज हम कई हाला बोल रहे हैं टेलीफोन ही कर बा तो राज्यों का कमती कर दिए तो लोग का जी पावर स्पीक करे रह सर, जानबूझ के करे रह सर, राजवा जोर से डाले हो सर, यहाँ हमने की कान निकलाते हुए लगी रहा। हम माफी चाहते हैं पर परल फोन काटे गए, कहे कि चैनला चैनला राजवा कमती करे के बोली माँ तब सब सब बच्चा। अगला गीत पूर्णिमा फकीरा खातिर झीले झीले झीले झीले बिना कबू स्वामी हवन मेबक से उनका घरवाला उनका बेटा पतो बेटी सब का परिवार के नाम विश्वानी बाबूलाल हवन लाखोजा से उनकर पति उनकर सब परिवार के नाम सुलमान दुखी मेबक से हवन गीत और खातिर टीना दीना।

प्रतिमा, सज्जू, एदू, धर्म भाई और साथ में हवन वीरापेन और अपाया, साथ में गोसाई भाई हम उनके साथ देवेलन, बहुत प्यार से उनके सुनत हवन और भाई एदू तो बड़ी जालुक मारे रहा तो गीत तोरों खातिर भाई एदू जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले जिले रे। और जितना कोई नाइट शिफ्ट में काम करता था बोंको आज बोलते हैं सब लोगन के जे अभी रात के काम करता और जितना कोई काम करके वापस घर लौटते तो उनसे है गीत तो लोग के नाम भी

0: दोनों चेहरा और जो इंसान मन से सुंदर रहेला तो का सुंदरता वाह वाह वाह वाह क्या बात है। सुंदर मन रही सुंदर तन रही तेरा सब कुछ खुशी रही, पर अगर केवल तन सुंदर बा मन में खोट बा तो कोई थोड़ा पसंद नहीं करी। तो तन मन से दोनों से चेहरा सुंदर रहेगी हाँ कि नहीं। और यहाँ पर ये रात के 10 बज के आधा हुआ था, तू सुन तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी दर का प्रोग्राम रात के 11 बजे ली। आज हम मंगलवार के रात 7 जुलाई वेमेंसिस जुलाई के महीना में चली से विंची ममो उच्च चलाई सप्ताह अक्टूबर नवम दिसम और फिर बनाने आय हाय हाय हाय हाय समय बड़ा जल्दी जल्दी जाता है हो कि नहीं। अगला गीत संजय बिहारी खातिर के पत्नी सुरेखा, फिर रानी की ओर से बेटी परी और हई गीत माधव की ओर से चाचा साइलेन साइलेन की ओर से नेफ्यू माधव खातिर और अनीता जी हवन फ्रीक ऑफ लाग से और निराश नहीं कर। हाय अनीता नमस्ते।
1: नमस्ते भाई प्रताप जी,
0: कैसे समाचार?
1: हम ठीक है और आप?
0: एकदम हवा में उड़ जाते हैं सर।
1: बहुत हवा बहुत हवा
0: ऐसी हवा आज फजीर से तो हवा हवा इसने ग्लासी गुलिया ग्लासियल
1: हाँ सब कुमारी सब दरवाजा सब बंद सब बंद।
0: तो और घर के पास समुंदर बा?
1: हाँ समुंदर बा तो हर समुदाय खराब हो गल बा ना।
0: हाँ तो सब सब मच्छी जगह बितरे समुंदर
1: भाग गए लन सर। हाँ मच्छी भाग गए लन सर डर के मारी।
0: हाँ जना खांसी भाग रहा मच्छी भाग गल।
1: भोजपुरी के गाना सुनते सुनते के दिन कट जाला।
0: अभी रात भी बीतल जाए भोजपुरी के गीतवा के संगे।
1: राज्यो नहीं हो तब
0: अरे राज्यो बात सब त्राका भाग जरा।
1: जब जब उद्भव हजीर के कौन सी गेला गेला घर में
0: हवे राजो हम जब पहुंचे दफे हमारे राजो ऑन रहेला हजीर के तब जब रोड रोटी उठी आने जाप सा तो राजू आता बजते रहेगा। पर तू जाने हमें को बात तो अनिता ढेर कोई राजू नहीं सुन रहा तू जाने रही बतवा
1: एवला।
0: हाँ गे कॉलेज में लेका लोग से फुटबॉल लेका लोग नहीं सुने ला
1: ना तो जा लेका लोग कौन सी में ढूके लान सा
0: पोता
1: मोबाइल में वही उन लोग के घर बा उन लोग के सुते के उन लोग के लीली पलंग सब हुए मा।
0: हाँ तो लोग से निराशा दूसरा।
1: हाँ हाँ मोबाइल जनरेशन मोबाइल जनरेशन।
0: हाँ
1: हमने के लेपोक में टेलीविजन रहा रेडियो रहा।
0: हाँ गे जाते इस नदी से पानी आने लाफोंटेन से बरका गमेल में पानी भर के डोंपी में से पानी निकाल के चूल्हा में पकतल और सील में सब।
1: जब हमारे शादी होल तब कोची में पकावत नहीं हमारे एगो बरका बेटा रहल पहला लड़का तो चूल्हा में पकाव चूल्हा में गरम पानी करके लड़का के नहावा
0: लकड़ी नहीं सुखल रही तो आँख कैसे सब फूल जाए बाप रे बाप।
1: खाना पकाई बा तो कौन सी भी पकाई बा
0: चूल्हे में। चूल्हा में हाँ
1: हमने के दिन भी गल
0: अभी के लड़का लोग के बोल बात बोले मिस्यो पे कहाँ कौन दिस्तो।
1: की ते पे कोजे माल लेपोक लेपोक
0: लेपोक मागोज हमने के लेपोक मागोज बोलने चाहो।
1: हाँ लेपोक मागोज पे प्लीटो हमने के लेपोक मागोज
0: कि आजकल के लड़का लोग है नहीं होने बाप बड़ी मोबे
1: लड़का लोग के हम दोनों बेटा के भगवान के कौन सी बोल ग्रासिक बोंजे हमारे लड़का लोग निमन सीमा में रह लन सा अब तो बोली ला तो लोग के लड़का के देखब।
0: हाँ हमने जब कॉलेज में काम कर रहे थे लड़का लोग के बड़ी मोबाइल अच्छा बाप।
1: हाँ
0: कोनो लड़का बड़िए मारे हाँ बड़िए मारे बड़िए मारे
1: रेस्पेक्ट नहीं
0: नहीं माँ आगे लिखा कहाँ
1: ऑफिसिया के नहीं सक बाप कुछ बोले।
0: हाँ तो लेकुआ बोली लेकुआ तो जाके बोले तेरा तकला ओके तो के प्रॉब्लम करा दे। हाँ
1: तो काहे बात बोल बाप काहे सीमा में अनबना
0: तो जोन पढ़ी थे पढ़ी जोन नहीं पढ़ी थे काके बनी थे सक बाप फोसे करे
1: नहीं नहीं ज्यादा।
0: और बोला अनिता अगला गीत बा माम जेल जोली माम जेल।
1: अरे हमारे सब परिवार के तुहर खाती तुहर
0: कौन परिवार है नीचा कौन परिवार है तुहर
1: पेटोप
0: परिवार
1: कॉम्प्लेक्स के। हाँ पेटोप परिवार आपके लिए रेडियो मॉरिशस में रेडियो मनोरंजन के सभी टीम के लिए
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद। और को संगत बाल लाइन पर कुछ मिल जा। हेलो
2: हेलो प्रताप जी
0: नमस्ते के हो जा
2: हम रोजवेल से मान

0: मनु, कैसे समाचार?
1: ठीक बा सब, अभी चला था।
0: सुनते होजबे में ठीक उड़िया था भरा जरा जो
1: हवा हवा तो ढेरी से नहीं उड़िया था इस ना।
0: बाप है कितनी हवा।
1: जन्म है है सच्चे के लिए हाँ। हम तो लिए हाँ उड़ा थे इस हवा।
0: हम फजी के सापो जरी सापो उड़िया के बोलते हवा हवाई।
1: ये हवा बहुत आज आज क्या तो नहीं लेते अच्छा रहा
0: आज हवा पानी हवा पानी बाप
1: रे ठंडा सब जाना तो कि है फुल लिवे बाप फुल
0: हाँ हाँ तो लिवे में से रह रहा। अब बोला था अगला गीत के कर खातिर।
1: हाँ अगला गीत हमारे टीम के जा दिया गीत गवाए के
0: हाँ
1: है फिया हवन किशन जामे बजावे लन अंजनी बा
0: जो जामे बजावे लन किशन है
1: किशन हवन
0: ऐसे जोरी से जामे बजावे लन
1: अभी सावित्री हवन और ये है शकुन बा बेबे हवन
0: अर्जुन अर्जुन कमरवा डोला डोला के नाचे रहा ओके हाँ
1: हाँ
0: ओके हवन
1: की तो डाल दिया
0: हाँ कौन
1: सिंहासन से ढोलक मंगाई ला
0: इंद्रासन से ढोलक मंगाई हाँ बोला
1: हाँ ये की तो डाल दिया हमें हम टीम और ये ओके और ये हवन जाता सब कोई खतिन गीतवा डाल दिया सब गीत गवाएगी हमारे टीम लोग के
0: अरबिक कई बजे सुन बा 11 बजे रे
1: हाँ आप सुनते रही ला
0: और पुराना
1: राजू हाँ। राजू हम हमार जब फजी का जो टेशन तार दी उठे जाएगा छोटा राजू किन्ने हैं तब हाँ। लीली लगे ऊ डाल दी ला
0: बजे ला जोर से
1: हाँ ना तब जी डाल दी ला फजी के हाँ। मतलब बड़ा राजू ऊ लाकुजीन में रहे ला
0: हाँ, एगो एगो राजू तो हर लगे एगो लाकुजीन में
1: एगो फजी के कहियो जे फाइक मजा टेशन एको नजीन टेशन तब दी उठा तो आ तब राजू डाल के सुनी ला बाकी राजू आज सहे ला सुने के
0: राजू जैसे को एगो विटामिन है
1: यानी ला राजू हम धरक माजे हम कैसे थोड़ा बोला रेनवे से कुमाजे कैसे हम कहूँ से आवाब तो हमारा राजू अब कहियो हमारे बहन लोग आए तो बोली ए मौखन किसों ने जोड़ा क्या ला तो राजू जवान में थे बोली सब को जाने ला हम मानु के राजू खेलते रहे
0: तो बहन लोग राजू सुने ना लोगों सुने ना तो
1: हाँ सब कोई सुने ला तो कोई तो नहीं बुने चल रहा सुते तो हम अपन राजू डरते रहे ला कहियो यहाँ घर में फेरी देखा था लड़का लोग बोली माँ तो बेगे सेरी बेस राजू ला की फेस भी हमें ना बेना कुछ मगर डाला कुछ ना
0: आली माता जी जो अलगी चला दे वापस है
1: तो हाँ ये हमने के जल हमने के सब चीज हाँ ये है
0: ना पासों हाँ ये है ना माता जी को चिकन बार
1: अरे खुशी रही ला सा हम खुशी रही ला गीत सुने के कुमार जी हमारे हाई सब हमारे लाभ ही है
0: ऐसे गीत नहीं सुन बता स्क्रेसियो ही बापू ना
1: एक दिन हमने रहा तो बस एक वो चिकाजो डाल दिया समो संगे
0: तेरे
1: से हाँ ये तेरे से बुकु एक राजो अब टेलीविजन वाट तनिसन देखी ला सने बोला ना या समाचार उस तनिसन सीरी हमारे प्रेफरे मैं से मैं राजो नहीं बोला तो हम सके लाभ के नीनो लोग ये राजो वाह खेलते रहे
0: राजो वाह खेलते रहे ना हाँ
1: हाँ बहुत धन्यवाद
0: आले बहुत मैसी आले आले बाबाई
1: हाँ तो रुक
0: और हाई की जो हमने चलाओ सुदेवी के नाम बाकवा से गीत मंगले हवन त्रियोले की दीदी ललिता कुशल परिवार आत्माराम भैया मानेगा कि कृष्णी कृष्ण कृष्णिका लक्षिका सब राम रतन परिवार और हई गीत हमने चलाव जा नसरीन के नाम रहेलन वाकवा और हे गीत चली माधुरी के माधुरी के नाम और आज होकर बहन रेखा के जमीन बात रेखा हैप्पी बर्थडे ढेर मना प्यार और आशीर्वाद चलो गीतवा सुने माम जेल जोरी माम जेल

सुभाष शंकर के गावल गीत नाच मौसी है गीतों के बाद गुंतीम गीत और सुनाओ अब रंभा राम टोल की जुबानी जुबेजा लोतुल के जाए है गीत के संगे भोजवीतर का प्रोग्राम ये पर ही समाप्त हुआ था। रात के 11 बजे दूसरे बजे अगला प्रोग्राम सुनहरे पर और रात के 12 बजे से कल फजीत के 5 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने की चलो के मुलाकात यहीं तक रहर। रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ रह जाते के SMS फोन कॉल्स खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। टिकटॉक पेज पर हमने की देख ला ओकरो खातिर धन्यवाद। अब हमने कर तोरों की मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 से 11 बजे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में इसी चैनल पर। तो कल रात तक हमने की इजाजत दा अजय प्रताप सिंह की ओर से सब कोई की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते बाय बाय।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: प्रणाम श्रोताओं, नीतूषा आपके समक्ष रेडियो मॉरिशस की लहरों पर यह है सुनहरे पल कार्यक्रम। चलिए, जज्बातों का दौर फिर से चल पड़ा है और इन रोमांटिक सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ हैं रात्रि के 12 बजे तक। आज महेंद्र कपूर, बॉलीवुड के एक ऐसे महान गायक कलाकार की बात होने वाली है जिन्होंने अनगिनत गाने तो गाए, लेकिन उन गानों में जो जज्बात है, जो फीलिंग्स जैसे हम कहते हैं, हमेशा से दिलों को लुभाते आ रहे हैं और आज भी सुनकर मन गदगद हो जाता है। क्या कहना आपका?

महेंद्र कपूर का नाम भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में एक गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी आवाज में देशभक्ति का जोश, भावुकता की गहराई और शास्त्रीय संगीत की मिठास एक साथ सुनाई देती है। 9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में जन्मे महेंद्र कपूर बचपन से ही संगीत के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत मोहम्मद रफी जैसे महान गायक से प्रभावित होकर की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग एक पहचान भी बनाई।

महेंद्र कपूर का करियर बॉलीवुड के स्वर्णिम युग से जुड़ा रहा है। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। उन्हें सबसे बड़ा मौका मिला मशहूर फिल्म मेकर बी आर चोपड़ा के साथ काम करके। बी आर चोपड़ा के बैनर तले बनी फिल्मों में महेंद्र कपूर की आवाज लगभग पहचान बन गई। गुमराह, वक्त, धूल का फूल, हमराज, नया दौर और बाद में क्रांति जैसे फिल्मों में उनके गाए गीत आज भी अमर हैं।

0: था तुमने एक
1: महेंद्र कपूर की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी मजबूत, साफ और बुलंद आवाज। उनकी आवाज में एक प्रकार का पुरुषार्थ और शौर्य महसूस होता था, जो देशभक्ति और प्रेरणात्मक गीतों के लिए बिल्कुल सही थी। मेरे देश की धरती सोना उगले, उपकार जैसे गीत ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। ये गीत सिर्फ एक सॉन्ग ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक बन गया। इसी तरह अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, या फिर नीले गगन के तले, या फिर है प्रीत जहां की रेत सदा जैसे गीत उनकी कला का सबूत है।

0: नहीं खाई।
1: अवार्ड्स की बात करें तो महेंद्र कपूर को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला। इसके अलावा भारतीय सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से भी नवाजा। ये सम्मान उनके योगदान और भारतीय संगीत को समर्पित जीवन का प्रतीक था।

वैसे व्यक्तिगत जीवन में महेंद्र कपूर एक सरल, शांत और परिवार प्रेमी इंसान रहे। उनके बेटे राकेश कपूर और रोहन कपूर भी संगीत और सिनेमा से जुड़े रहे। महेंद्र कपूर हमेशा युवा गायकों को प्रोत्साहित करते थे और कहते थे कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक साधना है।

2 अक्टूबर 2008 को महेंद्र कपूर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज, उनके गीत और उनका योगदान हमेशा जिंदा रहेगा। जब भी देशभक्ति के गीत बजते हैं या जब भी बुलंद जज्बात वाली गायकी सुनाई देती है, महेंद्र कपूर का नाम अपने आप याद आ जाता है। वे सच में भारतीय सिनेमा के एक ऐसे संगीत स्तंभ थे जिन्होंने अपनी आवाज से कई पीढ़ियों के दिल जीत लिए। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, मां बाप भाई यहां तक कि
1: तुम। बहुत लकी हो शेखर,

0: कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
1: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
0: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

0: हो गया।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

चाल बेटी घरे का भय हो बड़ी दुख बेटा नटलक नहीं हो तब बहु मरलक नहीं हो।

कहाँ जाला मसाला पीसे के कर हो मामा के कंच पकाए मच्छी के खाई हो मामा के खाई हो पापा।

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो